दोस्तों, नवरात्रि में चौथे दिन देवी को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कुष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि नहीं थी, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार था, तब इसी देवी ने अपने इष्ट हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसलिए इसे सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति कहा गया है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके साथ हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। इस देवी का वाहन सिंह है और इन्हें कुम्हड़े की बलि प्रिय है। संस्कृति में कुम्हड़े को कुष्मांड कहते हैं, इसलिए इस देवी को कुष्मांडा कहा जाता है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्यलोक में रहने की शक्ति क्षमता केवल इन्हीं में है, इसीलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से दशों दिशाएं आलोकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं माँ का भजन।

चारों ओर भक्ति का माहौल है, मंदिरों में गूंज रहे हैं माता रानी के जयकारे। कहीं ज्योत जगमगा रही है तो कहीं माँ के भजनों से वातावरण भक्तिमय हो रहा है। ये पावन अवसर है माँ दुर्गा की आराधना करने का, अपने मन में श्रद्धा और विश्वास जगाने का और माँ के चरणों में अपनी खुशियाँ और प्रार्थनाएं अर्पित करने का। तो आइए इस पावन नवरात्रि पर हम भी अपने दिन को और ज्यादा भक्तिमय बनाते हैं माँ भगवती नाम के साथ और जुड़ जाते हैं भक्ति संगीत आराधना में इस प्यारे से भजन के साथ।

उस अचंचल और पवित्र मन से नवरात्रि के चौथे दिन इस देवी की पूजा आराधना करनी चाहिए। इससे भक्तों के रोगों और शोकों का नाश होता है तथा उसे आयु, यश, बल और आरोग्य प्राप्त होता है। ये देवी अत्यल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। सच्चे मन से पूजा करने वाले को सुगमता से परम पद प्राप्त होता है। विधि विधान से पूजा करने से भक्त को कम समय में ही कृपा का सूक्ष्म भाव अनुभव होने लगता है। ये देवी आधियों व्याधियों से मुक्त करती है और उसे सुख समृद्धि और उन्नति प्रदान करती है। अंततः इस देवी की उपासना में भक्तों को सदैव तत्पर रहना चाहिए। आइए दोस्तों, भक्ति और श्रद्धा के इस वातावरण को और भक्तिमय बनाते हैं माँ के भजन के साथ।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला से कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना आप सभी सुन रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ। और आज यानी कि नवरात्रि का चौथा दिन समर्पित है माँ कुष्मांडा जी को। जी दोस्तों, कहते हैं कि अपनी मंद यानी हल्की हंसी के द्वारा ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण माँ दुर्गा को कुष्मांडा नाम से पुकारा जाता है। दोस्तों, माता कुष्मांडा एक कन्या के जीवन का चौथा पड़ाव है, जिसमें वो विवाह के बाद नए परिवार की सदस्य बन जाती हैं और अपने कौशल, शक्ति और तेज से नए परिवार और विस्तृत परिवार में सभी के साथ घुलने मिलने का प्रयास करती है। दोस्तों, कुष्मांडा का अर्थ है कि वे जिसने अपने प्रकाश से स्थान को प्रकाशित किया। रोशनी की शक्ति जब सब अंधकार में थे, कहा जाता है कि जब चारों ओर अंधकार था और प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता थी, तो आशा, चमक, तेज और शांति की प्रतिबिंबित करने के लिए भगवान सूर्य को चुना गया, ताकि एक चमकदार किरण उत्पन्न हो सके। लेकिन महिषासुर ने सभी को गद्दी से उतार दिया था। शक्तिशाली देवी देवता सभी राज्यों में तबाही मच गई और इस तरह भगवान सूर्य पृथ्वी के किसी भी निवासी को प्रकाश नहीं दे पा रहे थे। इसके आगे की कहानी हम जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये भजन।

दोस्तों रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ इस समय आप सभी जुड़े हुए हैं और जान रहे हैं माँ कुष्मांडा जी की ये छोटी सी कहानी। दोस्तों वो समय था जब पृथ्वी पर हर कोई परेशान था और उन्हें महिषासुर से बचाव के लिए और जीविका के साधन के रूप में अपने देवताओं की मदद की आवश्यकता थी। सभी फसलें नष्ट हो रही थी, सभी जानवर चारे की अनुपलब्धता के कारण मर रहे थे, सभी लोग कठिन समय का सामना कर रहे थे, प्रकाश की अनुपलब्धता। तब देवी कुष्मांडा ही बचाव के लिए आई। वे दुर्गा का एकमात्र रूप थी जिन्हें सूर्य महल में प्रवेश की अनुमति थी। वे स्वयं प्रकाश उधार लेने गई और अपने शरीर में प्रकाश लेकर सूर्य महल से बाहर आई। उन्होंने एक मंद छोटी नन्ही सी मुस्कान दी और पूरा संसार प्रकाश और प्रसन्नता से जगमगा उठा। हम भी अपने कार्यक्रम को भक्ति से जगमगाते हैं, सुनते हैं प्यारे से भजन को।

और चमक, प्रकाश, आशा और सकारात्मकता की शक्ति है। देवी कुष्मांडा ने प्रकाश की दिव्यता से मिलने के लिए संसार की सभी शक्तियों की रचना की। वे जिम्मेदारी और उत्सव का प्रतीक है। उनकी मुस्कान जिस किसी चीज पर भी पड़ती है उसमें एक नया रूप और चमक भर देती है। उनकी आभा से निकलने वाली ऊर्जा हर किसी को विशेष महसूस कराती है और हर बार एक नई शुरुआत के लिए अत्यधिक प्रेरित करती है। उन्हें कुष्मांडा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उन्होंने एक कुष्मांड का वध किया था जब महिषासुर ने कुष्मांड का रूप धारण किया था, और जैसे ही वो उसे पकड़ने वाली थी भाग गई। उसे पकड़ने की ऐसी ही एक कोशिश में एक निर्दोष कुष्मांड मारा गया, और इसलिए उन्होंने उसे मोक्ष, इस प्रकार उन्हें कुष्मांडा नाम से जाना गया, जो कुष्मांडा को मोक्ष प्रदान करती है। 91.2 MHz पर इस समय आप सभी ने ट्यून किया है अपना मनपसंद रेडियो इंजन धर्मशाला, कार्यक्रम भक्ति संगीत आराधना। आप सभी सुन रहे थे अपनी रेडियो दोस्त रुचिता के साथ। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी को नवरात्र

तो हाँ सारे ही सुने प्यारा दे आ गीत तो फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है सह फिर ते अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दे आ गीत तो हाँ सारे भी सुना कने सुनते रहे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

जैन धर्म शाला आशोता तो हाँ सारे इस वक्त कार्यक्रम सुना देन अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने तो हाँ सारे सुना देन अपना माटी दी महक कार्यक्रम तशोता फिर यहाँ तो हम ले चल देन एक गीत संगीत दी तरफ तो हाँ भी सुना कनेक्ट नहीं सुन दे रहे अपना रेडियो गुंजन धर्म शाला।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। श्रोताओं तुहां सारे इस टाइम जिहड़ा कार्यक्रम सुना देने से सुना देने माटी दी महक अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि कन्ने। तो कार्यक्रम च फिर यहाँ अगे बढ़ना है जिहड़ा कि तुहां दा ध्यान है से फिर एक गीत संगीत दी तरफ ले चलदे ने।

श्रोताओ तो हाँ सारे ही सुनिया ये प्यारा दे यार गीत श्रोताओ फिर ते अपने कार्यक्रम च अगे बढ़ना है कने जेड़ा कार्यक्रम दा सफर है से फिर ते अहां अगे बढ़ाना है फिर ते सुनदे निक प्यारा दे यार गीत तो तुहां सारे भी सुना कने नहीं सुनदे रे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

यह नव दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती। दसों दिशा इन्हीं से आलोक

0: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
1: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
0: उड़ क्या रहे हो? अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
1: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आए हैं? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहते।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने हेयर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत

0: यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
1: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
2: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
3: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
4: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन?
5: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
6: मोहित, मेरा इस्तीफा।
7: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
6: सॉरी यार,
7: काम कीजिए आप लोग।
5: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
8: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
9: अरे बेटा,
8: अरे इतना नहीं पता। मैं तुझे बताता हूँ, शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके अब रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादीशुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है। हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

मेरे प्यारे दोस्तों, 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से शुरू हो गया है कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने। मैं आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो लीजिए कार्यक्रम का पहला गीत प्रस्तुत करते हैं आपकी नजर।

0: जोकर।
1: गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नए पुराने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नए पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

गीत सुहाने नई पुरानी, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया।

श्रोताओं, रेडियो गुंजन धर्मशाला से गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का ये सफर हमारा और आपका यूं ही बना रहे, तो लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम में एक और मधुर सा गीत।

91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने अपनी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया के साथ।

श्रोताओं, ये है रेडियो गुंजन धर्मशाला और कार्यक्रम है गीत सुहाने नई पुरानी। फ्रीक्वेंसी 91.2 एफएम पर आप हैं और इस कार्यक्रम में आपकी हम सफर हूँ मैं, आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। लीजिए कार्यक्रम में अगला नगमा आपके रेडियो सेट्स पर।

91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप हैं और कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने का ये सफर अब यहीं पर होता है संपन्न। ज्योति को दीजिए अब अनुमति, जल्द मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और कार्यक्रम में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।

दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशा इन्हीं से

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहते।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिंस, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
18: अरे एक्चुअली इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे होगी हो क्या तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

नमस्कार सभी श्रोताओं को, हमारा प्यार भरा आशुताओं, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। तो आज काफ़ी समय के बाद मुझे मौका मिला आप सभी से मिलने का, बातचीत करने का। जैसे कि ये स्टूडियो मेरा स्वागत कर रहा है, वैसे ही हम भी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।

पूरी उम्मीद है कि आप सभी इन नवरात्रों को एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ ही साथ अपना जो पूजा पाठ है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे।

तो श्रोताओं, कुछ भी और आगे बढ़ने से पहले, कहने सुनने से पहले आपको ये बता दूं कि 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला पर आप सभी हैं और हम करते हैं आप सभी का स्वागत, और साथ में 88.4 MHz नटवाल की आवाज़ हमीरपुर से भी सभी श्रोताओं का स्वागत है। और जितने भी श्रोता हमें देश विदेश में सुन पा रहे हैं वर्ल्ड रेडियो गार्डन के माध्यम से या हमारी ऐप के माध्यम से, वो सभी भी सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। और रेडियो पर सुनने के साथ साथ आप हमें फेसबुक पेज लाइव पर भी देख पाते हैं। इस वक्त हम लाइव भी हैं और वहाँ पर भी लाइव सेशन में भी आप सभी का स्वागत। बीच बीच में हम लाइव होते हैं और जिस वक्त लाइव होते हैं कोशिश हमारी रहती है कि हम आपको बता दें कि इस वक्त हम लाइव हैं, ताकि हमारे जो लाइव वाले श्रोता हैं वो भी हमसे जुड़ जाएं। तो मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। चलिए अब बताते हैं आपको हम जिंदगी का सच, क्योंकि आज बात भी ना जिंदगी की ही होने वाली है। जी हाँ, और क्यों होने वाली है, धीरे धीरे हम अपना जब पिटारा खोलेंगे, आप सभी के सामने बातें रखेंगे, तो आपको समझ में आ ही जाएगा। और कार्यक्रम में आप भी तो हमसे जुड़ते हैं ना, तो कोशिश कीजिएगा जो भी बात हम करें आपके साथ, आप बाद में 10 बजे के बाद आप कर सकते हैं ना फ़ोन कॉल। तो आज कैसे कैसे कार्यक्रम में बात रहेगी या आप हमसे जुड़ पाएंगे, देखते हैं आगे चल करके आपको बता दिया जाएगा। 100 साल बाद हम सब इस दुनिया से जा चुके होंगे, बस कुछ यादें होंगी जो धीरे धीरे मिट जाएंगी।

और 200 साल बाद किसी को याद भी नहीं होगा कि हम कभी इस धरती पर थे भी। 300 साल बाद, अरे भाई 300 साल किसने देखे? तुम्हारा नाम, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आवाज, सब का सब वक्त की धूल में कहीं खो जाएगा। फिर भी आज हम सभी छोटी छोटी सी बातों पर परेशान होते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, कौन हमको जज करेगा। पता है आपको क्यों आपसे मैं आज ये सब बातें कह रही हूँ? इसलिए क्योंकि कल तक शायद मैं भी ऐसा ही सोच रही थी। लेकिन सोचो, जब वो लोग ही नहीं रहेंगे तो उनके विचारों का बोझ हमें आज क्यों उठाना है? ना तो कोई तुम्हारी जीत को याद रखेगा कि तुम इस वक्त कितने कामयाब थे, ना ही तुम्हारी हार को। जैसे आज हम महापुरुषों की बातें सुनते हैं ना, कहते हैं आज भी हम कुछ बातें करने वाले हैं, केवल हम बातों में ही रह जाएंगे, और वो भी तब जबकि काफ़ी ज़्यादा अच्छे काम कर लेंगे, ख्याति में रहेंगे, या फिर कुछ ऐसे ही बुरे काम कर देंगे जिसको जो कि इतिहास में दर्ज हो जाएंगे और फिर हमें याद किया जाएगा कि हाँ हमने ऐसा ऐसा किया था। बाकी तो हम माटी के पुतले हैं और हमें उतना गुमान भी नहीं शोभा देता। परंतु फिर भी डर किस बात का? जिंदगी हमें मिली है ना किसी को साबित करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को जीने के लिए। जो सुकून दे वही चुनो, शायद जिंदगी का सच यही है।

जी दोस्तों, ज़िंदगी तो हंसने गाने के लिए पल दो पल है ही, लेकिन ज़िंदगी सिर्फ हंसने गाने के लिए नहीं है भैया, और भी बहुत सारी बातें होती हैं ज़िंदगी में हमारे, कि कभी हम वाकई में रोते हैं, कभी हम हंसते हैं। और जो लोग ज़िंदगी को मजाक समझते हैं ना, उनके लिए वैसे ये कहना चाहूँगी कि ज़िंदगी को कभी कभी हमें थोड़ा सा सीरियस भी लेना चाहिए। ज़िंदगी में ये भी सोचना चाहिए कि आखिरकार हमें ये जीवन मिला क्यों है। क्या केवल अपने शौक़ पूरे करने के लिए, बस अपनी चीज़ें देखने के लिए, अपना परिवार पालने के लिए, या फिर कुछ आसपास में हमारे लोग हैं उनकी ज़िंदगी कैसी है, उनका जीवन कैसा है, उस ओर भी थोड़ा हमारा ध्यान रहता है कि नहीं। बहुत सारी बातें आज हम करेंगे कार्यक्रम में, और आपको बता दूं कि हमारा ये मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा भी चला हुआ है। 28 अक्टूबर तक हम इसे मनाने वाले हैं, परंतु केवल पखवाड़ों की बात हम ना करें और हर रोज़ की जीवन में ये छोटी छोटी सी चीज़ें अगर हम अपना लें तो शायद जीना हमारा भी और दूसरों का भी आसान हो जाएगा। तो आज है 14 अक्टूबर, शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन, और आज माँ दुर्गा के चतुर्थ स्वरूप माँ कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब ब्रह्मांड में हर तरफ अंधेरा था तब माँ कुष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की थी और इसी वजह से इन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं हैं। इनके हाथ में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृत पूर्ण कलश और चक्र, गदा तथा सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला भी है। माता रानी सिंह शेर पर सवार रहती हैं, जो साहस और संप्रभुता का प्रतीक है। माँ कुष्मांडा को मालपुए और कद्दू यानी पेठे की बलि भोग अत्यंत प्रिय है। कुष्मांडा का अर्थ कुम्हड़ा यानी पेठा भी होता है। आज के दिन नारंगी, ऑरेंज या हरा रंग पहनना और माता को अर्पित करना बेहद शुभ माना जाता है। माँ कुष्मांडा की भक्ति से भक्तों के रोगों, शोकों और कष्टों का नाश होता है। इनसे आयु, यश, बल और बुद्धि में वृद्धि होती है। और वैसे तो आप पूजा अर्चना कर चुके होंगे, परंतु अगर अभी भी आपकी बाकी है या शाम को भी करेंगे तो ये जो मंत्र है इसका जाप अवश्य कीजिएगा। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः।

जय माता की। 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। आपके लिए प्रस्तुत कर रही हूँ कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला।

श्रोताओं, मैं प्रस्तुत नहीं कर रही हूँ, प्रस्तुतकर्ता कोई और है। हम आपके लिए ये कार्यक्रम होस्ट कर रहे हैं। और प्रस्तुतकर्ता का नाम तो आप कार्यक्रम के आखिर में जान ही जाते हैं। फिलहाल ये जानिए कि हमारे आसपास में इस समय मौसम का क्या हालचाल है। तो इस समय धर्मशाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में तापमान बना हुआ है 14 डिग्री सेल्सियस। और मुख्य रूप से बादल छाए हुए हैं। जी हाँ, कहीं कहीं पर बादल छिटपुट छाए हुए हैं, देख सकते हैं आप भी बाहर। हवा में नमी का स्तर है 61% और 3 मील प्रति घंटे की रफ्तार से दक्षिण पश्चिम की ओर से हवाएं चल रही हैं। आज का अधिकतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दोपहर 11:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक हल्की बारिश होने की संभावना भी है। तापमान लगभग उस समय 15 से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और 2:30 बजे के करीब फिर से हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। तापमान गिर करके 14 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। और शाम को 5:30 बजे के बाद से मौसम आंशिक रूप से साफ होगा, ठंड बढ़ेगी। हालांकि रात के समय बारिश की 75% संभावना है। यदि आप बाहर होंगे तो छाता या रेन कोट अपने साथ जरूर रखिएगा। और कल 15 अक्टूबर की बात करें तो दिन भर में बारिश का अनुमान है 75%। अधिकतम तापमान में गिरावट होगी और ये केवल 12 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, जिससे दिन में भी ठंडी अच्छी ठंडक महसूस आपको होगी। रात का मौसम साफ रहेगा और तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। यानी कि अब आप समझ गए कि मौसम में बदलाव तो आ ही चुका है। और ये सिर्फ हम यहाँ से बोल करके आपको बताएं ऐसा नहीं है, आप महसूस भी कर सकते हैं और जो कि आप कर ही रहे होंगे। तो श्रोताओं, जब भोर होती है ना तो मन हमारा मचल मचल सचाता है और आंख खुलती है तो हम प्रभु का शुक्रिया अदा तो करते ही हैं कि चलिए एक और दिन दे दिया आपने, हमारी झोली में डाल दिया, और साथ में इस भोर का आनंद भी उठाते हैं। लीजिए भोर का एक गीत सुनिए,

हाँ श्रोताओ, अचानक हमें याद आया कि 9:30 हो चुके थे और वो समय था एक छोटे से ब्रेक का। तो वो हमारा इंट्रोडक्शन ब्रेक होता है और अब 9:33 हो चुके हैं। आप मिलाइए अपनी अपनी घड़ियाँ और अगर कहीं आपको अपने अपने ऑफिसेज की तरफ भागना हो कि

कि कई लोगों का जो ऑफिस है वो 10 बजे भी लगता है, तो जल्दी जल्दी कीजिएगा, कहीं लेट ना हो जाइएगा। तो चलिए आपको बता देते हैं कि आज क्या क्या सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज है विश्व मानक दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस, राष्ट्रीय अमेरिका का राष्ट्रीय मिठाई दिवस और राष्ट्रीय उत्पीड़न निवारण दिवस अक्टूबर के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। और साथ ही हमारे देश में धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी है। क्यों है, कार्यक्रम में आगे करेंगे इसके बारे में बात।

फिलहाल हम सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। तेरी कसम फिल्म का ये गीत है लता मंगेशकर और अमित कुमार के युगल स्वर।

श्रोताओ, चिराग फिल्म का ये गीत आप सभी ने सुना। तेरी कसम फिल्म का गीत आप सभी ने सुना लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से।

उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आया होगा ये गीत। और अब बात करते हैं विश्व मानक दिवस के बारे में। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर दिन ये साल 14 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये दिन उन हजारों विशेषज्ञों के प्रयासों का सम्मान करता है जो दुनिया भर में सुरक्षा और गुणवत्ता के मानक तय करते हैं।

और साल 2026 के लिए इस दिन की थीम है एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, यानी बेहतर दुनिया के लिए साझा दृष्टिकोण। ये थीम जारी किया गया है जिसमें विशेष रूप से सतत विकास लक्ष्य 7 यानी SDG 7 ऊर्जावान और स्वच्छ ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये एक विषय वस्तु ये है कि हर घर तक अंतर्राष्ट्रीय मानक स्वच्छ सुरक्षित और विश्वसनीय ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाए। अगर इसके इतिहास के बारे में बात करें तो लंदन में 25 देशों के उद्घाटन समारोह में पहली बार सामूहिक मानकीकरण की सुविधा के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का निर्णय लिया गया था और ठीक एक साल के बाद 1947 में ISO अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना हुई। आधिकारिक तौर पर पहला विश्व मानक दिवस वर्ष 1970 में मनाया गया और इसकी शुरुआत ISO के अध्यक्ष फारूक सुंटर ने की थी।

और जैसे कि आज हम जिंदगी की बात कर रहे हैं और कार्यक्रम में आगे करेंगे भी, जैसे मैंने आपसे कहा ही था कि देखिए हम मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा के रूप में 28 अक्टूबर तक ये माह को सेलिब्रेट कर रहे हैं, परंतु मानसिक स्वास्थ्य की बात हम हर दिन हर रोज़ ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक दूसरे के साथ जब हम बात करते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि दूसरा व्यक्ति जो है उसके मन में क्या चल रहा है, वो किस स्थिति से गुजर रहा है, अगर उसे कहीं सहारे की ज़रूरत है, किसी ऐसी बात की ज़रूरत है जो हो सकता है कि आप उसे समझा पाएँ, उसके कष्टों को थोड़ा सा कम कर पाएँ, तो वो ज़रूर होनी चाहिए।

सच्चाई फिल्म का गीत अभी आपने सुना आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो श्रोताओं, बात कर लेते हैं हम फिर से एक बार विश्व मानक दिवस के बारे में। तो ISO मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। विश्व मानक दिवस को मुख्य रूप से 3 वैश्विक मानकों के सहयोग से आयोजित किया जाता है, जिसमें कि पहले आपको मैंने बता दिया ISO जो कि अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन है, और दूसरा IEC इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निक कमीशन। और इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन जो है अंतर्राष्ट्रीय विद्युत प्रौद्योगिकी आयोग है हिंदी में, और एक ITU यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ। तो ये 3 जो मानक हैं वो हैं प्रमुख वैश्विक संगठन। और भारत में इसके महत्व और भूमिका की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय मानकों को स्थापित करने और संचालित करने के लिए प्रमाणित भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारतीय मानक ब्यूरो

पास है और PIS उपभोक्ता मामला खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, जैसे कि सोने के आभूषणों के लिए हॉलमार्क जैसे मानक BIS द्वारा ही तय किए जाते हैं। और श्रोताओं, अब हम कार्यक्रम में आगे जब बात करेंगे तो वो करेंगे समाचारों के बाद, क्योंकि जानकारियां आपको हम आसपास की तो दे ही देते हैं, लेकिन सारे प्रदेश की जानकारियों के लिए आपको चलना होगा आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रियंका ठाकुर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लाहौल स्पीति दौरा आज। विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की जा रही पूजा अर्चना। कांगड़ा जिला के तीनों शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रदेश भर में मत्स्य विभाग का जल निकाय स्वच्छता और संरक्षण अभियान जारी। कुल्लू जिला में विशेष कार्यक्रम किए जा रहे आयोजित। और प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सेवा सेतु जागरूकता और पंजीकरण शिविर का किया जा रहा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। संस्कृति मंत्रालय आज नई दिल्ली में बृहत्तर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सम्मेलन को वीडियो संदेश के माध्यम से संबोधित करेंगे। संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी सम्मेलन में शामिल होंगे। तीन दिवसीय सम्मेलन में 50 देशों के प्रतिनिधि, राजदूत और विद्वान भारत के ऐतिहासिक और समकालीन सांस्कृतिक संबंधों पर विचार विमर्श करेंगे। सम्मेलन के दौरान एशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत शीर्षक से एक प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज लाहौल स्पीति के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे क्षेत्र को विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के साथ स्थानीय लोगों से सीधा संवाद करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री रोंगटोंग में 2 मेगावाट क्षमता वाले सौर ऊर्जा संयंत्र और बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री काजा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करने के साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कीह स्थित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे और रंगरीक के मंजूश्री बौद्ध मठ में सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम की अध्यक्षता भी करेंगे। यहां वे महिला मंडलों, युवक मंडलों और स्पीति के लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ कुष्मांडा की कांति और आभा सूर्य के समान है। इनकी आराधना के बिना जप और ध्यान संपूर्ण नहीं होते। प्रदेश के शक्तिपीठों सहित अन्य मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। इस बीच कांगड़ा जिला के तीनों शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। अधिक ब्यूरो के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: शारदीय नवरात्र के चलते कांगड़ा जिले के मां ज्वालामुखी, मां ब्रजेश्वरी देवी और मां चमुंडा नंदिकेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की खूब रौनक है। देश के विभिन्न हिस्सों से भक्त माता रानी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। तीसरे नवरात्र के दौरान मां ज्वालामुखी मंदिर में सबसे अधिक 20,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। वहीं मां ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में 5,500 और मां चमुंडा नंदिकेश्वर धाम में 3,000 श्रद्धालुओं ने हाजिरी भरी। इस तरह तीनों शक्तिपीठों में कुल 28,500 श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की। आज चौथे नवरात्र पर मां कुष्मांडा की आराधना के साथ शक्तिपीठों में भक्तों की आस्था का सिलसिला जारी है। श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और बेहतर व्यवस्था के बीच मंदिरों में माता के जयकारे गूंज रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपिन शर्मा।
0: मंडी जिला के सराज विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी के समर्पण और सहयोग से संगठन के प्रति प्रतिबद्धता जनसेवा के संकल्प को मजबूत बनाती है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सभी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर कार्य करने का आह्वान किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मजबूत आर्थिक आधार और आत्मविश्वास से भरा नया भारत, विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कुल्लू में लोगों को जागरूक करने और उनका पंजीकरण करने के लिए 15 अक्टूबर तक 3 दिवसीय सेवा सेतु जागरूकता एवं पंजीकरण शिविर आयोजित किया जा रहा है। परिचालन वृत्त कुल्लू के उप मुख्य अभियंता रोहित ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को योजना की विस्तृत जानकारी प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि इस शिविर में लोगों का योजना के तहत मौके पर ही पंजीकरण किया जाएगा। उन्होंने उन्होंने कुल्लू के सभी स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें और इस योजना का लाभ उठाने के लिए इसमें बड़ी से बड़ी संख्या में भाग लें। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। शेष समाचार इस अंतराल के बाद।
2: दीदी

0: प्रदेश भर में प्रदेश मत्स्य विभाग द्वारा जल निकाय स्वच्छता एवं संरक्षण जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत कुल्लू जिला के गड़सा में कुल्लू जिला संवाददाता।
1: इस अभियान का उद्देश्य जल निकायों की स्वच्छता संरक्षण तथा जल स्रोतों में प्रदूषण के रोकथाम के प्रति आम जनता को जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों, NSS स्वयं सेवकों तथा स्थानीय लोगों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान जन सहभागिता को व्यावहारिक रूप देने के उद्देश्य से प्रतिभागियों ने गड़सा धारा के किनारे जमा मलबे, कचरे एवं अन्य अनावश्यक सामग्री की सफाई की तथा लगभग 45 किलोग्राम मलबा कचरा एकत्रित किया। इस गतिविधि के माध्यम से स्थानीय समुदाय को जल स्त्रोतों एवं उनके आसपास के क्षेत्र को स्वच्छ, स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त रखने के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। मत्स्य विभाग ने सभी वर्गों से जल निकायों को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने में अपना योगदान देने की अपील की है, ताकि वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वच्छ जल एवं स्वस्थ जलीय पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके। आकाशवाणी के लिए कुल्लू से आशीष शर्मा।
0: राज्य स्तरीय किन्नौर महोत्सव इस वर्ष 30 अक्टूबर से 2 नवंबर तक रिकॉम्पियो में आयोजित किया जाएगा। राजस्व, बागवानी व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में कल इस महोत्सव को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में इसके सफल आयोजन को लेकर संबंधित विभागों द्वारा की जा रही तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। 4 दिवसीय इस महोत्सव के दौरान किन्नौर की समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं, लोक नृत्य, लोक संगीत तथा स्थानीय कला एवं हस्तशिल्प को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त स्थानीय उत्पादों एवं पारंपरिक व्यंजनों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। जग सिंह नेगी ने संबंधित अधिकारियों को इसकी तैयारियां समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग ने पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते आज से 17 अक्टूबर तक मौसम के खराब रहने की संभावना जताई है। विभाग ने आज और कल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। अमर उजाला की सुर्खी है, नियमों के विपरीत वन क्षेत्र में बना दी 55 सड़कें, 16 हेलीपैड, हाईकोर्ट ने लगाई शेष कार्य पर रोक। पंजाब केसरी ने प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश को शीर्षक दिया है, अगले आदेशों तक वन क्षेत्रों की सड़कों पर कोई निर्माण या टायरिंग नहीं की जाएगी। दिव्य हिमाचल के शब्द है, गत्ता उद्योग 5 दिन बंद, पुराने दाम पर बॉक्स आपूर्ति के दबाव के बीच बड़ा फैसला। दैनिक भास्कर ने खबर दी है, प्रदेश में कैश वन और मोबाइल कैंटीन पर लगेगा सालाना टैक्स, परिवहन विभाग ने लोगों से मांगे आपत्तियां व सुझाव। दैनिक जागरण ने विमल नेगी मामले पर लिखा है, दिल्ली से शिमला पहुंची सीबीआई पुलिस अफसरों से घंटों पूछताछ। सिरमौर जिला में पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया 26 अक्टूबर से शुरू होने जा रही है। भर्ती प्रक्रिया पुलिस लाइन नाहन में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की जाएगी। जिला पुलिस ने भर्ती में शामिल होने वाले महिला और पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शेड्यूल जारी किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संस्कृति मंत्रालय द्वारा बेहतर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो संदेश के माध्यम से करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का लाहौल स्पीति दौरा, आज विभिन्न विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज माँ दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की जा रही पूजा अर्चना, कांगड़ा जिला के तीनों शक्तिपीठों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रदेश भर में मत्स्य विभाग का जल निकाय स्वच्छता व संरक्षण अभियान जारी, कुल्लू जिला में विशेष कार्यक्रम किए जा रहे आयोजित, और प्रदेश में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगों को जागरूक करने के लिए सेवा सेतु जागरूकता और पंजीकरण शिविर का किया जा रहा आयोजन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं प्रातः 11 बजे। नमस्कार
2: जी सर। श्रोताओं, अभी आपने सुने समाचार और ये है 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो चलिए समाचारों की बात। अब लेते हैं हमारा अपना डेजिग्नेशन।

0: वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई फिल्म का गीत अभी आपने सुना 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला से। और श्रोताओं, जैसा कि हमने आपसे पहले भी कहा कि हमारे साथ, जैसा हम अभी इस वक्त मानसिक स्वास्थ्य माह मना रहे हैं, मानसिक स्वास्थ्य पखवाड़ा, तो हमने लिया है फ़ोन लाइन पर डॉक्टर अनीता ठाकुर को, जो कि धर्मशाला अस्पताल में मनोचिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं, और उनसे हम जानेंगे कि मानसिक ये जो स्वास्थ्य पखवाड़ा है, इसका क्या महत्व है, ये क्यों मनाया जाता है। हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब।
1: नमस्कार मैम।
0: डॉक्टर साहब, पहले तो आपका स्वागत कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला में।
1: धन्यवाद जी।
0: डॉक्टर अनीता जी, ये जो मानसिक स्वास्थ्य हम पखवाड़ा मना रहे हैं, 10 अक्टूबर को ये मानसिक स्वास्थ्य दिवस था, तो उसके बाद ये पूरा महीना ही जो है हम समर्पित कर देते हैं, तो आपके पास तो रोज़ ही रोगी आते ही हैं, आप तो हर रोज़ ही काम इस पर कर ही रही हैं, तो थोड़ा सा हमारे श्रोताओं को बताएं कि ऐसा कौन सा समय होता है कि जब उन्हें लगे कि उनके साथ कुछ चल रहा है तो उन्हें जल्दी ही आ जाना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है ना, लोगों को ये लगता है कि नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ बिल्कुल, मुझे कुछ नहीं है, और बस ऐसा करते करते लेट होते चले जाते हैं लोग, और फिर थोड़ा समय निकल जाता है।
1: जी,
0: क्या कहना चाहेंगे?
1: सबसे पहले तो श्रोताओं को मेरा नमस्कार और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज श्रोताओं से ये कहना चाहती हूँ कि जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो शायद हम अपने शारीरिक स्वास्थ्य का भी उतना ध्यान नहीं रखते हैं, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य सभी का अधिकार है। जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी जरूरी है। बहुत बार लोग संकोच करते हैं, उनको लगता है कि अगर मन में कोई समस्या है या कोई चिंता है, कई बार बहुत समय तक लोग अनिद्रा से परेशान रहते हैं या बहुत समय तक कई तरह की सोच से परेशान रहते हैं, पर वो ये संकोच करते हैं क्योंकि बहुत स्टिग्मा है। लोगों को लगता है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम किसी थेरेपिस्ट के पास या किसी साइकैट्रिस्ट के पास जाएंगे तो उन्हें लगता है कि ये उनके अंदर कोई कमजोरी है या शर्मिंदगी की बात है। तो सबसे पहले तो श्रोताओं को ये जानना जरूरी है कि जैसे हम शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मदद लेते हैं, उसी तरह से हमें मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी समय पर मदद लेनी चाहिए, इससे पहले कि बीमारी ज्यादा गंभीर हो जाए। और इस बार का थीम तो वैसे भी खुद में ये है कि हम कहते हैं कि जिन लोगों ने अनुभव किया है मानसिक परेशानियां, लोगों ने स्वयं या उनके परिवार ने, अगर हम वास्तविक उनकी आवाज सुने, अगर हम उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करें, तो शायद कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य के लिए नीतियों में भी बदलाव लाया जा सकता है। तो बहुत जरूरी है कि इस चीज को साझा करें, और अगर कोई आपसे साझा करता है कि उन्हें मानसिक तनाव है या वो किसी स्थिति से गुजर रहे हैं, तो प्लीज उन्हें जज ना करें या उन्हें ऐसी कोई एडवाइस ना दे दें कि जिससे शायद वो किसी और से खुलकर बात ना करें। बहुत जरूरी है कि बिना जजमेंटल हुए उनकी पूरी बात आराम से सुनना और उनको सही निर्देश देना। अगर आपको नहीं लगता है कि आपके पास कुछ सही है उस वक्त बोलने के लिए, तो बहुत बार सुनना भी काफी होता है
0: जी।
1: तो ये मैं जरूर कहना चाहूंगी कि स्टिग्मा तभी खत्म होगा जब लोग आगे आएंगे, अपनी बात कहेंगे, और जब जरूरत है तो हेल्प भी लेंगे।
0: डॉक्टर साहब, एक यहाँ ना मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, जैसे कि आपने कहा कि इस बार का जो थीम है वो तो आपने थीम के हिसाब से बताया कि साझा करें, लेकिन कुछ समय पहले तक ना ये कहा जाता था कि इनकी बातें बिल्कुल साझा, क्योंकि जैसे डॉक्टर्स होते हैं उन्हें भी यही निर्देश रहता है कि जो रोगी होते हैं उनकी जो बातें हैं वो अपने तक ही रखनी है, हमने किसी से नहीं कहनी है, ये तो आपने भी
1: बिल्कुल।
0: तो ऐसा कैसे, मतलब
1: वही है, जरूरी नहीं है कि हम ये बहुत खुलकर, मतलब ऐसा नहीं कि हम ये कह रहे हैं कि आप बहुत लोगों के सामने या उस तरह से साझा करें, पर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, बात हमेशा कॉन्फिडेंशियल रहेगी। जब आप अस्पताल में आकर हमसे बात करेंगे, पर समस्या क्या है, मानसिक स्वास्थ्य की बात कहाँ होती है, बंद कमरों में, अस्पताल के बंद कमरे में, इसके नीतियों में तो प्रभाव नहीं आ रहा है ना। अगर मानसिक स्वास्थ्य, जिस इंसान को मानसिक परेशानी है, अगर वो चाहता है कि उसके लिए कुछ नीतियां बने, उनकी भी कुछ राइट्स होंगी, है ना, तो वो तो तभी हो पाएगा जब वो उस चीज से गुजर रहा है, तब वो शेयर करेगा। अगर वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, अभी हम रिसेंटली वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे पर जेल में गए, हमने ये अपना वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जेल में मनाया, जहां पर लोगों ने अपनी लाइफ की स्टोरी साझा की। तो जब आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में अपनी लाइफ की स्टोरी साझा करते हैं, तो हमें भी एज थेरेपिस्ट या फिर और जो लोग वहां पर मौजूद थे, उन्हें भी ये आइडिया आता है कि हम क्या इनके लिए करें कि इनकी इन समस्याओं का समाधान हो। ट्रीटमेंट एक एस्पेक्ट है, पर हो सकता है अब हमें लगता है कि ये हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट हैं। जो इंसान इससे जूझ रहा है ना, जो मानसिक बीमारियों से जूझ रहा है, वो शायद हमसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है। ठीक है जी, तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये साझा की जाए।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, और कुछ कहना चाहेंगे आप अपनी तरफ से, जो कि शायद हम यहाँ से नहीं आपसे इस वक्त पूछ पा रहे हैं, कुछ आप जरूरी हो साझा करना चाहें?
1: मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कभी भी किसी को ऐसा लगता है कि आती है, घबराहट है, बेचैनी है, अनिद्रा है, बहुत ज्यादा सोच आ रही है, अजीब अजीब से सोच आ रही है, शक वहम होने लगा है, तो कृपा इलाज कराएं, संकोच में रहें। किसी को ऐसा लगता है कि ओपरा हो गया है, हम स्टेट हीलिंग कर लें, इन सब चीजों से ये डिले हो जाती है। ट्रीटमेंट जब डिले हो जाती है तो उसकी प्रोग्नोसिस पोअर हो जाती है। तो जिसको भी लगता है कोई बेहोश हो जा रहा है बच्चों में, जैसे सांस का फूलना, स्कूल ना जाना, या फिर कुछ इस तरह के बदलाव आना कि आपको लगता है बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, यहाँ तक कि नशे को लेकर भी हम चाहेंगे कि लोग आगे आए, लोग अपना इलाज कराएं, ताकि वो एक अच्छा मानसिक स्वास्थ्य हासिल कर सकें।
0: क्योंकि ऐसे जो लोग होते हैं ना जो नशा करते हैं, वो भी एक स्टेज पर जाकर के उनके भी मानसिक स्वास्थ्य पर ही असर पड़ता है ना।
1: नशा करना खुद में एक मानसिक बीमारी है, तो जब कोई नशा कर रहा है तो हम तो पहले ही कह रहे हैं कि ये मानसिक बीमारी है, इसका इलाज करना जरूरी है।
0: हाँ जी डॉक्टर साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस वक्त आपको जो हमने फोन लाइन पर लिया हुआ है, ये लाइव कॉल चल रही है, ये फेसबुक पेज पर भी लाइव है, और बहुत सारे लोग हैं जो वॉच भी कर रहे हैं, हमें आप नहीं देख पा रही हैं, आप सुन पा रही हैं, लेकिन हम यही लोगों से ये बताना चाहते हैं, और मैं अपना पर्सनल खास करके अपना अनुभव साझा करना चाहती हूँ। शायद आप भूल गई होंगी, लेकिन मुझे याद है जब मैं MR थी और मैं जॉब करती थी, आप लोगों के पास भी आती थी अस्पताल में, तो मैंने अपना भी शायद कुछ था उस वक्त, काफ़ी साल हो गए हैं, और आपसे मैंने कुछ साझा किया था और आपने मुझे उस वक्त बहुत अच्छी सलाह दी थी।
1: धन्यवाद जी,
0: धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत, और रेडियो गुंजन को अपना समय देने के लिए धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं, आपने जाना कि किस तरह से हमें, श्रोताओं हमारे फेसबुक पेज लाइव पर कुछ मैसेजेस आए हैं और कमेंट्स आए हैं, बहुत अच्छी जानकारी दी, थैंक यू मैम आपने, और ये कहना है इंदु बालाजी का, जी धन्यवाद, और आप रेगुलर हमारे श्रोता हैं, और सब कुछ जो है यहाँ से जो भी हम प्रसारित करते हैं आप अच्छे भले ध्यान से सुनती हैं। और आगे अश्विनी सुकेतिया जी जो हैं वो कह रहे हैं, गुड मॉर्निंग मैम, बहुत अच्छी जानकारी है जी, धन्यवाद आपका भी। और इसी तरह से और भी श्रोता हैं जो देखते हैं हमें लेकिन कमेंट नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करते होंगे, आप सभी का धन्यवाद, चाहे आप कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं कोई बात नहीं, देख रहे हैं सुन रहे हैं, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।

तो श्रोताओं, जाना आप सभी ने कि किस तरह से आपको मानसिक स्वास्थ्य अपना उसका ध्यान रखना होगा। पहले अपना ध्यान रखें और फिर अगर आपको सामने से कोई दिखता है तो उसका ध्यान रखें। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें कहा कि किसी को भी कोई गलत सलाह कभी ना दे दें। अगर सलाह देनी ही है तो हाँ, ये ज़रूर कहें कि हमारे यहाँ पर हमारे अस्पताल में, जोनल अस्पताल में एक चिकित्सक बैठती हैं, आप उनके पास चली जाइए और उनसे सलाह ले लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको उस स्तर का या उस लेवल का मानसिक रोग हो ही, लेकिन सलाह ले लेने में कोई कुछ नहीं जाता है। जैसा कि मैंने कहा कि हमने भी कभी किसी समय जाकर के उनसे सलाह ज़रूर ली थी।

आशुतोष, अब इसके बाद आप लोग भी अगर फ़ोन कॉल करना चाहें तो हमारा नंबर आपको पता ही है, 7018117091। गीत सुन लीजिए पहले, गीत बहुत ज़रूरी है, फिर आप ज़रूर गीत के बाद कॉल कीजिएगा।

जिंदगी रोज नए रंग में ढल जाती है। आज फिल्म का ये गीत सुना आपने, घनश्याम वासवानी, विनोद सहगल, अशोक खोसला और जुनैद अख्तर की आवाज़ें थीं। जो तो आपको लगा कि चार चार आवाज़ें हैं इस गीत में, लेकिन वाकई में जिंदगी का सच इस गीत में हमें सुनाई देता है, दिखाई देता है। एक सच ये भी है, अजीब बात है ना, कि रावण जलाने से पहले हम उसे बनाते हैं, है ना। वो दिन अब आने वाले हैं कि जब पहले हम रावण को बनाएंगे अच्छे से, उसके पुतले खड़े करेंगे साथ में मेघनाद कुंभकर्ण का, और फिर समय आने पर उसे जलाया जाएगा। तो ऐसा हम करते ही क्यों हैं, रावण बने ही ना तो फिर वो चले भी ना। क्या ऐसा कभी हो सकता है? जी, ऐसा होना चाहिए। खैर, चलिए अब इस विचार से हम चलते हैं अपने ई कचरे की तरफ। हमारे आसपास में बिखरे हुए कूड़े कचरे की बात तो हम हमेशा अक्सर करते रहते हैं, लेकिन ई कचरे की बात हम कब करेंगे? ई कचरा यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, और आज है अंतर्राष्ट्रीय ई वेस्ट दिवस। तो यानी कि आज दिवस है, इसलिए आज हम बात करेंगे, है ना। जबकि हमें अपने घर में भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो रहता है वो देख लेना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई कचरा उन इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों से बना होता है जो पुराने, टूटे हुए या अपनी उपयोगिता की अवधि समाप्त कर चुके होते हैं।

जैसे कि टेलीविज़न, कंप्यूटर, टेप प्लेयर, प्रिंटर, वीसीआर, ये वीसीआर वगैरह सब कुछ ये पुराने समय की बातें हो गई हैं, है ना। तभी तो हम बता रहे हैं आपको कि अगर अभी तक आपके घर में हैं पड़े हुए तो इन्हें निकाल दीजिएगा। गेम कंसोल और अन्य कई इलेक्ट्रॉनिक सामान अक्सर किसी के तहखाने या गैराजों में वर्षों तक पड़े रहते हैं, या फिर इससे भी बदतर उन्हें कूड़े के ढेर में फेंक दिया जाता है। और विश्व में इस कचरे की सबसे तेजी से बढ़ती समस्या के रूप में ये ई कचरा प्रतिवर्ष लगभग 5 करोड़ टन या फिर उससे अधिक कचरे के लिए जिम्मेदार है। दुख की बात यह है कि इस ई कचरे में से 20% से भी कम का दस्तावेजीकरण, पुनः चक्रण और उचित तरीके से निपटान किया जाता है। ई कचरा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का उद्देश्य है रिसाइकिलिंग और उचित निपटान रणनीतियों के माध्यम से इस वैश्विक समस्या से निपटने के लिए सभी को एकजुट करना। इसके इतिहास के बारे में बात करें तो इतिहास में चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का पहला आयोजन 2018 में हुआ था, जब अपशिष्ट विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण WEE फोरम द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस दिन की शुरुआत का उद्देश्य ई कचरे को कम करने और पुनः चक्रित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता, सार्वजनिक जागरूकता और समझ को बढ़ाना था, जिससे कि व्यक्तियों, कंपनियों और समुदायों को पर्यावरण की रक्षा के लिए अधिक प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। WEE फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय संघ है जिसमें दर्जनों विभिन्न ई कचरा संग्रहण योजनाएं शामिल हैं और दुनिया भर से कम से कम 20 अलग अलग देशों में ये काम कर रही है। तो चलिए फिर आज ही देखिएगा आपके घर में क्या क्या ई वेस्ट पड़ा हुआ है और उसे सही जगह पे निपटाने की कोशिश कीजिएगा। और हम भी जाकर के घर में ज़रूर देखेंगे भाई, ऐसा नहीं है कि आपसे हम बता रहे हैं तो हमारे पास नहीं होगा। बिल्कुल है पड़ा हुआ, बस उसे थोड़ा सा देखने की, संगठित करने की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ वो पड़ा हुआ है हम सारा कचरा वेस्ट जो है वो एक जगह पर लाएंगे और उसे फिर हमारे यहाँ आसपास में भी ई कचरा सेंटर्स होते हैं जहाँ पर कि हम उसे डिपॉजिट करवा सकते हैं, तो ढूंढ करके आप ये काम भी ज़रूर कर दीजिएगा और हम तो करने ही वाले हैं।

और एक और संजीदा सा गीत आ रहा है आप सभी के रेडियो सेट्स पर। जिंदगी और तूफान फिल्म का गीत है मुकेश की आवाज़।

जी बिल्कुल, आदमी सोच तो ले पहले कि उसका इरादा क्या है, क्योंकि जो इरादे होते हैं ना, बस वही आपको कामयाबी या फिर असफलता दिलवाते हैं। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। तो चलिए आप सोचिए कि आपके इरादे क्या हैं, और हम आपको देते हैं एक जानकारी, और जो भी आपके इरादे होंगे ना, तो बस इस जानकारी के चलते पहले वो सब कर लीजिएगा जो कि बिजली से संबंधित सारे कार्य हैं, क्योंकि अब आप समझ गए होंगे कि जानकारी कैसी आने वाली है। सहायक अभियंता संतोष कुमार ने जानकारी दी है, सिद्धपुर के विद्युत उपमंडल सिद्धपुर के सहायक अभियंता संतोष कुमार जी के कहने के अनुसार, सामान्य रखरखाव के चलते 14 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक 11 केवी फीडर धर्मशाला के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र चटोरी गली, नियर पेट्रोल पंप, होटल क्लब महिंद्रा, नियर शीला चौक, HDFC बैंक आदि में विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी, और मौसम खराब होने या फिर अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य स्थगित भी किया जा सकता है या फिर आंशिक रूप से किया जा सकता है। तो जनता से सहयोग की अपील की गई है। तो दोस्तों, अभी समय है 12 बजे से 2 बजे तक ये बिजली जो है गायब रहने वाली है आपके क्षेत्रों में, जैसा हमने आपको क्षेत्र बता दिए हैं, चटोरी गली, नियर पेट्रोल पंप, अशोक क्लब महिंद्रा, नियर शीला चौक, HDFC बैंक आदि। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सहयोग ज़रूर कीजिएगा, 2 घंटे की तो बात है। वैसे ये जो बिजली के कार्य होते हैं ना, 6 बजे तक बिजली जाती है जब कट लगता है तो, लेकिन और फिर कार्य होता है, परंतु आते आते कई बार 7 भी बजा देती है, तो पहले ही अपने सारे कार्य जो हैं 12 बजे से पहले पहले कर लीजिएगा। अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के अवसर पर मंगलवार को जिला कांगड़ा में समर्थ कार्यक्रम के तहत विभिन्न शिक्षण संस्थानों और सामुदायिक स्तर पर जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गई, और इन कार्यक्रमों का उद्देश्य विद्यार्थियों, युवाओं और आम लोगों को आपदाओं से बचाव, सुरक्षित रहने के तरीकों और आपातकालीन परिस्थितियों में सही कदम उठाने के बारे में जानकारी देना था। उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहले से तैयारी करना बहुत जरूरी होता है, और आपदा प्रबंधन में हर नागरिक, परिवार, विद्यालय और समाज की भागीदारी आवश्यक है। सही जानकारी और समय पर की गई तैयारी से जानमाल के नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम करण दिवस का संदेश ये है कि आपदा से बचाव की तैयारी घर से शुरू होती है, तो प्रत्येक रविवार को आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पहले से योजना बनानी चाहिए, और परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकालने के रास्तों की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही प्राथमिक उपचारों की सामग्री, जरूरी नंबर, संपर्क नंबर और आपातकाल में काम आने वाली आवश्यक वस्तुएं भी उपलब्ध होनी चाहिए आपके पास। और उनका कहना है कि बच्चों और युवाओं को आपदा प्रबंधन की जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। विद्यार्थी विद्यालय में सीखी गई बातों को अपने परिवार और आसपास के लोगों तक पहुंचाकर जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, और इसी उद्देश्य से अक्टूबर माह के दौरान जिले में समर्थ कार्यक्रम के तहत विभिन्न गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं। उपायुक्त ने कहा कि आपदा से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए पहले से तैयारी करना, संभावित खतरों को पहचानना और सुरक्षा के उपाय अपनाना बहुत जरूरी है।

ताकि हर व्यक्ति आपातकालीन परिस्थितियों में सुरक्षित और जिम्मेदारी से व्यवहार करे। और अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों, स्थानीय निकायों और आम नागरिकों से इन गतिविधियों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की गई। श्रोताओं, इसके बारे में जानकारी एक हमारे पास भी है, हम आपको बताएंगे गीत के बाद। अभी पीछे जैसे ही हमने पोस्टल डे भी मनाया और साथ में पखवाड़ा भी मनाया, यानी कि डाक दिवस, आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत। जब खत मिलता है ना तो ऐसी ही खुशी होती है।

अर्धांगिनी फिल्म का ये गीत सुना आपने अभी लता मंगेशकर की मखमली आवाज में। इक्यानवे दशमलव दो मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ आप बने हुए हैं। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग धर्मशाला है और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट ज्योति पठानिया। श्रोताओं, 14 अक्टूबर यानी आज की कुछ और बात करें तो 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में अपने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म को अपनाया था और इस ऐतिहासिक घटना की याद में बौद्ध अनुयायियों द्वारा इसे धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चौदह अक्टूबर 1882 को शिमला में, जो कि अब हिमाचल में, हिमाचल प्रदेश में है, पहले नहीं होता था, उसमें पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, जो कि ब्रिटिश काल में भारत का चौथा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी और गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी का जन्म 14 अक्टूबर 1884 को हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अदम्य साहस दिखाने वाले और मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का जन्म हुआ था 14 अक्टूबर 1950 को। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज बल्लेबाज और वर्तमान मुख्य कोच

X1 विमान उड़ा करके इतिहास में पहली बार ध्वनि की गति को पार किया था। तो ये थी श्रोताओं आज की 14 अक्टूबर की तारीख की जानकारियां जो हमने आपको दी 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। चलिए अब चलते हैं हम फिर से एक गीत की ओर। तो आज मानसिक स्वास्थ्य और जिंदगी की बातें भी हो रही हैं। स्वास्थ्य के बारे में आपने जान लिया है डॉक्टर साहिबा से और हम अब आपको जिंदगी से जुड़ा हुआ एक गीत सुनवाएंगे। तो जिंदगी का नाम जुबां पे किस तरह से आना चाहिए, दिल का हीरा फिल्म का ये गीत है आप सभी के लिए। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें हैं।

ज़िंदगी का ज़ुबां पर नाम कैसे आता है आप लोगों की ज़ुबां पर, ये तो आप जाने, लेकिन भाई हमने तो आपको ये गीत सुनवा दिया है 91.2 MHz रेडियो गुंजन धर्मशाला से। कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग धर्मशाला। ये जो गीत आप सुन रहे थे ये था फिल्म दिल का हीरा से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें थी। इसमें एक बच्चे की आवाज भी है। और जिसकी आवाज आप सुन रहे हैं, मैं हूं आपकी रेडियो होस्ट ज्योति बठानिया। और इस गीत से पहले जो गीत चला, उससे पहले मैंने आपको कहा था कि आपदा प्रबंधन के बारे में जो जानकारी हमने आपको दी है यहाँ से, उसके बारे में मेरे पास भी कुछ है कहने के लिए, तो मैं भूल गई थी, लेकिन आपको बताना, अब बता देती हूँ। तो वो जानकारी कुछ ऐसी है कि हमारे धर्मशाला में या फिर पूरे प्रदेश में ही ये एक ऐसी मुहिम चली हुई है जिसमें कि अब हर वार्ड में, हर पंचायत में ये आपदा प्रबंधन के बारे में कुछ जो लोग हैं जो वॉलंटियरली काम करना चाहते हैं उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। और उसी ट्रेनिंग के अंतर्गत जब वो ट्रेनिंग वो पूरी कर लेंगे, वैसे तो सारी जानकारी सभी लोगों को दी जा रही है, लेकिन बीच में से कुछ लोग आते हैं ना वॉलंटियरली काम करने के लिए, तो ऐसे लोगों को चुना जाएगा, उन्हें अलग स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी और उन्हें बाद में फिर कुछ किट्स भी मिलेंगी। क्योंकि जब हम आपदा प्रबंधन के लिए जाते हैं या कहीं पर कुछ हो गया है वहाँ जाते हैं, तो हमारे पास उचित सामान भी होना चाहिए। तो उस किट में लॉन्ग बूट हैं, आपके ग्लव्स हैं अच्छी क्वालिटी के, और गॉगल्स हैं जो कि पानी में या बरसात के दिनों में पहन सकें, टॉर्च है अगर रात को कहीं कोई प्रॉब्लम हो गई है तो आपको अंधेरे में दूर तक मार करने वाली वो टॉर्च होती है, एक विसल होगी और साथ में एक मोटी सी रस्सी होगी कि अगर आपको किसी को कोई नीचे खाई में गिर गया है उसे आपको लाना है तो बांध करके, तो वो काफ़ी अच्छी मजबूत रस्सी होती है। इसके बारे में शायद मैं जानकारी आपको पहले दे चुकी हूँ, लेकिन आज ये ऑफिशियली जब अनाउंस हो चुका है तो मैंने सोचा कि चलिए ये जानकारी जो कहीं छुपी ढकी हुई थी पर्दे के पीछे वो आप लोगों तक लाई जाए। और भी बहुत कुछ है उस किट में, आपको लाइफ जैकेट मिलेगी अगर कहीं आपका पानी में कहीं कोई गिर गया है उसको बचाव करना है, तो पहले आपको अपना बचाव करना है, अगर आप अपना बचाव नहीं कर पाएंगे तो दूसरों को कैसे बचाएंगे ना, तो वही सारी चीज़ें आपको उस किट में मिलेंगी और साथ में स्पेशल ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा। तो कौन कौन हैं वॉलंटियरली जो इस तरीके की चीज़ों में काम करना चाहते हैं या फिर इस तरह की जो वर्कशॉप्स हैं उनमें हिस्सा लेना चाहते हैं, तो आगे ज़रूर आइएगा जब भी आपके यहाँ पर कुछ ऐसी डिमांड आती है आपके वार्ड में या पंचायतों में। ये आज मैं आपको जानकारी दे रही हूँ, हो सकता है इसमें आपके वार्ड में या आपकी पंचायत में आते आते ये चीज़ें समय लगाएं, लेकिन आपके दिमाग में उस वक्त ये होगा कि हाँ हमने कहीं रेडियो से सुना था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और क्या क्या होने वाला है हमारे आसपास उसकी जानकारी भी ले लीजिए क्योंकि समय कम रह गया है। आज कांगड़ा कला संग्रहालय धर्मशाला में 4 दिवसीय बांस कलाकृतियों की एक कार्यशाला और प्रदर्शनी का आयोजन शुरू हो जाएगा। तो 14 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ये चलने वाला है और आज 11:30 बजे इसका शुभारम्भ करेंगे SDM उपमंडलाधिकारी श्री मोहित रत्न, और इसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। और साथ ही नॉर्वलिंगा फेस्टिवल भी शुरू होने वाला है जो कि 23 और 24 अक्टूबर को होगा, 2 दिन। और 24 से 31 दिसंबर तक के बारे में तो आप लोगों को पता चल ही चुका है, लाइव कॉन्सर्ट होगा हमारा स्टेडियम, जी हाँ, उसके प्रेमिसेस के अंदर। इस बार आपको खर्च नहीं होंगी कुछ टिकटें, लेकिन अभी टिकट्स का जो अमाउंट है वो पता नहीं चला है और कितनी कितनी टिकट होंगी, कैसे कैसे मिलेंगी वो भी नहीं पता है। जैसे ही हमारे पास जानकारी आती है हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और अब इस कार्यक्रम से हमें भी विदा दीजिए। अरे नहीं नहीं, आपको एक गीत सुनवाएंगे, ऐसे कैसे छोड़ के चले जाएंगे आपको। परंतु श्रोताओं,
बस हमारा और आज आपका ये सफ़र आज का था यहीं तक। अब ज्योति पठानिया को दे दीजिए अनुमति, इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रही हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रहे संदीप परमार और मेरे साथ टेक्निकल असिस्टेंट रही शशि। आप जानते हैं ना शशि को अच्छे से? जी हाँ, तो शशि थी, थोड़ी थोड़ी आज गुमसुम गुमसुम सी हैं, कोई बात नहीं। लीजिए, ये रहा आप सभी के रेडियो सेट्स पर ये प्यारा सा गीत। इस गीत के साथ कहना चाहूंगी जय हिंद, वंदे मातरम।

यह नव दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशाएं इन्हीं से आलोकित।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने हेयर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग अपना।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: अरे इतना मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे भालू शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानो से लेकर कहाँ मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

91.2 मेगाहर्ट्स पर यह है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, मैं हूँ आपकी रेडियो दो शशि और हाजिर हो गए हूँ कार्यक्रम लेकर गीत सुहाने नए पुराने। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

तो श्रोताओ, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत, गीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का। तो अपने कार्यक्रम में फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आपको ले चलते हैं फिर से एक प्यारे से गीत के सफर में।

91.2 FM पर यह आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बिल्कुल अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो इसी के साथ अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको फिर से ले चलते हैं एक और गीत की तरफ। तो आप सभी यूं ही सुनते रहिए अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत। फिर से आपको ले चलते हैं एक और गीत की तरफ।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। गीत सुहाने नए पुराने, तो फिर से अपने कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

नवदुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती। दसों दिशाएं इन्हीं से आलोकित।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आए हैं? ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिंस, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों?
5: सर, यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देकर रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग अपना।
13: HIV/AIDS अपने पन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: अरे इतना बार नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

0: श्रोतो 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। श्रोतो अक्सर कहते हैं कि जिंदगी बड़ी बेरंग है और कोई उसमें रंग भर दे, तो आज श्रोताओं और हमारे प्यारे प्यारे दर्शकों की जिंदगी में रंग भरने के लिए हमारे स्टूडियो पे एक बहुत ही खास मेहमान आए हैं। वो न सिर्फ जिंदगी में रंग भरते हैं बल्कि कैनवस पे इतनी सुंदर सुंदर आकर्षक तस्वीरें पेंटिंग्स बनाते हैं जिनका न सिर्फ हिमाचल में बल्कि देश विदेश में नाम है। और वही खास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में आए हुए हैं, अमन सिंह गुलेरिया जी। तो आइए आपकी बातचीत मुलाकात करवाते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से। अमन गुलेरिया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में।
1: जयदेव, थैंक यू वेरी मच अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: और अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि अमन की जो पेंटिंग की जर्नी है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले अमन आपसे जानना चाहेंगे कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ पे हुई?
1: जी मैं नगरोटा सूर्या के समीप एक कटोरा गांव है वहाँ का रहने वाला हूँ। और जो मेरी शुरुआती दौर पे जो शिक्षा है, ट्वेल्थ क्लास जो मैंने कही थी वो कांगड़ा में जीवी स्कूल है वहां से मैंने की। उसके बाद ग्रेजुएशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेलीकॉम इंजीनियर हूं मैं, जिसकी मैंने डिग्री पंजाब में रोपड़ है
0: जी।
1: रोपड़ से IIT बड्डल इंजीनियरिंग कॉलेज है वहां से मैंने प्राप्त की थी
0: जी। तो अमन, एक स्टूडेंट जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, अचानक से ही ये कला और कलाकारी की दुनिया में किस तरह से कदम रखा आपने?
1: जी ये बहुत अच्छा सवाल है मेरे लिए भी। 2014 में जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की, उसके बाद जो मेरी फर्स्ट जॉब लगी थी दिल्ली में एज ए इन ए टाटा डोकोमो कंपनी में एज ए ट्रांसमिशन इंजीनियर।
0: जी
1: 2014 टिल 2015 के एंड तक मैं उसी जॉब में रहा। एज ऑफ नाउ आर्ट का मेरे में कोई दिलचस्पी नहीं थी उस दौरान। लेकिन जैसे ही 2016 का वक्त शुरू हुआ, मैंने एक अपनी जॉब स्विच की और 99acres.com कंपनी है
0: जी।
1: मैं उसमें गया एंड कंपनी में काम करते वक्त कुछ वक्त के लिए मैं अपने घर वापस आया नगरोटा सूर्या में
0: जी।
1: एक हफ्ते के लिए या दो हफ्ते के लिए मैं आया था। उस दौरान कुछ घर पे साफ सफाई का काम चल रहा था। साफ सफाई करते वक्त एक पुराना संदूक मिला जो मेरे ग्रैंडफादर नाना जी अपने नाना जी के बारे में मैं बताऊं तो वो एक टैंक कमांडर थे इंडियन आर्मी में
0: जी।
1: ड्यूरिंग 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान वो शहीद हो गए थे। ही वॉज अ पेंटर टू, आर्टिस्ट थे एंड उनकी बनाई हुई पेंटिंग्स जो लगभग 60 साल पुरानी है वो मेरे परिवार में थी, जिसमें से दो पेंटिंग्स मेरे परिवार में है, दो पेंटिंग्स मेरी मासी जी के और दो पेंटिंग्स मेरी दूसरी मासी जी के परिवार में थी
0: जी।
1: तो वो दो पेंटिंग्स उस दौरान सफाई करते वक्त वो सामने आई थी। उनके बारे में मैं बचपन से देखता आ रहा था, सुनता आ रहा था, लेकिन कभी इतना महसूस नहीं हुआ कि ये पेंटिंग्स मुझसे कुछ कह रही हैं। उन पेंटिंग्स की गहराई और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इन पेंटिंग से मैं अपने नाना जी से बात कर सकता हूँ। नाना जी को शहीद 1971 में हुए थे और मेरा जन्म लगभग 21 साल बाद 1992 में हुआ था। तो वो पेंटिंग्स से मैं अपने गुजरे हुए वक्त अपने नाना जी को महसूस कर सकता था। तो वही दो पेंटिंग्स मेरी प्रेरणा बनी। वापिस अपने जॉब प्रोफाइल में 99acres में गया एंड सैटरडे संडेज ऑफ होते थे, 5 days वीक था वहां पे एंड अपनी तरफ से मैंने प्रैक्टिस शुरुआत की, जिसे कहते हैं सेल्फ टॉट आर्टिस्ट, खुद से ही अभ्यास करके कला साधना को अपने अंदर समेटना, वो मैंने शुरुआत किया। तब मेरी उम्र लगभग 23-24 साल थी
0: जी।
1: और उसके बाद 9 महीने काम करने के बाद मैंने एक डिसीजन लिया कि अब मैं दिल्ली हमेशा के लिए छोड़ दूंगा एंड आई विल कम बैक टू माय होम टाउन नगरोटा सूर्या और अपना ही कुछ करूंगा, लेकिन साथ में अपनी इस कला साधना को भी
0: जारी
1: रखूंगा। उस दौरान क्या होता है कि मेरी मदर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में नियुक्त थे और उनकी जो पोस्टिंग थी वो शिमला हो गई
0: जी।
1: और अब मेरी माता जी ने मुझसे कहा कि आप अभी घर पे हो तो आप मेरे साथ चलो, मेरा साथ दीजिए। वहां पे कुछ 6 महीने का वक्त उनको पूरा करना था सर्विस में
0: जी।
1: जब मैं शिमला पहुंचा तो मैं क्या देखता हूँ कि मॉल रोड पे एक गेटी थिएटर है
0: जी।
1: वहां पे एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, वहां पे अलग अलग प्रदेश से कलाकार वहां पे अपनी पेंटिंग्स वहां पे प्रदर्शित की हुई थी। तो मैं उनसे काफी प्रेरित हुआ। प्रेरणा तो वो दो पेंटिंग्स थी जो मेरे नाना जी ने बनाई थी
0: जी।
1: लेकिन मुझे आभास हुआ कि मेरी जर्नी यही है और इसी में मुझे आगे बढ़ना है। तो उन 6 महीनों में मैं एकदम फ्री था, कुछ करने को इतना था नहीं, तो मैंने खुद से ही प्रैक्टिस कर करके उन 6 महीने के दौरान पेंटिंग्स को खुद से सीखा। तो सबसे पहले जो मैंने सीखा वो सीखा था स्केचिंग, पेंसिल शेडिंग, चारकोल, एंड जब उसमें मुझे समझ आ गई देन उसके बाद जो रंगों की दुनिया आती है, ऑयल कलर्स, एक्रीलिक कलर्स, उस पे मैंने हाथ अपना निखारना शुरू किया। तो इस तरीके से एक इंजीनियर की जॉब से मैं आर्टिस्ट की लाइफ में मेरा ट्रांजिशन हुआ।

0: तो आपको 2016 से अब तक अपने अंदर क्या चेंज लगता है? उस दौरान आपने ब्रश को सिर्फ उठाया, चलाना शुरू किया, और अब तक जो 10 साल का ये अंतराल हम कह सकते हैं, इसमें एक ऐसा कलाकार उभर के सामने आया है जो 10 साल वाले अमन को बिल्कुल ही पीछे छोड़ आया है, तो ये जर्नी कैसी रही आपकी? इसमें क्या कुछ आपने सहा और कैसे सीखा, कैसे आगे बढ़े?
1: तो 2016 और 17 के दौरान जब मैं शिमला में था, उस वक्त जब भी कोई एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट के तौर पे, फॉर एन एग्जांपल एक स्टूडेंट है जो फाइन आर्ट्स का कोर्स कर रहा है, डिग्री प्राप्त करता है, वो एक कॉलेज लाइफ है, उस स्टूडेंट को रियल वर्ल्ड का नॉलेज नहीं है, क्योंकि सिर्फ कॉलेज में फाइन आर्ट्स ही सिखाया जाता है। हाउ टू सेल अ पेंटिंग स्टूडेंट्स को नहीं पता होता। जब कॉलेज खत्म हो जाता है, मोस्ट चैलेंज, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि हमने अब पेंटिंग तो बनाना सीख चुके हैं, अब उसे बेचा कैसे जाए। तो यही एक चैलेंज जो होता है वो हर एक कलाकार के, जो शुरुआती दिनों में अपनी पेंटिंग्स को सेल करने की कोशिश करता है, वो फेस करता है। तो इसको ओवरकम करने के लिए जो सबसे हेल्पफुल मेरे लिए रहा, वो मेरा 99acres का प्रोफाइल रहा, जिसमें मैंने एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम किया था। वहां पे मुझे समझ में आया कि किसी भी प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाता है। आज का दौर ऐसा है पिंकी जी, जहाँ पे सिर्फ एक आर्टिस्ट ही हो पाना काफी नहीं है। यू हैव टू बी मल्टी टैलेंटेड इन अदर स्किल्स ऑल्सो। तो सेल्स मैंने वहां से सीखा था, एंड जब मैंने फर्स्ट टाइम शिमला में ही रह के आर्ट की एग्जीबिशन लगाना चाही थी, जब मैंने लगाई थी तो इट वॉज ए टोटल फेलियर, जिसमें मैंने 15 पेंटिंग्स गेटी थिएटर में लगाई थी और उसमें से एक भी सेल नहीं हुई थी। तो मेरा मोराल काफी उसमें डाउन हो गया था। देन आई रियलाइज्ड आई हैव टू मेक अ न्यू स्ट्रेटजी, और वही सेल्स वाली जो एबिलिटी थी मेरे अंदर, मैंने उसे दोबारा से फिर से जगाया।
0: आपने कहा कि पेंटिंग्स नहीं बिकी और आपका मोराल डाउन हुआ, वो किसी भी आर्टिस्ट के लिए, वो चाहे किसी भी फील्ड में हो, ये वाकई में बहुत मतलब कह सकते हैं कि मोराल डाउन होने वाली ही बात है। उसके हाथ बहुत निराशा लगती है और कई बार वो हाथ खड़े भी कर देता है कि अब आगे नहीं। तो आपको ऐसा लगा, और लगा और लगने के बाद फिर कैसे आप आगे बढ़े?
1: जी मैं बताता हूँ आपको, ये बहुत जाहिर सी बात है, जब भी किसी भी कलाकार अपने काम को पूरे एफर्ट्स के साथ प्रदर्शित करता है और वो काम बिक नहीं पाता है, या फिर उसको उस तरह का रिजल्ट नहीं मिल पाता है, तो ये जाहिर सी बात है कि वो कलाकार निराश हो जाता है, उसे दोबारा से काम करने के लिए प्रेरणा नहीं मिल पाती।
0: जी,
1: बट ये एक आर्टिस्ट की लाइफ का हिस्सा है, उसे इससे गुजर के जाना ही पड़ेगा।
0: जी,
1: हम पीछे नहीं हट सकते, एंड दोबारा से हमें उठना है और काम करना है।
0: जी,
1: और लेकिन इस बार मैंने अपनी थोड़ी स्ट्रेटजी चेंज की थी। आई थॉट इफ एग्जीबिशन में पेंटिंग सेल नहीं हो पाती है, तो व्हाई नॉट आई गो टू द पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन आर्ट एंड सेल देम, अपने बारे में उनको मैं बताऊं। तो शिमला में ही मैंने अपनी कुछ पेंटिंग्स को लेके, आई मीन 5 या 6 पेंटिंग्स लेके, आई वेंट टू हायर ऑफिशियल्स लाइक बैंक मैनेजर्स, एसडीएम ऑफिसेस, तहसीलदार, उनसे मैंने मिलना शुरू किया, मैंने उनको बताना शुरू किया, जिसका रिजल्ट ये रहा कि विद इन 3 to 4 मंथ्स में मेरी 7 से 8 पेंटिंग्स सेल हो चुकी थी, जिससे कि मुझे एक इनिशियली मोराल मिला आगे काम करते रहने का।
0: जी,
1: तो ये जर्नी थी मेरी शिमला की। उसके बाद मेरे माताजी रिटायर हो गए, एंड फिर हमें वापस आना पड़ा धर्मशाला यहाँ पे।
0: जी,
1: और फिर उसके बाद जो मेरा सफर रहा 2019 की बात है, आई थॉट कि अगर जीविका करने के लिए फाइनेंशियली तौर पे अगर मुझे स्ट्रगल नहीं करना है, तो मुझे एक और काम करना चाहिए। नगोड़ा सूर्या में मैंने अपना एक प्लॉट था मेन बाजार में, आई मेड अ बिल्डिंग देयर विद द हेल्प ऑफ माय पेरेंट्स एंड स्टार्टेड ए रेस्टोरेंट एंड अ बेकरी देयर, ये सोच के कि पेंटिंग्स तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं पेंटिंग्स करता रहूंगा आई विल स्ट्रगल फॉर मेनी इयर्स, मेनी कमिंग इयर्स, तो ये काफी मुश्किल हो जाएगा एक लाइफ को स्मूथली चलाने के लिए, क्योंकि उस दौरान मेरी शादी भी होने वाली थी। 2020 में मेरी शादी हुई थी दिसंबर में, कोविड के टाइम पे। तो 2019 में मैंने ये काम शुरू कर दिया था अप्रोक्सीमेटली। तो जब मैंने ओपनिंग करा तो वो 2020 के ही समय पे मार्च के महीने में, 12 मार्च को मैंने ओपन किया और
0: उसी टाइम कोविड,
1: 22 मार्च को कोविड आ गया था। अगेन एक बहुत बड़ा चैलेंज था मेरे लिए उस टाइम पे कि कैसे ये सब चीजों को हैंडल करना है। बट ये सिर्फ अकेले मेरे साथ ही नहीं हो रहा था, पूरी दुनिया इससे
0: गुजर रही थी। जी।
1: बीतते वक्त के साथ मैंने हार नहीं मानी और मैंने रेस्टोरेंट बंद नहीं किया। किसी ना किसी तरीके से जो भी मेरे पास वर्किंग कैपिटल बची थी उससे हम काम करते रहे
0: जी।
1: और अपनी पेंटिंग्स को भी मैंने कंटिन्यू रखा। वही एक वक्त था 2021 का जब पहली दफा एक बैंक मैनेजर थे जिनका मैं आज भी बहुत आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से ही शुरुआत हुई है मेरी कला की।
0: जी।
1: 2021 तक रेस्टोरेंट की दुनिया में मैं इतना बिजी था कि पेंटिंग्स करने का मुझे समय भी नहीं मिल रहा था। और एक तरीके से एक पॉज आ चुका था मेरी लाइफ में 4 से 5 महीने का कि मैंने ब्रश नहीं उठाया था। तो उस दौरान एक मुझे फर्स्ट टाइम ऑर्डर आया नगरोटा सूर्या से, बैंक मैनेजर सर रक्षित रैना
0: जी,
1: वो पोस्टर थे बैंक SBI घाट रोड की ब्रांच में। ही सेड कि मुझे पता चला है आपके बारे में और हम चाहते हैं कि हमारे आसपास के जो मंदिर हैं और देवी हैं उनकी आप हमें एक 3 पेंटिंग्स बना के दें, जिसमें से एक था मसरूर मंदिर रोकट, दूसरा था बाथू की लड़ी और तीसरा था माता बगलामुखी जी। तो यहीं से शुरुआत हुई थी जो पेंटिंग्स आज मेरी सिग्नेचर पेंटिंग बनी हुई है, जिसके बारे में आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इनकी शुरुआत यहाँ से होती है। तो वो पेंटिंग्स मैंने उन्हें बना के दी। तकरीबन मुझे भी उस टाइम पे 1 महीने का समय लग गया था इन 3 पेंटिंग्स को बनाने की, क्योंकि एक एक्सपर्टीज नहीं थी उस टाइम मेरे पास इन पेंटिंग्स को बनाने की। इन पेंटिंग्स को बनाने के बाद जो एक कलाकार के अंदर का जो कलाकार था वो थोड़ा मीन्स की
0: और उत्साहित हुआ
1: सही कह रहे हैं वही शब्द है, उत्साहित हुआ और मैंने फिर से ब्रश उठाए, रंग चलाए, कुछ और पेंटिंग्स बनाई। उसी के बाद नेक्स्ट मंथ ही उन्हीं के स्टाफ मेंबर में से एक कैश ऑफिसर थे, उन्होंने मुझे कहा कि हमें माता बगलामुखी जी की 2 पेंटिंग्स और चाहिए, जो आपने बनाए थे हम उनसे काफी प्रभावित हुए और 2 और बना के दीजिए। उन्हें 2 बना के दी। फिर उसके बाद वहां से सिलसिला शुरू हुआ, वो 2 पेंटिंग्स जहां गई वहां से फिर से मुझे और ऑर्डर्स आने शुरू हुए और ऐसे करते करते करते आज तक टिल प्रेजेंट 2026 माता बगलामुखी जी की 28 मूर्तें मैंने ओरिजिनली तैयार की और लोगों ने उसे अपनाया बहुत अच्छे से और जो उनके रिप्रिंट्स थे वो भी बहुत सारे लोगों के आज घरों में है मेरी पेंटिंग्स के। तो यहाँ से इन 3 पेंटिंग्स की शुरुआत हुई थी।
0: चलिए अमन, आपकी बगलामुखी वाली पेंटिंग वाकई में बहुत प्रसिद्ध है।
1: शुक्रिया।
0: और इसके अलावा और भी कुछ एक पेंटिंग्स हैं जिसके बारे में हम जिक्र करेंगे कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम को जो हमारे श्रोता सुन रहे हैं उनको हम गीत भी सुनाना चाहेंगे, तो अमन आपसे ही पूछेंगे कि आपकी पसंद का अगर कोई गीत है जो आप सुनना चाहते हैं और आपके साथ साथ हमारे श्रोता भी सुनेंगे तो वो हम इस कार्यक्रम में सुनाते हैं।
1: जी, तो मेरी पसंद का जिस गाने को मैं हमेशा पेंटिंग करते वक्त सुनता हूँ जो मेरे दिमाग को शांत करता है वो है जब भी मेट मूवी से तुमसे ही।
0: तो चलिए श्रोताओं एंजॉय करते हैं जब भी मेट मूवी का ये गीत तुमसे ही, और बातचीत का ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा।

0: तो श्रोताओं, वापस आते हैं इस प्यारे से गीत के बाद। स्टूडियो में मौजूद है आज हमारे साथ खास मेहमान अमन सिंह गुलेरिया जी, जो कि पेंटिंग आर्टिस्ट हैं। उनकी पेंटिंग की जर्नी, पेंटिंग की यात्रा हम आज इस कार्यक्रम में साझा कर रहे हैं। तो अमन, आपने बताया कि आपकी जो पेंटिंग्स थी वो इस तरह से फेमस हुई, उसके बाद आपको काम भी मिलने लगा और आप उत्साहित भी हुए। इसके अलावा आपकी और जो पेंटिंग्स हैं उनमें आप नेचर को काफी उकेरते हैं अपने कैनवस पे, और हिमाचली संस्कृति, खासकर अगर मैं बात करूं गद्दन, हमारे जो हिमाचल के ट्राइबल एरिया की गद्दन है उनकी बड़ी सारी पेंटिंग्स आपने बनाई हैं, और उनके बारे में आप बताएं कि वो कहां से आपके माइंड में आया कि ये पेंट करना चाहिए, या नेचर को आप उकेरते समय आपके मन में क्या एहसास होता है कि पहाड़ में इस वक्त पेंट कर रहा हूं, तो उस समय हर आर्टिस्ट के मन में होता है कि मैं ये बना रहा हूं, तो एक फील होता है, वो फील क्या रहता है आपका?
1: जी, मैं बताता हूं आपको। मेरी जो पेंटिंग है उसका टाइटल है हिमालयन ग्रेस द गिद्दन।
0: जी,
1: इस पेंटिंग की शुरुआत कैसे होती है मैं आपको एक कहानी के तौर पे समझाना चाहूंगा।
0: जी,
1: जब मैं ये अपनी जो ये तीन पेंटिंग्स हैं, माता बगला मुखी जी, बातों की लड़ी और मशहूर टेम्पल्स बना चुका था, तो लगभग कोई 60 या 70 पेंटिंग्स के ओरिजिनल क्रिएट हो चुके थे। तो एक दौरान मुझे कॉल आया था, जो देहरा से XMLA जी हैं, होशियार सिंह जी, उनकी टीम में से, कि एक होटल के लिए हम पेंटिंग्स चाहते हैं, तो वी विल विजिट इन योर होम आर्ट गैलरी कटोरा। तो सर आए थे एंड तब मैंने उन्हें सजेस्ट किया कि जो हमारा एक ट्रेडिशन एंड कल्चर है इसे पेंट किया जाए, तो ये काफी लोग इसे देखना पसंद करेंगे और एडमायर करेंगे। तो सर ने बोला कि जो भी आपको बेस्ट लगता है आप पेंट कीजिए। देन आई डिसाइड कि अगर पेंटिंग हो तो एक लार्ज कैनवास पे हो, और जब वो एक लार्ज कैनवास पे एक बड़ी सी दीवार के ऊपर लगेगी तो ये बहुत प्रभावित करेगी। तो जब ये हुआ उसके बाद गद्दन पेंटिंग जो थी, जो सबसे पहले अगर बताई जाए तो जो हमारे हिमाचल के पद्मश्री कलाकार शोभा सिंह जी, उनके द्वारा बनाई गई थी। लेकिन जो मैंने पेंटिंग बनाई बिना किसी नकल के, केवल सिर्फ उनका आशीर्वाद लेके, उनको अपना मन में गुरु मान के उस पेंटिंग को बनाना चाहा, और कुदरत ही उस पेंटिंग को जब मैंने शुरू किया और वो लगभग 20-25 दिनों में तैयार हो गई थी, और वो एक्रेलिक मीडियम पे ऑन अ प्रोफेशनल कैनवास पे मैंने उस पेंटिंग को बनाया, जो मेरा गद्दन का फर्स्ट एडिशन था। जब वो पेंटिंग होटल में लगी तो उससे क्या हुआ कि, और सोशल मीडिया पे आई, देन उसके एक हफ्ते बाद ही मुझे दूसरी गद्दन का ऑर्डर आ गया था। वो कैसे हुआ कि एक रात का समय था, 8 बज रहे थे, तो मुझे एक कॉल आया, तो कॉल पे सर MLA सर सुधीर शर्मा जी थे
0: जी।
1: उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बनाई हुई पेंटिंग मुझे बहुत पसंद आई है और हम चाहते हैं कि आप इस पेंटिंग को दोबारा से हमारे लिए बनाएं। तो दूसरा जो वर्जन था वो सर के लिए मैंने तैयार किया था, उनकी पर्सनल कलेक्शन के लिए
0: जी।
1: और ऐसा होता है कि जब एक काम को आप बहुत अच्छे से बनाते हो तो वहीं से आपको काम आना शुरू हो जाता है
0: जी,
1: किसी प्रदर्शनी की जरूरत नहीं पड़ती
0: जी।
1: तो ऐसे ही कुछ हुआ। फिर जो तीसरा वर्जन था इस पेंटिंग का, वो भी जो देहरा में पेंटिंग लगी है होटल में, वहीं से मुझे आया, तो वो SDM ऑफिस जो देहरा का है वहां पे SDM सर ने मुझसे वो पेंटिंग बनवाई थी अपने लिए। तो ये इस पेंटिंग्स की कहानी थी।
0: ठीक है अमन, आपने हिमाचल में रह करके हिमाचली जो हमारे देव स्थल हैं या देवियां हैं उनकी तो पेंटिंग्स बनाई, साथ में हमने गद्दन का भी जिक्र किया। आपकी जो विदेशों में, पहले तो आप विदेशों की ये जर्नी बताएं कि कौन कौन सी वो कंट्रीज हैं जहां पे आपकी पेंटिंग्स सेल हो चुकी हैं, और वहां पे जो पेंटिंग्स बिकती हैं, जाती हैं, वो उनका टाइटल या विषय क्या रहता है?
1: जी, सबसे पहले जब मुझे मौका मिला कंट्री कनाडा में अपनी पेंटिंग्स बेचने का मिला था, वहां पे जो मोस्टली पॉपुलेशन है वो है सिख पंजाबी
0: जी।
1: तो उस तरीके से एक पर्सन है कनाडा से, उन्होंने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया था कि हमें आपकी पेंटिंग्स बहुत पसंद हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए गोल्डन टेम्पल
0: जी
1: अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है उनकी पेंटिंग बना के तैयार करें अलग अलग रूपों में. तो उसमें मैंने 5 पेंटिंग्स थी मेरी फर्स्ट टाइम जो मैंने ये तैयार की थी और सबसे बड़ा चैलेंज था कि पेंटिंग्स को भेजना. तो जो हमारा इंडियन पोस्ट ऑफिस सर्विसेज होता है इंटरनेशनल मीडियम होता है तो उसमें हम पेंटिंग्स को रोल करके एक रोल्ड वुडन केस में डाल के हम भेज सकते हैं, बहुत इजी रहता है. तो इस तरीके से ये मेरी फर्स्ट 5 पेंटिंग्स कंट्री कनाडा में गई, वहां पे सेल हुई थी. सेकंड जो मुझे ऑर्डर आया फेसबुक के थ्रू ही ये सारा सिलसिला चल रहा था उस टाइम पे, ये आया था कीनिया से. कीनिया के नैरोबी शहर से एक मयूर शाह जो बड़ोदरा गुजरात से ही NRI हैं, उनका मुझे मैसेज आया कि अमन सर वी वांट पेंटिंग एंड हमारी ये इच्छा है और हम अपने लिविंग रूम में लगाना चाहते हैं. तब उन्होंने कॉल के दौरान बातचीत हुई एंड आई अंडरस्टूड देयर रिक्वायरमेंट कि किस तरह की पेंटिंग वो चाहते हैं एंड मैंने उन्हें वो बना के दी एंड द सेम चैनल पेंटिंग वेंट टू कीनिया नैरोबी. थर्ड इसके बाद जो मेरी पेंटिंग गई थी जर्मनी से, एक मुझे मैसेज आया था फेसबुक पे, उनका ये था वो जलंधर के रहने वाले थे बेसिकली बट जर्मनी में भी
0: सेटल्ड
1: थे एंड दे सेड कि हमें एक पेंटिंग चाहिए आपसे और पेंटिंग का टाइटल लाहौर दरबार. लाहौर दरबार की पेंटिंग की अगर मैं बात करूं तो ये पेंटिंग आज से बहुत सालों पहले लगभग अगर मैं सही से नहीं बता सकता बट 100-150 साल पुरानी पेंटिंग है जहाँ पे महाराजा रणजीत सिंह जैसे शेरे पंजाब कहा जाता है
0: जी.
1: उनके ऊपर ये पेंटिंग बनाई गई थी बाय अ फॉरनर आर्टिस्ट अगस्तिन शफियत. तो ये पेंटिंग उनको चाहिए थी जिसका रेप्लिका ओरिजिनल वर्जन का रेप्लिका उन्होंने मुझे बनाने के लिए कहा था. ये पेंटिंग बहुत चैलेंजिंग थी, इसमें मोर देन 200 कैरेक्टर्स थे, 200 से ज्यादा लोग थे इसमें और उस पेंटिंग को उसी अंदाज में बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था जब कोई कलाकार फर्स्ट टाइम इसको बना रहा था
0: जी.
1: इस पेंटिंग को बनाने में लगभग मुझे 2 से 2.5 महीने लग गए थे बिकॉज सबसे पहले उसे स्टडी करना जरूरी था, क्या कलर रेंज है वहां पे, क्या कंपोजिशन है वो समझना भी बहुत जरूरी था
0: जी.
1: तो 2.5 महीने के बाद जो जिन्होंने मुझे पेंटिंग का ऑर्डर दिया था दे केम पर्सनली टू माई होम आर्ट गैलरी नगरोटा सूर्या
0: जी.
1: और उन्होंने पर्सनली आके वो पेंटिंग रिसीव की थी. तो ये सिलसिला था मेरी इंटरनेशनल कंट्रीज में जहां जहां पे ये पेंटिंग्स सेल हुई हैं
0: जी
1: और पहुंची हैं.
0: अब कार्यक्रम में एक और गीत सुनेंगे अमन आपकी पसंद का.
1: जरूर जरूर.
0: तो बताएं अगर आप
1: मूवी नेम रॉकस्टार तुम हो
0: पास मेरे. तो श्रोताओं कार्यक्रम में आगे एक और गीत एंजॉय करते हैं और आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, यूं ही बने रहिए.

0: श्रोताओ, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से वापसी करते हैं, अपने खास मेहमान से बातचीत करते हैं। और आज रंगों की दुनिया में हम गए हुए हैं, किस तरह से रंगों के साथ अपनी जिंदगी में रंग भरे जाते हैं, इसी विषय पे हमारे स्टूडियो में खास मेहमान हैं अमन सिंह गुलेरिया जी। तो अमन, आपकी जो पेंटिंग्स है वो विदेशों तक भी बिकी हैं, और तब से लेकर अब तक आपका जो काम है उसमें भी काफी निखार आया है, वो आपका परिणाम दिखा ही रहा है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि जो पेंटिंग्स आप ज्यादातर बनाते हैं उनमें कौन सी पेंटिंग्स, उसमें ऑयल कलर या वाटर कलर, एक्रेलिक, किसको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, या किन पेंटिंग्स में ये डिफरेंस करते हैं आप रंगों का?
1: जी, अगर बात करेंगे, अगर मुझे नेचर की पेंटिंग बनानी है तो मैं मोस्टली एक्रेलिक कलर्स का इस्तेमाल करता हूँ। क्योंकि एक्रेलिक कलर्स की विशेषता ये है कि वो बहुत जल्दी सूख जाते हैं एज कम्पेयर टू ऑयल पेंटिंग, जिन्हें एक लेयर पे अगर काम किया जाए तो सूखने के लिए एक हफ्ता भी लग सकता है या उससे ज्यादा वक्त भी लग सकता है, तभी उस पर सेकेंड लेयर पे काम हो सकता है। जबकि एक्रेलिक पेंटिंग की बात की जाए तो उस पेंटिंग को आप एक या दो घंटे के अंदर अंदर कंप्लीट कर सकते हैं, वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन जो ऑयल पेंटिंग में स्मूथनेस आती है, अच्छे से हम स्मूथ कर सकते हैं, चीजों को ब्लेंडिंग कर सकते हैं, वो एक्रेलिक में होना इतना पॉसिबल नहीं है। हो सकता है बट बहुत कोशिश के बाद ये चीज की जा सकती है। तो नेचर पेंटिंग्स अगर बनानी हो तो मैं एक्रीलिक में बनाता हूँ। अगर ह्यूमन पोर्ट्रेट मुझे बनाना हो तो एक्रीलिक प्लस ऑयल मिक्स करके मैं यूज करता हूँ फेसेस ह्यूमन एनाटॉमी को बनाने के लिए।
0: जी, रंगों के बारे में कहते हैं अमन की हर रंग की कोई कहानी होती है। जैसे मान लिया कि गुलाबी रंग, तो गुलाबी रंग आजकल सीधा सीधा लड़कियों से जोड़ा जाता है कि पिंक कलर लड़कियों को पसंद होता है, उसी तरह से नीले रंग को लड़कों के साथ जोड़ा जाता है, एक तरह से एक मेल फीमेल का वर्जन बना दिया है। हर रंग की कोई ना कोई कहानी होती है। आपकी जिंदगी में ऐसे वो कौन से रंग हैं जो आपको लगता है कि

0: ये मुझे मेरे जीवन में बहुत प्रभावित और उजाला मेरी जिंदगी में लेकर आया है, मैं इस चीज को मानता हूँ
1: जी। और अब आपसे जानना चाहेंगे अमन की, आजकल के जो कलाकार हैं या यूं कहें कि उभरते हुए बच्चे हैं,
0: जी।
1: वो भी पेंटिंग की ओर हैं, उनको आप किस तरह से मार्गदर्शन करना चाहेंगे? कि अगर अक्सर ऐसा होता है कि हम कोई काम पकड़ते हैं, फिर लगता है कि जैसे निराशा हाथ लगी तो छोड़ देते हैं, तो आपकी जर्नी से भी प्रभावित हो सकते हैं, और आप किस तरह से उनका मार्गदर्शन करेंगे?
0: बहुत बेहतर सवाल है। मैं आने वाली जनरेशन जो आज हैं उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि ये सच है, आर्ट लाइफ, आर्टिस्ट की लाइफ इज वेरी वेरी डिफिकल्ट
1: जी
0: एंड वेरी हैव द गट्स, वेरी फ्यू हैव द गट्स टू फुलफिल और अचीव इट।
1: जी
0: सबसे बड़ी बात इसमें ये होती है, अगर आप किसी काम को शुरू करते हो तो खत्म करके छोड़ो।
1: जी
0: मैं ये समझता हूं कि जैसे मैंने शुरुआती दौर पे अपना परिचय देते वक्त कहा था कि मैंने शिमला में एक एग्जीबिशन लगाई और मुझे सिर्फ निराशा हाथ मिली,
1: जी
0: ये बहुत जाहिर सी बात है कि इसके बाद कोई भी नया कलाकार मायूस हो जाए और
1: जी
0: काम करना छोड़ दे और किसी और
1: फील्ड में
0: फील्ड
1: चला
0: में
1: जाए।
0: काम करना शुरू कर दे, और
1: जी
0: ये बहुत होता है। तो मैं बताना चाहूंगा कि अपने जीवन के एटलीस्ट 10 साल पेंटिंग्स को दो, क्योंकि 1 साल, 2 साल, 3 साल आप दोगे कुछ नहीं होगा। नए स्टूडेंट्स, जो नए कलाकार ये सोचते हैं कि आज हमने ये पेंटिंग बना ली, फेसबुक पे इसकी फोटो डाल देते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं और ये अपने
1: जी
0: आप सेल हो जाएगी। ऐसा नहीं होने वाला और ऐसा कहीं नहीं होता। हर पेंटिंग को सेल करने के पीछे एक कहानी होती है और एक तरीका होता है, जो मैंने मेरे मेरे साथ जो काम किया मैं बता चुका था।
1: जी
0: तो कोशिश करते रहें और अपनी शुरुआती दौर पे कोई और फाइनेंशियली सोर्स भी करना जरूरी है, मैं ये समझता हूँ।
1: जी
0: सिर्फ कला के ऊपर निर्भर रह पाना एक बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। जब आप 8-10 साल मार्केट में काम कर लेते हैं,
1: जी
0: जो पेंटिंग्स आपने दी हैं ऑलरेडी, वही आपको आगे काम देने शुरू कर देते हैं, जैसे कि आज मेरे केस में है।
1: जी
0: जो जो पेंटिंग्स मेरी बनाई हुई जहां जहां पे हैं, वहीं से ही मुझे अपने आप
1: काम मिल रहा
0: काम
1: है।
0: मिल रहा है और मैं उसमें संतुष्ट हूं। आज के टाइम पे
1: जी
0: काम अच्छा है बुरा है मेरे लिए काम है, जैसा
1: जी
0: भी है मैं करता हूं उस चीज को। तो ये 10 साल का समय जो भी नया स्टूडेंट आर्टिस्ट बनना चाहता है ये कवर कर लेगा, तो ही कैन गो एंड बिकम आर्टिस्ट इन फ्यूचर फॉर
1: जी
0: श्योर।
1: अमन, अब बातचीत को हम थोड़ा सा विराम देंगे, एक और आपकी पसंद का गीत सुनेंगे और सुनवाएंगे अपने श्रोताओं को।
0: मूवी नेम आज की टू,
1: जी
0: तू ही ये मुझको बता दे।
1: श्रोताओं, एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक और बने रहिए यूं ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में।

0: श्रोताओं, इस प्यारे से गीत के बाद फिर से वापस आते हैं और अमन जो कि एक पेंटिंग आर्टिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत की उनके जीवन के बारे में हमने। और अमन से अब अंतिम सवाल इस बातचीत के दौरान ये करेंगे कि अब तक का जो आपका सफर था वो आपने हमारे साथ श्रोताओं के साथ दर्शकों के साथ साझा किया, और इस पेंटिंग की ही आपकी जर्नी में आगे क्या आपने सोचा है कि क्या क्या करना है, वो कौन कौन से पड़ाव है जो आपने जीतने हैं अभी?
1: जी, आज मैं 34 वर्ष का हूँ
0: जी,
1: और अभी तक मैं अपने आप को समझता हूँ कि मैं हाईली प्रोफेशनल कैटेगरी में काम करता हूँ। और इसके बाद जो पड़ाव है वो मास्टर क्लास है
0: जी।
1: मास्टर क्लास कैटेगरी में जाने के लिए मुझे लगता है मुझे कहीं ना कहीं 5 से 10 साल और अपनी वर्क करना होगा, अपनी आर्ट को निखारना होगा, और तब जाके मैं उस टियर में काम कर सकता हूँ। अभी हिमाचल में बहुत सारी कहानियां हैं जिनके ऊपर पेंटिंग्स नहीं हो चुकी। मेरी कोशिश है उन कहानियों को दोबारा से जीवित करने की, जिसमें से एक कहानी है जो मेरे दिमाग में और दिलों में बहुत प्रभावित करती है, जो कि 1905 में आया होगा
0: भूकंप।
1: उसकी बीती बयान आज तक मैंने देखी नहीं, और मैं चाहता हूँ कि पेंटिंग के थ्रू उन कहानियों को दोबारा से सामने लाया जाए
0: जी।
1: तो इनके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ, अपने हिमाचल के कल्चर पे काम करना चाहता हूँ, और कोशिश यही है कि अपने हिमाचल को एक फिर से एक नई पहचान कला के रूप में दिलाई जाए
0: जी।
1: यही मेरा आने वाले समय में मेरा लक्ष्य है और यही मैं हासिल करना चाहता हूँ
0: जी। हम आपको यही आपके लिए यही दुआ करेंगे अमन कि आपका ये सपना जरूर पूरा हो, और आप अपने रंगों से अपने तुलिका से जो भी कल्पना करें या जो भी बनाना चाहें वो बहुत ही सुंदर, आकर्षक और मनमोहक बनाएं, यही हमारी आपके लिए दुआ है। आप हमारे साथ समय निकाल करके स्टूडियो में बातचीत के लिए आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
0: थैंक यू।
1: शुक्रिया।

0: सूचना केंद्र के बीच नियमित संवाद, तटरक्षक बलों के बीच सहयोग तथा खोज बचाव, आपदा राहत और भारतीय सेना की ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभियान हो सकते हैं।
1: आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक

0: और समुद्री बुनियादी ढांचे की सुरक्षा के लिए संयुक्त अभ्यास शामिल हो सकते हैं।
1: श्री सिंह ने आसियान भारत थिंक टैंक फोरम के लिए व्यावहारिक पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने समुद्री सुरक्षा, आपदा मोचन, साइबर खतरों और उभरती प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित संयुक्त भारत आसियान अनुसंधान एजेंडा विकसित करने का प्रस्ताव रखा। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि लागत संबंधी पहलुओं के साथ साथ वैश्विक सेमीकंडक्टर मूल्य श्रृंखला में विश्वास और साइबर सुरक्षा का महत्व लगातार बढ़ता जा रहा है। आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री वैष्णव ने कहा कि भारत का लक्ष्य सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और तैयार उत्पादों के परीक्षण में विश्वसनीय भागीदार के रूप में अपनी स्थिति मजबूत करना है। श्री वैष्णव ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर रहा है। भारत से नारियल रेशा और इससे बने उत्पादों के निर्यात में 305% की वृद्धि दर्ज की गई है। इनका निर्यात वर्ष 2014-15 के 1,630 करोड़ रुपए से बढ़कर पिछले वित्त वर्ष में 6,614 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। दिल्ली की एक विशेष अदालत ने आज सीजेपी नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका को 5 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। वहीं अजिंक्य शिंदे को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कल राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे सीजेपी नेताओं दास, रांका और अन्य लोगों को हिरासत में लिया था। उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भारतीय सेना की असम रेजिमेंट के जवानों ने वेल्स में आयोजित कैम्ब्रियन गश्ती 2026 अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस चुनौतीपूर्ण सैन्य गश्ती अभ्यास में भारतीय टीम ने 100 से अधिक टीमों के साथ मुकाबला किया। कनाडा और भारत ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते के लिए वार्ता तेज कर दी है। वार्ता का लक्ष्य 2026 के अंत तक समझौते को अंतिम रूप देना है। 5 से 9 अक्टूबर तक ओटावा में 5वें दौर की वार्ता के बाद ये बातचीत आगे बढ़ी है। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने इस सप्ताह नई दिल्ली में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात की। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के अनुसार दोनों पक्षों ने वार्ता में हुई प्रगति की समीक्षा की और प्रस्तावित समझौते को आगे बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। 12 से 17 अक्टूबर तक चलने वाले इस व्यापार मिशन में लगभग 300 प्रतिनिधि मुंबई और बेंगलुरु का दौरा कर रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटका, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटका, कोंकण और गोवा में आज मौसम में गर्मी तथा उमस रह सकती है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज मिला जुला रुख है। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 36 अंक बढ़कर 73,070 पर और निफ्टी 6 अंक की गिरावट के साथ 22,716 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुज हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा शस्त्रधारिणी हिरण्यवर्णा केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशाएं इन्हीं से आलोक

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला, सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
3: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
4: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी।
5: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
6: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
7: क्यों
6: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
8: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
9: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
10: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
11: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
12: कोई मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
13: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
14: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
15: मोहित मेरा इस्तीफा।
16: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
15: सॉरी यार,
16: काम कीजिए आप लोग।
14: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
17: मम्मा एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
18: अरे बेटा,
17: अरे ललक, तुझे इतना काम नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

दोस्तों मैं हूं आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका, हाजिर हो गई हूं आप सभी के लिए कार्यक्रम लेकर पंजाबी गीतों का ये प्यारा सा सफर। बिल्कुल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से सफर में। तो आइए बढ़ते हैं इस सफर में आगे और आप सभी को लेकर चलते हैं एक खूबसूरत से पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक के सफर में।

दोस्तों आप सभी कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं पंजाबी गीतों का। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और कार्यक्रम में सुनाते हैं आप सभी को ये प्यारा सा पंजाबी गीत।

291.2 MHz पर ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन कार्यशाला और आप सभी पंजाबी गीतों का कार्यक्रम एंजॉय कर रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त रुचिका के साथ। तो आइए श्रोताओं बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों, इस खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम पंजाबी गीतों में। तो आइए फिर से लेकर चलते हैं आपको एक और प्यारे से गीत की तरफ। एंजॉय कीजिए ये खूबसूरत सा पंजाबी गीत।

दोस्तों आप सभी अपने मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ जुड़े हुए हैं 91.2 MHz पर। और आज का ये कार्यक्रम यानी कि पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी रेडियो दोस्त रुचिका के साथ।

दोस्तों पंजाबी गीतों का ये कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला से। बिल्कुल आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला खूबसूरत सा पंजाबी म्यूजिकल ट्रैक।

दोस्तों पंजाबी गीतों का कार्यक्रम आप सभी एंजॉय कर रहे हैं अपनी आशीर्वाद रुचिका के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये अगला पंजाबी गीत।

दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशाएं इन्हीं से आलोकित।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: कूर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: गीला, हरा है गीला, सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिंस, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार? सॉरी यार, काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: अरे तुझे इतना काम नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भैरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

कानूनी दशमलव 2 MHz पर ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला गणेश शशि हाजिर हो कार्यक्रम लेकर माटी दी महक तशो तो माटी दी महक कार्यक्रम दे सफर च तुहां सारे दा ही स्वागत है। इसी स्वागत कन्ने तुहां सारे जुड़ चुके होने न कन्ने अजकना जिहड़ा दिन है से तुहां वास्ते बेहतर खास होना है क्योंकि 14 अक्टूबर 2026 दी अहां गल करिए ता हर दिन अहां वास्ते खास होंदा तो अहां किस तरीके ने अपने दिना जो खास बनांदे न या अपने दिने जो इंजॉय करदे न। वैसे भी नवरात्रियां दा जिहड़ा दौर ऐसा चलिया है कन्नै तुहां बड़े ही धूमधाम ने जिहड़ा नवरात्रे दा पर्व है सभी इंजॉय करा दे होने न कन्नै। इसी कन्नै अज चौथा जिहड़ा नवरात्र है माँ कुष्मांडा माता जी दा जिहड़ा नवरात्र है से अस तुहां सैलीब्रेट करा दे होने न कन्नै। इसी कन्नै तुहां जो ढेर सारी शुभकामनाएं होन क्योंकि जिंदगी दी शुरुआत अगर अहां सकारात्मक सोच कन्नै करदे न तां अहां दा जिहड़ा पूरा दिन सकारात्मक सोच कन्नै निकलदा है। ते इसी कन्नै अहां भी अपने कार्यक्रम दी जिहड़ा शुरुआत है से एक सकारात्मक गीत कन्नै करनी है क्योंकि गीत संगीत जिहड़ा है से अहां दी जिंदगी च बड़ी अहम भूमिका अदा करदे न। यही अहां जो कुतै ना कुतै अपनी जिंदगी दा जिहड़ा सफर है उस जो अहां किस तरीके ने इंजॉय करी सकदे इस पर निर्भर जिहड़ा है से जरूर करदा है। तो इंजॉय तुहां भी करा इस गीत जो कन्नै इस कार्यक्रम दे सफर च अहां कन्नै जुड़ी सकदे कन्नै जिहड़ा पहले श्रोता ने से अहां कन्नै जुड़ चुके न करदे तिना कन्नै गलबात पर श्रोता जिहड़ा ने से जरूर डिसकनैक्टिड होई हो तां श्रोता भी कोशिश करदे रहा कन्नै अहां दी जिहड़ा कोशिश है सभी तुहां तक रहिंदी है कि तुहांदियां जिहड़ा फरमाइशां ने सभी तुहां तक पहुँच जानियां ने कन्नै जिहड़ा गलबात है सभी

90.2 MHz पर ये तुहा सारिया दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। इसी कन्ने तुहा सारी गीत इंजॉय करा देने शुरुआत अहां इस गीत कन्ने कीती है कार्यक्रम दी, कन्ने तुहा सारिया भी इंजॉय कीते, कन्ने अहां फिरी ते वापिस जड़े से अपनी गल

शो तो गलबात अगर हाँ कर देन मौसम दे ऊपर, क्योंकि मौसम दी ओर नज़र दौड़ाना भी जरूरी है, कने मौसम दे अनुसार चलना भी जरूरी है, पर मौसम दे अनुसार अपने जेड़ा काम मन सभी करना हाँ वास्ते जरूरी है न। तो 14 अक्टूबर 2026 दी अहाँ गल करिए तो धर्मशाला का जेड़ा तापमान है तेरे ऊपर थोड़ी देर नज़र जेड़ा है से अहाँ दौड़ाते हैं। तो दिने की गल करिए तो दिने का जिहड़ा अधिकतम तापमान है से लगभग 21 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस तक रहने का जिहड़ा उम्मीद है से जताई हुआ है। अगर राती की गल करिए तो कुथी ना कुथी मौसम जिहड़ा है से राती दे समय करवट जिहड़ा है से जरूर बदल रहा है। 13 डिग्री सेल्सियस से 14 डिग्री सेल्सियस तक जिहड़ा है से मौसम जा सकता है या जिहड़ा ठंड जड़े से अहां जो महसूस हो सकती है। तो शो तो इसी कन्ने आज कना जड़ा दिन है से कयो खास है, क्योंकि हर दिन दी अपनी खासियत होंदी, कने हर दिन अहां वास्ते खास होंदा। तो आज कना जड़ा दिन है से खास कयो है 14 अक्टूबर दी अहां गल करिए तो विश्व मानक दिवस जड़ा से आज अहां बना देन, कने इसी कन्ने दिने दी जड़ा शुरुआत है एक नए विचार करने एक नई सोच करने अहाँ कर देन तो कुथी ना कुथी अहाँ अपने जीवन जो सफल जड़े से बनाई पाते न। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस जड़े से भी आज अहाँ बना देन, कने अश्विनी जी तो हाँ जो भी शशि दा प्यार भरा नमस्ते है, कने प्यार भरा स्वागत है, क्योंकि फेसबुक दे माध्यम ने तो हाँ जो दिखा दे इस वास्ते भी तहे दिल ते तो हाँ दा धन्यवाद, कने तो हाँ सारे भी इस कार्यक्रम च अहाँ कने जुड़ सकते, कने अहाँ कने गलबात जड़े से जरूर करी सकते। गलबात करने वास्ते जड़ा नंबर है से तुह तक पहुँचाई दे न, क्योंकि नंबर तुह तक पुजेगा ताई तो तुह इस नंबर पर कॉल करी सकते या टेक्स्ट मैसेज करी सकते या व्हाट्सएप मैसेज करी सकते। नंबर है 701-811-7091। नंबर तुह तक पहुँचाई तो है, कने इसी कने चरण दास जी भी अहाँ कने फेसबुक लाइव कने जुड़ी हो न, तिना जो भी शुभ नवरात्रि आज तुह जड़े से नवरात्रि का चौथा पर्व जड़े से आज बना देन। तो इसी कन्ने बड़े ही धूमधाम ने जड़ा है पर्व वन से अहाँ जो एक ही दुए ने जोड़ी कर रख देन, क्योंकि ये जड़ा त्यौहार हैं से अहाँ जो हमेशा एक ही दुए कन्ने जोड़ी कर रख देन, कने अहाँ समय जड़े से अपने वास्ते निकाली पाते हैं। तो तुहां भी थोड़ा जिहा समय जड़े से इस कार्यक्रम वास्ते निकाला, क्योंकि इस कार्यक्रम का जड़ा समय है से तुह तक रहा है 2 से 3 बजे तक। तो अहाँ भी तुह तक जड़ा गलबात है से पहुँचाईती हो है, कने इसी कने अहाँ थोड़ा जहाँ अगे बढ़ते न, कने तुह जो अगली फरमाइश की ओर लेकर चलते न। अगली फरमाइश अहाँ तक पहुँची हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना का नाम है सुनील कुमार जी, कने सरैने वाले ने कोठिया जलोड़ते, कने तिना गाना सुनना है रूल कुल, कने जो गाया वे करनैल राणा जी ने, तो बड़ा ही प्यारा ये गीत है, कने सच्ची जड़ा घटना है से इस गाने च दिखने जो मिलती है या झलकती है या घटना ही सच्ची है।

0: बात। हेलो
1: सुषमा मैडम जी, नमस्कार
0: जी। नमस्ते जी, स्वागत है।
1: ठीक ठाक मैडम जी?
0: जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक ठाक।
1: अच्छा, तो मुबारक नवरात्र है मैडम जी।
0: जी तो हाँ, जो भी बढ़िया सारी मुबारक हो
1: जी। हाँ
0: जी, तो हाँ अपना जेड़ा परिचय है से जरूर दे।
1: मैं मैडम राकेश, पुराने श्रोता नरवाने थे
0: जी। अच्छा, पुराने श्रोता
1: मैडम जी, तो हाँ मैं पूछना है ना, दो तीन दिन पहले थोड़ा स्पीरियड बंद क्यों है चैनल
0: जी? अच्छा, रेडियो जेड़ा से बंद था।
1: हाँ जी मैडम जी, मैं सुंदरकांड सुनता ना सवेरे 4:30
0: जी जी।
1: तो मैं बोले मैडम पूछना फिर के तो टावर की प्रॉब्लम होनी ना नड्डी
0: जी, दो तीन वरी ता मौसम दिया वजह ने भी।
1: हाँ जी हाँ जी, मैं बोले मैडम मैं सुनता मैं फिर मैं मोबाइल लगाया तान चल रहा है, रेडियो लगाया तान चल रहा है, मैंने मैडम कुछ कभी था क्या प्रॉब्लम थी कुछ
0: जी? मौसम
1: मिस हो ना प्रॉब्लम
0: जी जी, मौसम दी वजह ने।
1: हाँ जी हाँ जी मैडम जी, हाँ मैं ताए दिखे ना, मैं उस नेट पर छी आता था रेडियो लगाया था रेडियो चुनी
0: जी, श्रोता टेंशन हाँ, हो जाती है कि
1: टाइम मेरा मिस हो गया मैडम। मैं बड़ा सुनता मैडम, 4:30 ला देना 4 बजे ना
0: जी,
1: क्या मजा मैडम जी, 6-7 बजे तक
0: जी। धन्यवाद जी, आप इतना
1: अपना कन्ना लगे रहते ना मैडम जी ना
0: जी जी,
1: कन्ना अपनी फैमिली सारे हों सारे मैडम जी रेडियो खरीद आई थी
0: जी। बड़ी अच्छी हाल है,
1: दो त्रीए तो मैं दो त्रा ले इतने मेरे ले अगर चला रेडियो। हाँ पुराना मैडम इतना पुराना रेडियो ना, ख्याल करना प्रोग्राम दा मजा आंदा मैडम जी
0: जी जी। ता नगेश जी, आज यहां जेड़ा कार्यक्रम च गल बात करा दे ना, आज कने दिन है जेड़ा खास दिवस मना दे ने, से बना दे ने विश्व मानक दिवस, कने सी कने अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस ना जी।
1: हां मैडम जी, तो बिल्कुल बड़ा अच्छा टॉपिक लिया, बहुत अच्छा मैडम जी
0: जी जी।
1: हाँ
0: कचरा तो हाँ दिख देने अपने आस पास या अपने घरे दी साफ सफाई तो हर कोई करदा, पर हाँ अपने
1: जी मैडम जी
0: दी या सोसाइटी दी जेड़ा साफ सफाई है से कितना की कर दे।
1: हाँ मैडम जी, एक तो देखा ना आधा रोड है ना, मेन रोड है ना ऊपर मैडम जी, तो हाँ तार लगवाई थी सब चला, लोग इतने मतलब लोग रहते ना इतो, इन्हें जो किराएदार है ना मैडम जी, कोशिश होना चाहिए थोड़ी जी, तो लफाफे समझाने रही ना घूमना, कंट्रोल सड़क च सट्टी आती मैडम जी, बच्चे के पैड कोई इतना गंद मैडम जी, क्या गलाई सकते तो उन्हें, मैं तो बोले सीएमओ साहब जो करनी कंप्लेन मैडम जी, फिर कुत्ते चुके लोग मैडम घर से सट्टा दे सट्टा दे, इतना गंद पे ने मैडम जी ने लोगों पूछा मत, प्रधान जो की कंप्लेन है, प्रधान बोले सीसी कैमरे लाने मैडम जी
0: जी चलो।
1: हाँ मैडम जी, गलती है ना सारे मकान मालक की है, किराए ने मतलब ना कोई टेंशन नहीं, कहीं लोकड़िया आदि समझाई 7 बजे 8 बजे भी, तो बाकी च मैडम मिली ना हथा था छड़ने नहीं, पर हथ नहीं लगते ना
0: जी जी चलो।
1: हाँ मैडम गल गलत है ना, देखा लाचा इतना गंद सटना ना
0: जी,
1: पानी प्रदूषण होता मैडम जी, पानी दे छाल पानी ना
0: जी जी,
1: पानी सड़ दे को गंद को दुनिया भरे मैडम, क्या गलाई सकते लोग देखा ला
0: जी जी।
1: हाँ जी मैडम
0: जी,
1: इस रुकावट होना चाहिए मैडम जी
0: जी जी, अगर मैं सुना दूंगा तो जरूर तीना तक
1: जरूर के मैडम जी, मैं तो चोट गाड़ी रोकनी है सच्ची मैडम जी, इतना तो होना ना दुनिया चली गई ना, वो टेर है टेर मार सड़ दिया दे
0: जी जी,
1: ज्यादा बच्चे मैं तो बंद होना चाहिए पेपर पुपर क्या होंगे मैडम जी
0: जी जी,
1: दुनिया लोग चले मैडम जी इतना गंद ना
0: जी जी। आज तो हाँ कुंडिया गीत सुनना पसंद करके,
1: आज मैडम जी तो अपनी चॉइस है सुनाई दे कोई बेंट माता दी, बिमला राणा दी बेंट नहीं मैडम जी तो हाल
0: जी, कुंडे
1: बिमला राणा दी
0: जी गाने दे बोल के आंजी,
1: ए बिमला राणा दा मैडम जी अड़े ओ ए बिमला राणा बड़ा प्यारा भजन है, बिमला राणा तो बेचारे स्वर्गवास हुई हो ना पब्लिक रिलेशन च होंगे
0: जी जरूर जी, तो होंगी
1: बिमला राणा होंगे ना मैडम जी ना, कोई नहीं कोशिश करने मैडम जी, कोई नहीं जब असि नहीं तो थोड़ी मनपसंद सुन लैनी पेंट
0: जी जी जरूर।
1: हाँ मैडम जी बड़ा बड़ा धन्यवाद थोड़ा ना, चलो इससे मानते लोगों का थोड़ा सब कहूंगा मैडम जी
0: जी जी, धन्यवाद
1: धन्यवाद मैडम जी, थोड़ा धन्यवाद
0: जी। ये तो हाँ सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला, तशो तो इसी गूंज कने हाँ अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते हैं, कने तो हाँ जो लेकर चलते हैं अगली फरमाइश दी ओर, कने जितने भी श्रोता फेसबुक लाइव कने जुड़े हैं तिना जो भी शशि दा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है, कने अपना जेड़ा रेडियो गुंजन धर्मशाला कने प्यार है तिशो इन्ने बनाई के रखा, कने हाँ तो जो लेकर चलते हैं इस प्यारी दे फरमाइश दी ओर।

0: ये तुहा सारें दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तशो तो इसी कन्ने तुहा सारे ही ये भजन इंजॉय कीता कन्ने इस भजन दी फरमाइश अहां तक पहुंची होवे व्हाट्सएप दे माध्यम ने तिना दा नावे चरण दास जी कन्ने से रहने वाले ने खनियारा ते फिर ते वापिस अहां फेसबुक लाइव च जेड़ा ने से आई हो ना कन्ने जितने भी लिसनर हैं से जरूर फेसबुक लाइव कन्ने भी जुड़ी सकते कन्ने अपने जेड़ा कमेंट दे माध्यम ने जेड़ा ऐसे अपनी फरमाइशा भी जरूर अहां तक पहुंचाई सकते कन्ने कुछ तोहंदे जेड़ा विचार हैं सभी तोहां अहां तक पहुंचाई सकते कि तोहां जो ये कार्यक्रम कदे लगदा कन्ने तोहां इस कार्यक्रम जो जेड़ा ऐसे रोजाना सुन दे कन्ने क्योंकि अपना पहाड़ी कार्यक्रम है अपना जेड़ा कल्चर है इसी कन्ने अहां जो कुछ ना कुछ ये जेड़ा कार्यक्रम में से जोड़ी करी रखते हैं। तो श्रोताओं गलबात करिए नज़र यानी कि थोड़ी देर नज़र अहाँ अगर न्यूज़ की ओर दौड़ाते हैं तो तीसरे नवरात्रे जो यानी कि पिछले कल जड़े से 87,000 भक्तों ने जड़े से माँ का जड़ा आशीर्वाद है से जरूर लिया है। चिंतपूर्णी मंदिर की अहाँ गल करिए बड़ा ही प्यारा जड़ा मंदिर है से है कने तुहां सारे भी जरूर जितने भी अहां दे शक्ति पीठ हैं तिन्हां दे जेड़ा दर्शन हैं से जरूर कीते होने ने कने तुहां जरूर घूमना भी गए होने ने क्योंकि श्रद्धा भाव अगर अहां रखते न ताई अहां अपने जीवन जो सफलता दी ओर ले करी जाते न कने इसी कने चमुंडा मंदिर की गल करिए सभी बेहतर खास जेड़ा शक्ति पीठ मंदिर है कने तुहां भी जरूर माता रानी का जेड़ा दर्शन है से जरूर किया होना है कने इसी कने जेड़ा नैना देवी है तिना का भी जेड़ा तुहां दर्शन है से जरूर किए होने क्योंकि श्रद्धा भाव अगर अहां अपने अंदर रखते न ताई अहां अपने जेड़ा जीवन का सफल है उस जो सफल बनाई पाते न ज्वालामुखी की गल करिए या कांगड़ा मंदिर की गल करिए रौनक ही रौनक जेड़ा न से तो जो हर जगह दिखने जो मिली आनिया न तो इसी कने अजकना जेड़ा नवरात्र है नवरात्रि का जेड़ा पर्व है से चलिए कने अज अहाँ जेड़ा नवरात्रि का पर्व जेड़ा बड़े ही धूमधाम ने बना देन चौथा जेड़ा नवरात्रि है से अज अहाँ बना देन माँ कुशमांडा माता जी का जेड़ा नवरात्र है से अज अहाँ सैलीब्रेट करा देन तो नवरात्रि का उत्सव जेड़ा है से अगर अहाँ पूरी विधि विधान कन्ने पूजा अर्चना करते न तो अहाँ अपने हर जीवन जो सफल करी पाते न कने पहले दिन जेड़े से अहाँ माँ कुशमांडा का जेड़ा आशीर्वाद है से जरूर पाते न क्योंकि जल भी अहाँ कोई पूजा पाठ करते न अगर अहाँ पूरी श्रद्धा भाव ने इस पूजा पाठ करा दे तो जेड़ा नकारात्मक ऊर्जा है से भी दूर भागी आती है कने सकारात्मक ऊर्जाएँ जेड़ा न से अहाँ तक पहुँच जाएँ न पर से अहाँ पर निर्भर करता है कि अहाँ किस तरीके ने अपने जेड़ा श्रद्धा भाव है या अपने मने जो शांत कर देना कने की जगह जेड़े से रख देना क्योंकि मन जेड़े से यहाँ दा बड़ा ही चंचल है से कुछ भी घूमना फिरना जेड़े से चली आंदा है तो ज़रूर अपना जेड़ा मन है से तो हाँ इक्की जगह रखना है कने पूरी श्रद्धा भाव करना है कने श्रोता भी जरूर अहाँ कने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कने गल बात। हेलो
1: हेलो
0: हेलो नमस्ते जी।
1: हाँ जी नमस्ते जी शशि जी।
0: जी स्वागत है जी तुहां दा रेडियो गुंजन धर्मशाला च ठीक ठाक है ना।
1: ठीक ठाक जी बढ़िया तुसा सुना।
0: जी यहां तो बिल्कुल ठीक ठाक है जी।
1: हां भी ठीक ठाक बढ़िया जी।
0: पहले तो तुहां जी नवरात्रि दियां ढेर सारी शुभकामनाएं हों जी।
1: हाँ जी तो अंजो भी बहुत बहुत जी मुबारक।
0: जी तो आवाज तो मुझे जानी पहचानी लगा रही है।
1: अच्छा पहचानी नहीं पहचानी नहीं बड़े दिनों बाद याद आई बोलना।
0: जी जी कोशिश कर दे ना रीना जी।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी पहचानी नहीं जी ठीक पहचाने।
0: जी जी ना जी यहाँ भी तो जो आवाज दे माध्यम ने पहचानी लैन दे ना जी।
1: हाँ जी हाँ भी तो हम जाएंगे पहचान लैन दे मैं तो आड़ा की चा भी दिख फोन ने चा भी दिख दी मैं तो आड़ा ही ये प्रोग्राम रेडियो गुंजो बहुत अच्छा लगता जी बहुत अच्छा लगता जी, बहुत ही अच्छा।
0: जी,
1: हाँ जी हाँ जी,
0: कई बार होता ना कि हाँ ऑडियो सुन देना पर
1: हाँ
0: चलो हाँ फेसबुक लाइव च दिख देना, ठीक है लाइव तो चल रहा पर चलो फेसबुक लाइव हाँ खुद एर दें तो कुछ थोड़ा देर लगता है कि नहीं।
1: हाँ जी हाँ जी, बड़ा मजा आता जी है ना।
0: जी धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। तरीना जी तो वहाँ भी रखे व्रत कि नहीं रखे तो वहाँ?
1: मैं नहीं रखी जी व्रत नहीं।
0: अच्छा अच्छा
1: नहीं रखी। हाँ जी हाँ जी।
0: मौसम क्या बोला था आज?
1: ठीक है बढ़िया, धूप लगी है बड़ी सोहनी
0: जी। अच्छा धूप लगी हो?
1: हाँ सवेरे कुछ ही था बदल बदल दिया पर हूँ ठीक है बढ़िया
0: जी। वैसे तो कल दसा दे ना, आज भी दसी हो बरखा, पर पता नहीं अब मौसम में तो कोई भरोसा नहीं होता ना।
1: हाँ जी हाँ जी, ये मिनट जी आया ना पता नहीं लगता, जर के बदल आए था बरखा शुरू हुए तो खनी आ रहा था ही, वैसे भी है ना
0: जी जी
1: पता नहीं लगता
0: खनियारे दे मौसम में तो वैसे भी पता नहीं लगता कि
1: कल। हाँ जी हाँ जी
0: जी जी
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तरीना जी आज कुंडे फरमाइश है, कुंडे गीत सुन
1: गोरा शिव ओम जपदी जपदी बीच कलाशा दे।
0: जी गोरा ओम शिव ओम जपदी,
1: गोरा शिव ओम जपदी जपदी बीच कैलाशा दे।
0: जी जी जरूर जी, तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचा दें जी। जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहंदा।
1: धन्यवाद जी तुहाड़ा भी बहुत बहुत।
0: जी जी तो श्रोताओं तुहां सारे इस वक्त कार्यक्रम इंजॉय करा देना अपनी रेडियो दो शशि कन्ने कन्ने। सुनील कुमार जी भी जरूर मैसेज कमेंट दे माध्यम ने मैसेज करा देना, तो जरूर तीना जो भी मेरा प्यार भरा स्वागत है, प्यार भरा नमस्ते है। जुड़ने वास्ते तुहंदा तहे दिल ते धन्यवाद है। तो इसी कन्ने अगले जेड़ा श्रोता न सभी जुड़ चुके हैं न कर दें तीना कन्ने गल बात। हेलो
2: हेलो नमस्ते जी।
0: नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है न?
2: ठीक ठाक जी। तो
0: जी यहाँ तो बिल्कुल ठीक ठाक है जी। तो हाँ कुछ दे रहने वाले ने कने तो हंदा ना क्या है जी?
2: सुकड़े दे रहने वाले का ना माया ना।
0: जी माया जी सुकड़े दे रहने वाले ना माया जी। आज कना जेड़ा दिन है से तो हंदा कदिया की चल लिया, क्या काम कार छेड़े तो हाँ?
2: हाँ तो काम कार दिन तो बढ़िया है
0: जी। अच्छा
2: दिन पड़ी हो
0: जी जी। अच्छा तू ऊपर जेड़े से लगी हो? जी तो माया जी जी
2: जी बोला
0: जी जी बोला जी। तो इसी कन्ने चौथे नवरात्रि दिया भी ढेर सारी शुभकामनाएं
2: जी। जी मुबारकां
0: जी
2: माता रानी ने जब सी
0: जी। धन्यवाद जी
2: जी।
0: तो जितने भी श्रोता है ना तीना पर भी माता का आशीर्वाद होना जरूरी है
2: ना जी। माता आशीर्वाद चाहिए
0: जी जी जी। तो माया जी आज तुम्हारा कुंडिया गीत सुनना पसंद करके?
2: आज गीत सुनना पसंद है हम बाबू नगरा निकाल जा बात फिर बताओ
0: जी। कुंडिया गाने दे बोल एक बारी फिर ते रिपीट करके।
2: मन करदा मैं माता घर मेरा छोटा माता बताओ
0: जी जी जरूर जी। घर मेरा निका जी है ना जी।
2: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: जी जी जरूर। तो हम जेड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुंचा दें जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुह दा
2: बड़ा जी
0: जी। तो श्रोतो अगले जेड़ा श्रोता है ना सभी यहाँ कन्ने जुड़ चुके हैं ना कर दें तिना कन्ने गलबात से कुथु ते बोला दे ना कन्ने तिना दा ना क्या है। हेलो
3: नमस्ते महाराज जी।
0: जी नमस्ते जी, स्वागत है जी तुहंदा रेडियो गुंजन धर्मशाला च, ठीक ठाक है ना?
3: बिल्कुल जी ठीक ठाक महाराज जी।
0: जी अपना परिचय जरूर दे दिया जी, कुथु दे रहने वाले ना जी तुहां?
3: मेरा नाम जी हरदेव है, कनाडा दा रहने वाला जी मैं।
0: जी हरदेव जी डाट दे रहने वाले ने ता डाट वाली साइड रौनक ही रौनक लगी है ना जी?
3: जी महाराज जी रौनक मालिक लाई रखदा जी।
0: जी जी जी जरूर जी, रौनक नो हन ता हाल समय कुते ना जी।
3: हां जी
0: एक गल भी है ना कि अगर ए त्योहार ना हो तो हल रौनक भी नहीं होनी है ना जी, क्योंकि
3: नहीं होनी है जी।
0: जी हर इंसान यही सोचता है कि मैं बड़ा ज्यादा बिजी है ना जी, तो टाइम समय निकाल देना हां एक दूसरे वास्ते ना जी कने
3: हां जी
0: अगर हां ये सोचते ने कि यहां वास्ते काम ही जरूरी है ता ज्यादातर अपना जेड़ा ध्यान ऐसे कम्मे साइड ही लगाई रख दे ना जी
3: दिखाई कन्ने ता है ता ध्यान लगाए रख दे कने उस परमात्मा ने रखा देवी देवते ने रखे ध्यान लगाना है
0: जी ता सही ता हां बिल्कुल भूली हो ना जी
3: हाँ जी बोलना नहीं चाहिए नी
0: जी जी जी तो जरूर तो हाँ श्रोता जो जरूर दसा कि थोड़ा दिया जेड़ा ध्यान है से कम्मे साइड भी लगाना है कने जेड़ा हाँ श्रद्धा भाव रख देना तीदी साइड भी रखना है ना जी
3: हाँ जी हाँ जी
0: जी क्योंकि मंदिर हाँ कोई भी मंदिर गाल करिए चाहे से गांव दे मंदिर है ना चाहे चुमंडा मंदिर है चाहे से कांगड़े का मंदिर है चाहे ज्वाला जी का मंदिर है ना जी हर जगह रौनक लगी है ना जी कितनी खुशिया दी गल है ना जी
3: देखा जी बड़ी खुशिया दी गल हुंदी जे कोई बाहरे दे इक नवा आदमी घरे च आई जांदा ते कितनी खुशी हुंदी है
0: जी जी ते
3: आहां दे देवी देवतां दे त्योहार हुंदे ते हमें बड़ी खुशी हुंदी जी
0: जी जी
3: बुजुर्ग चले गए
0: गीत सुनना पसंद करके जी
3: मैं जी गीत सुना करनैल राणे दा
0: जी करनैल राणे
3: जी निंद्रे पारे पारे चली जाया घड़ी भरी नाम जपना
0: जी निंद्रे पारे पारे चली जाया
3: जी महाराज
0: जी जरूर तुहंदी जेड़ा फरमाइश है से तुहां तक पहुंचान दे जुड़ने वास्ते धन्यवाद जी तुहंदा
3: धन्यवाद महाराज जी
0: जी तशो तो वहां भी ए फरमाइश तुहां तक पहुंचान दे ना तुहां भी इंतजार जेड़ा से जरूर कराते होने न कने श्रोता भी जरूर आहां जो कॉल पर कॉल करा दे अगले जेड़ा श्रोता न तिना कने भी कर दे ना गल बात
4: हेलो हेलो नमस्ते सती जी
0: नमस्ते जी स्वागत
4: है जी तो तुम बल रहे थे ना
0: जी जी तुम कुछ ते बोला दे जी
4: मैं तो दाढ़ी ते बोला था
0: जी तुम्हारा नाम क्या है जी
4: मेरा नाम है घनश्याम गुनेरिया
0: जी स्वागत है जी तुम्हारा रेडियो गुंजन धर्मशाला च
4: अच्छा जी तुम्हारे घर वैसे कुछ ना
0: जी तो हाँ जेड़ा पर्सनल डिटेल ऐसे इस टाइम हाँ तो हाँ तक नहीं पहुंचाई सकते क्योंकि ये लाइव कार्यक्रम चल रहा है ना जी
4: अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है
0: जी
4: मैं थोड़ा ना बड़ा अच्छा होता ना प्रोग्राम
0: जी तिस वास्ते
4: मजा आ जाता दिल खुश हो जाता
0: जी जी अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तो इसी कने अपने कार्यक्रम दे सफर जो अगे बढ़ाते न कने तुह जो लेकर चलते न अगली फरमाइश की ओर

तो श्रोताओं तो सारी इस भजन जो जरूर इंजॉय करा देना। नैण तेरे माँ नैणा देवी, चरण तेरे चिंतापूर्णी। तो श्रोताओं बड़ा ही प्यारा।

तो श्रोताओं तो सारे जरूर भजन इंजॉय की होना है कने बड़ा ही प्यारा भजन है कने जितने भी आहंदे जेड़ा शक्ति पीठ हैं तिना दा इस भजन च जरूर जिक्र जेड़ा ऐसे कित्या था कने नैना देवी की गल करिए जेड़ा नैना देवी दे जेड़ा नैन अन से जरूर आहां जो अपने जेड़ा दर्शन अन से करवांदे ने कने चिंतापुर्णी दी चिंतापुर्णी माता दी गल करिए तिना दे जेड़ा चरण अन सभी आहां जो दर्शन दिंदे ने कने जेड़ा कांगड़े दी माता है तिहा दी गल करिए तिहा दा जेड़ा थर्ड है से जरूर आहां जो दर्शन दिंदा है मतलब हर जितने भी आंदे शक्ति पीठ हैं सियाहां जो कुछ ना कुछ जेड़ा श्रद्धा भाव जेड़ा है सियाहां जो दिंदा है पर सियाहां पर निर्भर करता है कि यहाँ किस तरीके ने श्रद्धा भाव जेड़ा है से रखते हैं तो ज़रूर अहाँ तो रखा दे ना तो वहाँ भी ज़रूर रखा कने अगले गीत जो अगली फरमाइश जो तुहाँ तक पहुँचा दे ना कने ये फरमाइश अहाँ तक पहुँची थी विजय कुमार जी कने मनोज जी कने सरैने वाले नसली ते तो ज़रूर तिना तक कहाँ ये भजन पहुँचाया।

तुहां सारे दा अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहां सारे भजन इंजॉय कीता। ये भजन अहां पहुंचाया रीना जी तक सरैणी आले न खनियारा ते। इसी कन्ने अहां फिर ते अपने कार्यक्रम दे सफर जो अग्गे बढ़ांदे न कन्ने अगली जेड़ा फरमाइश है से अहां पहुंचा दे न हरदेव जी तक सरैणी आले न डाढ़ते। दर्शकों गाने दे बोल निंद्रे पारे पारे चली जाया घड़ी पर राम जप।

तो श्रोताओं जरूर तुह सारे जो ये भजन पसंद आए होना है, कन्या भी समय के अनुसार जड़े से दो बोल ही तुह तक पहुँचाई पाए न। इसी कन्ने अगली जड़ा फरमाइश है से तुह तक पहुँचाते न, ये फरमाइश अह तक पहुँची हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम ने। तिना का नाव है शमशेर सिंह जी, कने से रहने वाले ने दरगाटा से।

इसी कन्नै अगली फरमाइश दे दो बोल जेड़ा ने सभी तुह तक पहुँचाइंदे न। अगली जेड़ा फरमाइश है सभी यहाँ तक पहुँची हुआ है व्हाट्सएप के माध्यम ने, तिना दा नाम है काजल जी, तो जरूर तिना तक कहाँ एक की।

तुहा सारे अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला तुहा सारे कार्यक्रम एंजॉय करा दे थे अपनी रेडियो दोष रशी कन्ने। इसी कन्ने तुहा सारे जो पता है कि कार्यक्रम दा जेड़ा सफर है से तुहा तक रहंदा है 2 से 3 बजे तक। तो सफर जेड़ा है से अहां जोन बोला दा अनुमति ले लिया तो जरूर अहां अनुमति लैन देना कन्ने तुहा अपना जेड़ा ख्याल है से जरूर रखा कन्ने अपने दा ख्याल भी जरूर रखा। इसी कन्ने अपनी

दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती। दसों दिशाएं इन्हीं से आलोकित।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: कूर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: काला है नीला, हरा है गीला, सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
3: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
4: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
5: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
6: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
7: क्यों
6: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
8: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
9: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
10: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
11: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
12: तो मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
13: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
14: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
15: मोहित, मेरा इस्तीफा।
16: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
15: सॉरी यार,
16: काम कीजिए आप लोग।
14: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
17: मम्मा एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
18: अरे बेटा,
17: अरे तुझे इतना काम नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे है, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और हाजिर हो गई हूँ कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने लेकर। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम का सबसे पहला प्यारा सा गीत। आप यूं ही बने रहिए 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने इस समय श्रोता सुन रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी, और लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला प्यारा सा गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप बने हुए हैं रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

गीत सुहाने नए पुराने आप सुन रहे हैं 91.2 FM रेडियो गुंजन धर्मशाला से। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी। आइए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

श्रोताओ, इस समय आप हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

91.2 MHz पर आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ। मैं आपकी रेडियो दोस्त पिंकी और कार्यक्रम सुन रहे हैं आप गीत सुहाने नए पुराने। लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

आप हैं इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ 91.2 MHz पर कार्यक्रम सुन रहे हैं। गीत सुहाने नए पुराने, लीजिए सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत।

दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा शस्त्रधारिणी हिरण्यवर्णा केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशाएं इन्हीं से आलोकित।

0: मालूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: कूर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: है नीला, हरा है गीला, सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
3: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
4: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी।
5: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
6: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
7: क्यों
6: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
8: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
9: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
10: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
11: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
12: तो मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
13: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
14: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
15: मोहित, मेरा इस्तीफा।
16: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
15: सॉरी यार,
16: काम कीजिए आप लोग।
14: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
17: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
18: अरे बेटा,
17: अरे ललक, तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे है, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

नमस्कार श्रोतों, FM बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर आया हूँ। सचिन कपूर हाजिर बुजुर्गो तुंदे सभी रेडियो सेट में वेड़ी गुंजन धर्मशाला मंच बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी होने वाले रहे सभी श्रोतागण रहे। होप सो अच्छे बुने, बेहतरीन बुने, खुश बुने, तंदुरुस्त बुने और नहीं विनता श्रोतों चूर वजह से सब खुश के अंसो भूचे गंदन। इवन आओ भी किया सो कितनी भी मतलब कितनी भी टेंशन आता हूँ इच्छू लेकिन चूर वजह की ऐसा माइंड बड़ा फ्रेश हो चुकंदा, बड़ा खुश हो चुकंदा है। ना जाने कहो शायद अग लगाव अग प्रेम हा, और प्रेम था तुसु पता कि श्रोतों प्रेम की सौंदा बुंदा और सो कुछ भी नहीं हेरदा, सो सिर्फ और सिर्फ प्रेम करदा अपना बादा घाटा के सोना हेरदा, सिर्फ प्यार करता है। तो प्यार करना बड़ी अच्छी गल है श्रोताओं, अक्सर बनलूँ अमूमन बनलूँ कि जिंदगी में जिन्हें इंसान ने कि सो प्यार करी लियो ना सो इंसान बहुत बेहतरीन है, बहुत खुश है और हर किसी योगी करना चाहता, हर रिश्ते हैं मंच के श्रोताओं सो प्यार छलकना चिंदा है श्रोताओं, सो अपनापन की सो छलकना चिंदा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम सचिन कपूर आ नाचीज तुंदा अपना और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा लेकर बिल्कुल हाजिर हा श्रोताओं। इस समय रे गल करिए श्रोताओं तो 18-20 डिग्री सेल्सियस रे आसपास के सो मौसम बन रहा है। ह्यूमिडिटी रे गल करूँ जितियों नमी बनते हैं तो 55% के सो ह्यूमिडिटी हा श्रोताओं। ता ए हा धर्मशाला रा मौसम जो एह तुसु हो गया सो शेयर करो सांचा करो। तो कार्यक्रम मंच श्रोतों जी बिल्कुल नवरात्र चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं श्रोतों। ता अकमो के फिर तू सब भी जो नवरात्रे की नवरात्रे रे किया सो बड़ी बड़ी मुबारक है ना, और मोर दिल हमेशा खुश रहा ए दुआ के असव है सब भरपूर कर दें और रोज़ाना कर दें श्रोतों। चलिए था श्रोतों आगाज़ बुचिगाना श्रोतों कार्यक्रम रहे इस गीत सोगे और इतना बात अन्य जानकारी तुस होगी कि असो असो जरूर शेयर करनी है ना, अन्य जानकारी तो होगी असु के अनसो जरूर साझा करनी है श्रोतों। बहरहाल कार्यक्रम जो हगों लेकर ही चलते ता श्रोतों श्रोतों बिल्कुल तो है जुड़ी सकते हैं नंबर में दसो ने जितने भी नौ श्रोतों सो जरूर जुड़ी सकते हैं जी 7018879 पर नंबर आक मौके फिर शेयर करते हैं 7018879 पर। बल देना श्रोतों की मुस्कुराना भी ज़रूरी है ज़िंदगी में, कजो कि मुस्कुराए बिना कि श्रोतों सो जिंदगी में काम न चलता है और हमेशा हंसते रहना ज़रूरी है। दुख तकलीफ तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो चलते ही रहना है लेकिन मुस्कुराना ज़रूरी है, वो हमेशा ये बनता है श्रोतों। तो चलिए चलते कार्यक्रम जो और आगाज़ कर।

শত এফ এম ব্যান্ডে কে আনুতি সামলাবা দই মেগা হুটস পর বেড়ি গুঞ্জন হয় ধরমশালা তো হ্যাঁ টিউন কর র কার্যক্রম ইন্দি আপনি গপ্পা কেন সোতো হে সব হুণু কর দে হিন রেডিও গুঞ্জন মা প্যারি ভোটলি বাই পিয়ুষ রাজ হ্যালো সচিন ভাই ম্যাডি ম্যাডি নেগি হেরি ফরমাইশ হ্যাঁ লেকিন ফরমাইশ খড়ি হো নেগি সাহ তিন দো হ্যাঁ আপনা অ্যাড্রেস কে সো ভি জরুর দসি দিয়া কি अच्छा हाँ कड़ी थो हिन तो है मतलब क्या जगह रहना तते तक रहा है कार्यक्रम जो हगो बढ़ हिन शोधों और शोधों याद है तुसो अबे तो चलो तस प्रकार रहें दे के न सो बैठा बकरी ना रही न तस प्रकार रहें दे पाल के न सो ना रहे कजो के है सब थोड़ा मूव ऑन बुझ गए ऐसा नहीं कि सब भी बुझ गए कुछ एक कैन सो मूव ऑन बुझ गए है ना मतलब इंदा जो ये पुराना काम थू शोतों जो पारंपरिक रूप थो जे गद्दी मनो है भेड़ बकरी चार दे थी शोतों पाल दे थी है ना और मौसम रहे हिसाब थो मौसम रहे अभी तो मौसम भी तीन ना बुच्चू करता तस समय रे गल कुछ हो रहा शोतों का मौसम रहे हिसाब थो है गंदे थी है ना तुसु याद बुना प्रवास कर दे थी शोतों गर्मी में आके ऐसो बर्फ पिघलने पर के ऐसो है बनी इलाके किनारी चलींदे थी है और गर्मी में सॉरी ऊपर जाने बर्फ पेंदे थी तब बनी साइड चलींदे थी है यानी कि मैदानी इलाके भी साइड ऊना साइड इस किनारी और जाने एड़ी खरीद धुप लगी पेंदे थे ता यह प्रू वाली साइड किया सो चले गंदे थी ऐसो तो है ना ऊँचे पहाड़ वाली किनारी चले गंदे थी है जी हाँ भरमौर बुझगो लाहौल स्पीति बुझगो इस किनारी चले गंदे थी ऐसो तो और सर्दी में जहाँ भारी बर्फ पेंदे थी ऐसो तो है ना यह कांगड़ा और इस किनारी निचले इलाके किनारी की ऐसो चली गंदे थी ऐसो तो हालांकि असूले तो है पक्के मकान भी नहीं बुंदे थी शो तो है ना कई गद्दी परिवार इन ऐसे बुंदे थे जिन्हें पक्के मकान भी नहीं बुंदे थे खेती भी जमीन भी नहीं बुंदी थी दस समय मतलब लेकिन अब है कि ऐसो बहुत चीज़ा में बदलाव हा इन बहुत सारे जो इंदी इन मणुन जो सो कुछ बहुत सारे मणु जो है MLA भी हिन MP भी हिन है ना DC ऑफिस में भी हिन हर एक ऑफिस में इवन क्या बोलना चाहो कि हर एक ऑफिस में किया सो मुड़े गाना है कजो कि शिक्षा रह किया सो सभी यह है शिक्षा किया सो प्राप्त करे या और नौकरी थो जुड़े हिन है ना जुड़ाव रखो था हगों हगों अब तक चलो ये बड़ी पुरानी गल्ला पूछगी छो तो लेकिन फिर भी जहाँ भी मुंजो ये चली जाना पढ़ने होता हूँ जरूर पढ़ता और अग मौके आऊँ भी रियलाइज करदा हा शो तो है ना कि इन दी जो रूट्स हिन सो इस प्रकार सो कि फैल रही हिन है ना यह सब मनुके ने सो परम शिव भक्त हिन जिनके है सब जानते हिन शो तो और त्यारी भोलेनाथ री लोक गाथा और बहमा भी शिव भगवान शिव और माता पार्वती रे विवाह रा प्रसंग गूंजता शो तो इन दे बह अंदर भी है ना जाना है लाड़ा की सो बयाना चलता है तो यह सब जो हिन सो भली भांति जानते हैं इनकी भगवान शिव और माता पार्वती रे विवाह रा प्रसंग की सो गूंजता है शो तो भगवान शिव री स्तुति माँ मनाए गाने वाला शो तो नवाला असू सब थो ज़्यादा प्रमुख और पवित्र इंदे रीति रिवाज में इंदे परिवारिक त्यौहार हाए नुवाड़ा के ऐशो तो है ना जति में पूरी रात शिवरी पूजा अर्चना और लोग गायन बुंदा चलिए फिलहाल तो नवरात्रि की बड़ी बड़ी मुबारक मून तुश ऐशो तो अक मौके फिरी और कुछ एक खास जानकारी और तुश गो है ज़रूर शेयर कर ले साझा कर ले चलिए जी लेकर चलते तू सभी श्रोताओं जो इस गीतारी किनारी बनी रहा जुड़ी रहा आर जे सचिन कपूर सोगी गूंज अपने बन रही और गूंज प्यारे प्यारे श्रोता रेता दाड़नू कंडी थो मैडी नेगी ठीक है नेगी साहब तुस वो यह गीत के सो जरूर हुनंदे हिन जो तो है गीत बलो प्यारी बोटली बाय पीयूष राज जरूर जी तो चलिए फिलहाल शो तो एंजॉय कर देने इस प्यारे दे गीता जो भेड़े गुंचन रेडियो गुंचन धर्मशाला मंच।
गूंज अपने बन रहे।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रो और कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा गैन सो चल रही मैडी जी तुंदी फरमाइश सू जरूर पूरी करने हैं लेकिन बहरहाल है कार्यक्रम जो थोड़ा करे और हगो बनंदे हैं और लेकर चल दें अपने श्रोतागण जो यह जानकारी री किनारी ता इंदे कुछ कैन सो इंटर्नशिप करना छू रहे हैं जो कि चाहूँ देन कि जे इंदे सिंगर बुझ गए न है ना और कोई जो इंदे गद्याली तिया लेखक बुझ गए हैं कुछ एक लेखक भी हैं है ना और सो भी बुझ गए हैं तो सो सब इंटरव्यू वास्ते रुक कर देन अगर तो है भी इच्छुक हैं कि तो है अपनी कम्युनिटी वास्ते कुछ अलग करो हा या बेहतरीन करो हा या कुछ हटे करे करो हा तो है सब इस नंबर मंच कॉल कर सकते हैं और इंटरव्यू अपना की सो फिक्स कराए सकते हैं शो तो 708-709 पर नंबर अक मौके फिर 708-709 अकबर तो है सब श्रोता कॉल कर सकते हैं कॉल भी कर सकते हैं और इंटरव्यू वास्ते वाली भी सकते हैं श्रोताओं में दुकानदारा जो दिवाली तक रहा था यूपीआई पेमेंट में हले 0.4% किया सो एमडीआर चार्ज ने हाँ और एनपीसीआई ने किया सो फैसला ले वको हा टाड़े करे त्योहारी सीजन रह चलते किया सो निर्णय ले और व्यापारी वर्ग बड़ा खुश हुआ है शायद 2000 तो ज़्यादा रिपेमेंट पर दत्तो था बूणा तो लागू लेकिन फिलहाल क्या सोना बूणा हाँ लागू दुनियारी कई अर्थव्यवस्थाएं महंगे तेल और विश्व अनिश्चित वे दबाव थो जूझू करता है लेकिन भारत री आर्थिक रफ्तार मजबूत बन रहे हाशो तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किया सो भारत भी जीडीपी ग्रोथ जो लेकर किया सो अपना अनुमान बढ़ाई दिता हाशो तो वित्त वर्ष 2026-27 वे वास्ते भारत भी जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.4% थो बढ़ी करे किया सो 7% करी दिता हर्ष तो यानी अब है कि सो उम्मीद है कि इस वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था पहले थो क्या सो अनुमान थो ज़्यादा तेजी और बढ़ने हैं ठेरी वजह मजबूत घरेलू मांग और सर्विस सेक्टर अच्छी एक्टिविटी थो मिलने भी उम्मीद

0: तुम बेहतर रफ्तार हा। और आज सीविद सील करने वे इबादत हूँ उतर देहा भारत उतर लेता ठीक है उतरने तो आए हैदराबाद में। हैदराबाद में शदों वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलेगा ना आज चौथा T20 श्रृंखला बराबर करने की कोशिश में किया। सो मेहमान टीम भी गया सो पूरी तैयारी मन छा। बहरहाल पूरी जानकारी तो सो गया है शेयर कर लें दे श्रोतागण असोगे कनेक्ट बुझ गया हैं उस दिन कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन। हाँ जी नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी।
0: नमस्ते जी नमस्ते कौन बल्लू दिन और कड़ी थो बल्लू दिन।
1: हाँ बल्लू ना हंसराज सिंह उठो डिस्ट्रिक्ट चमदे।
0: अच्छा हंसराज जी।
1: हाँ जी हाँ सिंह उठो।
0: अच्छा अच्छा ठीक ठाक ना।
1: हाँ जी हाँ जी बजी तू वाला
0: बढ़िया जी बढ़िया कर लगुरेन कैलूरा कमाना
1: बस तुंदा चैनल सेवर हो तो से शेयर बंद गया मैंने चला कर दे बढ़ के फोन है।
0: हाँ जी
1: अपने समाज कोई।
0: अच्छा
1: हाँ जी हाँ जी और
0: क्या बात है
1: नाम बता जा।
0: बढ़िया जी है भी ठीक ने बस कोशिश कर देन कि अपने श्रोता तक के इनसो जानकारी पहुंचान और
1: हाँ जी जी
0: गीत संगीत रहा। हाँ जी
1: मतलब कट्ठा बल्लू ने तुम दाइंस क्यूट करे
0: क्या करी इन्जी
1: मतलब कट्ठा बल्लू ने तू है चैन कट्ठा हूँ को तुम दाओ
0: तो तू है आज पहली बार कॉल करे या।
1: हाँ जी हाँ जी पहली बारी।
0: अच्छा इसी वेडियो गुंजना जो कि धर्मशाला में स्थित था और 91.2 FM फ्रिक्वेंसी है तेरी और तो है अगर भरमौरा था बल्लू कर दें तो है ऐप रे जरिए कि सो गुंजन इंडिया रेडियो या गूगल में लाइव भी तो है हूँ कर दे बुले तो है इस समय ऐप रे जरिए कि सो हूँ कर दे। हाँ
1: जी
0: हाँ जी और तो क्या कर दे माल को
1: करना क्या लंदे दाड़ी तो पी और क्या कर।
0: अच्छा
1: हाँ जी जी
0: क्या चल रहे दहाड़ी था 700 रुपया 500
1: रुपया
0: 600
1: हाँ जी।
0: अच्छा धर्मशाला में तो 700-800 भी ले लेंगे।
1: अच्छा 800
0: हाँ जी
1: चलो बस ही दहाड़ी ला दे ये बात वाला
0: और क्या
1: चलो करना है फिर लेना फिर दाई लेना।
0: इंसान जो ना दुख बीमारी ना लगा सुख शांति बुआ सेरे जीवन में सेरे टपरा मंज सेरे आस पड़ोस में है ना तो इंसान के आस हो खुश रहता दहाड़ी लाई करी भी खुश रहता।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: है ना क्या फायदा यार करोड़ों री संपत्ति है तू सुले हैं बड़ी बड़ी गड्डी तू सुले 10-10 मंजिला घर ने तू सुले लेकिन मना शांति नहीं है सो है
1: बिस्तर के फायदा ना
0: ठेरे के फायदा बिस्तर तू सुरे लख रुपये रे बिस्तर बुले बेशक लेकिन निंदर मना चैन ना बुआ तो क्या फायदा ठेरा भी साऊं ता हमेशा परमात्मा गोए अरदास करनो के बस सुख चैन दिनिया जिंदगी में बाकी कुछ ना चिंता बाकी जो तो है दितुरा जितना दितुरा तू ना करे छोड़ा।
1: सुख तो चलो अभी नंबर आते लग रहे थे मैं लाख बजने होना इंदे तू है तो बढ़िया है अपने चैनल में देता हूं
0: कमाल गुरुजी तो है फोन करो भरमौरत हूं और तुम अपना कादा कार्यक्रम है हुनदे रहे इस गादे कार्यक्रम जो तू सब पता लगदे रहना।
1: एक्चुअली मेरे चाचे है ना चैनल तुम दो कर रहा।
0: अच्छा
1: सो भी सोगी लुग रहे ना तो फिर आए हुन वंदे ही दिने भी हुन वंदे ही है फिर बल्ला 4 बजे इन्हें स्टार्ट होना।
0: अच्छा
1: मैं तो दया नंबर आए अपने फरमाइश रख ले कोई।
0: हाँ बिल्कुल और फरमाइश असोगी तो है अपने भरमौरा रे कोई नोई ताजे गल भी होना सकते कि कड़ी कैब हुआ कुछ जो जो तुसु को जो के इस समय लक्ष्य होता गया ना सो हुनो कर दें ना तो तिन्यो पता लगा कि हाँ भाई भरमौरारी फलानी जगह की है सो ही करे बच्चे को।
1: हाँ जी हाँ जी कोई ना दिख चले तो ये अपडेट पूरे आ गए।
0: हाँ हे हे
1: हाँ जी
0: ताँ कौन दिन गीत होना तुसु भजन कौन दिन
1: नागगरा कोई भजन ना
0: नागगरा।
1: हाँ जी हाँ जी
0: अच्छा कस सिंगर रहे होना कस सी रहे
1: कच्ची रे बनाई दिया।
0: अच्छा
1: अजय भरमौरी बनाई दिया
0: अजय भरमौरी रे।
1: हां जी
0: ता अजय भरमौरी रे घर तुम दे पास सेन कर खा।
1: हां ता रे दिन मतलब प्यार घर दूर ना है ता सिओर मतलब पंचायत मेरे ग्राम सिओर डाक घर सिओर।
0: अच्छा
1: हां जी हां ਗੁਰਮੋਹਰਿੰਦ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੈਂਦੇ ਨਾ
0: ਤਹਿਸੀਲ ਆ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
0: ਅੱਛਾ ਚਲੀਏ ਠੀਕ ਆ ਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਣ ਅਲੇ ਦੱਸੂ ਗੀਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ
0: ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਮਸਤੇ
1: ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ चलिए श्रोताओं कार्यक्रम जो है बढ़ते हैं और कार्यक्रम मंच अब है लेकिन जल्द है तो सभी जो इस गीत

শত এফএম ব্যান্ড 91.2 মেগাহার্টজ পর রেডি গঞ্জন ধর্মশালা তো হেজ বি টিউন কর রো আর কার্যক্রম মে হার জে সচিন কাপুর সো কে বিলকুল লাইভ হুন কর দেন হিন্দি আপনি গপা বরহাল ইন দে শ্রোতা গণ গেন সো চম্বা ভরমোর থো কানেক্টিভ হুয়ে থি শ্রোতো আর জো কি হুন আছন দেতি হে আজে ভরমোরি রহি গৌরা এ গীত হা শ্রোতো নাগা খোল কুন্ডিয়া তো এস গীতা জো ইনো কি সো হে জরুর হুনন্দে হিন শ্রোতো আর হ্যাঁ তো সব শ্রোতা ভি কানেক্টিভ হো সকতে হ্যাঁ 708 8 8 709 पड़ता है दसो करते थे शोतों की आज सीवीज रा किया सो बिल्कुल दोनों टीमों रा इवादा किया सो मजबूत भूना हा शोतों टीम इंडिया रा बिकर खनगर खा पलट बार जरूर भूना हा और अगर आजकला मैच टीम इंडिया जितते गन दे शोतों ता सीरीज किया सो अपने ना टीम इंडिया किया सो कर सकते हा और तथ्य शोतों मेहमान टीम किया सो बिकर खनगर खा वेस्ट इंडीज भी ये सोचो कर दे भुने कि आजकला जो चौथा T20 हा सो अह जितते गन ता पंजमेरा इन मजा चली ना फिर है नहीं तो यहाँ पंजमेरा रोमांच के सो दर्शक वास्ते बच सकता खत्म बचेगा छा लेकिन फिलहाल सब अपना अपना सोचता टीम इंडिया इस समय जितने भी सोचते भुने हाँ और सी भी जो कब्जे करने वे हम कब्जे करने में किया सो सोचो करते बुने और तो ठीक किया सो वेस्ट इंडीज़ भी सोचते बुने कि अचकना मैच ता जीत और हार तैयारी अचकने मैच में किया सो लगने हा शो तो खेल समाचार है तुसु हुनाओ करदे इन शतों शुभन गिल और शेफाली की है शतों सो चुने गए इन ICC प्लेयर ऑफ द मंथ इसी सो की शतों महज त्राई दिन में जित गए मुंबई रणजी ट्रॉफी में पारी और 155 रन थो किया सो हराओ शतों चंडीगढ़ बोनस भी जुटाए शतों ता कार्यक्रम इंदी अपनी गप्पा हुनो करते हैं तो ऐसा बार जैसे सचिन कपूर सोगे और है कुछ खेल समाचार की असो तो सुत तो कर पहुँचाओ कर दे हिंद छो तो पहुँचाने री इंदी लाजमी है कि कोशिश ज़रूर की सो सो रंदे हा शो तुम तो त्रिय नवरात्रे में शो तुम लगभग किया सो 87,000 भक्त है किया सो माता रानी रा किया सो आशीर्वाद लियो हा और चिंतपूर्णी मंदिर में किया सो 9.5 लाख रुपया दान हुआ हा तो सो दसना चाहते हैं चिंतपूर्णी मंदिर में नवरात्रे मेले वे दूजे दिन 9,50,285 रुपये नगद चढ़ावा किया सो चढ़ुआ शो तो मंदिर अधिकारी संजीव दस हुआ कि त्रिये दिन के सो 25,000 भक्त है किया सो मत्था टेक हुआ शीश नवा हुआ शी झुका हुआ शो तो चमुंडा मंदिर में 2,000 भक्त किया सो मत्था टेक हुआ चमुंडा देवी मंदिर में किया शो तो सो नवरात्रे मेले वे त्रिये दिन के सो मंगलवार जो यानी कि पिछले गल किया सो 2,000 श्रद्धालुए के सो मत्था टेक हुआ शो तो और मंदिर रे भक्त री मंदिर में किया सो भक्तारी सुरक्षा व पुख्ता इंतजाम के ने सो बछूरे इन शतों जगह जगह पुलिस किया सो तैनात है कांगड़ा स्थित ब्रजेश्वरी देवी मंदिर में किया सो नवरात्रे मेले वे दुए और त्रिये दिन लगभग सोतों लखर है साबे मणु हीन तड़ी भी है ना और क्या नगद चढ़ावा चढ़ो तड़ी 3,68,845 रुपये नकद चढ़ावा के ऐसा चढ़ो ये आंकड़े सुन जो अह तुसो की शेयर करो कर दे लेकिन आंकड़े इतना ज़्यादा ही बुने घटता बुने ने है ना और ये तो विनम्रना ना कि जो 10-150 बंदा ने तो करखा करखा हाँ ये जानकारी तू होगी ज़रूर शेयर करनी है महाराज ज़रूर कर ले लेकिन हाँ इस गीता थों बाद बनी रहे जुड़ी रहे आरजे सचिन कपूर सोगी मौसम थों रिलेटेड जानकारी है शो तो ज़रूर साझा कर ले तू सुसोगे

शोधो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून करो और कार्यक्रम हिंदी अपनी गप्पा गन सो भरपूर चल रही तो सोगी बिल्कुल लाइव ताऊँ अगली जानकारी लेकर ही भी तो सोगी के सो हाजिर हुआ शोधो हिमाचल प्रदेश में अलग अगले त्राई दिन के सो मौसम फिर तो करवट बदले सकता है बदलने वाला है इवन की मौसम विभाग की शोधो मौसम विभाग की सो 15 अक्टूबर तक प्रदेश व कई जिला में आंधी चलने भी दुते 15 अक्टूबर दुते की ऐसो प्रदेश कई जिला में की ऐसो आंधी चलने बिजली कड़कने और बारिश भुनेरा येलो अलर्ट की ऐसो जारी करो अशोतों 16 और 17 अक्टूबर जो भी कुछ स्थान पर बरखा बुझे सकते हैं अशोतों इस दौरान ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी की संभावना है अशोतों 18 और 19 अक्टूबर जो प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है मंगलवार जो राज्य व अधिकांश हिस्से में धूप खिली रहने अशोतों बीते 24 घंटे माँ किन्नौर व निचार माँ के 106.5 mm और शिमला जिला व सराहन माँ के 103.3 mm बरखा दर्ज होने अशोतों मंगलवार जो शिमला और मनाली सहित प्रदेश व कई हिस्से में बेगा के असो धूप खिले रहने हैं हालांकि राति और अगली बेगा व तापमान में गिरावट के कारण किया सो कुछ इलाके में ठंड भी बढ़ी गई है अशोतों ते थी मौसम तो जुड़ी जानकारी जो है तुसो की शेयर करे बहरहाल लेके चलते हैं रेडी गुंजन धर्मशाला में तो वे बन रहे ना आज सचिन कपूर सो के लेके चलते हैं शो तो इस तारीख

0: चंबे
1: क्या बात है।
0: इन्हें होगी मेरी मुलाकात हुई थी धीरे होली उत्सव माना जी डिस्ट्रिक्ट लेवल रा कार्यक्रम तो तड़ी एंकर आऊं तो होस्ट आऊं करो गर्दत हुए थे एज अ सिंगर आई थी तड़ी परफॉर्म करना तो तड़ी हुई थी इन्हें होगी मेरी मुलाकात तो ये बड़ी दूर था आई थी है ना कि तू ना तुम आई थिंक अपनी गड्डी बाइक का भी तो 6-7 घंटे लगे गंदे इड़ी धर्मशाला पुजदे तुम तो ग्रांत हो कितना टाइम लगता
1: जी मेरे घर कोई 15 किलोमीटर दूर
0: ना ना तुंदे घर तो 15 किलोमीटर दूर बोले सिंगर लेकिन तुंदे ग्रां तो धर्मशाला इने जो कितना टाइम लगंदा सो पूछूंदा
1: बस सन लगे देखो 6 घंटे
0: 6 घंटे बुझ गंदे बस समझे हां जी अच्छा अपनी गड्डियां
1: दा कोई ड्राइव नहीं एक्सप्रेस गड्डी लेकर गया है ना
0: अच्छा चलिए ठीक है जी हाँ तो है सुभाष कौशल रहा कोई गीत तो सुनना है तो जरूर होने ले है ना जी
1: हाँ जी भाई
0: ठीक है जी धन्यवाद नमस्ते
1: ठीक है
0: तशो तुम वेड़ी गुंजन धर्मशाला तो है सभी ट्यून कर रहा और एक कार्यक्रम इंदी अपनी गप चल रही है इंदी अगले श्रोता आस होगी कनेक्टेड है नमस्ते जी
2: हेलो
0: हेलो नमस्कार जी
2: नमस्कार जी क्या हाल चाल है ना
0: बहुत बढ़िया जी कौन बोल रहे हैं और कड़ी था बोल रहे
2: जी मैं यूं ते बोला था परसराम
0: हाँ जी परसराम जी ठीक ठाक
2: परसराम बोला मैं
0: परसराम जी ठीक ठाक
2: हाँ जी सब ठीक ठाक है जी
0: परसराम जी तुम दे नोई नवेले पंचायत बने हैं आजादी थों बाद 1947 थों बाद पहली बार गया सो योल टिके चतड़ पंचायत बने हैं मीटिंग बहुत बुच्छु कर दी लेकिन क्या कुछ धरातल पर भी नजर इच्छु कर दा
2: सब कुछ ठीक है जी
0: हाँ जी
2: सब कुछ ठीक ही है
0: क्या ठीक है मतलब रोड रोड बनी है तो अरे हाँ जी
2: मेरी कुड़ी की फरमाइश है चिंतपूर्णी का कोई भजन चाहिए था
0: कुड़ी री फरमाइश था जरूर जरूर मेरी आवाज इच्छु कर दी तुसु वो
2: आज कुछ साफ नहीं हो रही
0: अच्छा अबे चुंदी जी
2: हाँ जी लगी कुछ होना
0: अच्छा मैं लोग क्या ले कुछ काम कार हुए कि ना हुए
2: कोई काम कार नहीं हो गए आजकल तो तुम्हें पता ही है ये होगा
0: अच्छा
2: ये वो सब उसी की है ना ये टाइम ठीक है नहीं हो जाता है ठीक है
0: आ साढ़े के ज्यादा नहीं
2: बिल्कुल गलाइए था भी ठीक नहीं गलाइए था भी ठीक
0: अच्छा
2: आजकल तो हमें पता ही होगा
0: चलिए पर गला चलिए ठीक है जी बहुत अच्छी गल है तो है बहुत अच्छी गल बल्ले हाँ चलिए ठीक है जी हाँ मुन्नी री फरमाइश में माँ चिंतपूर्णी रा गीत है जरूर हूँ ले
2: हाँ जी मैं कुड़ी की फरमाइश है अंदर बैठी चौकी बार में बोली बस मोबाइल नहीं मेरा ठीक है
0: ठीक है जी ठीक है
2: ठीक है जी जय माता दी

जय माता दी। बहरहाल श्रोतों कार्यक्रम जो बढ़ंदन थोड़ी करी हगूँ और फरमाइश और कर लेंदेन पूरा कर चुके असूल है मिनटा घट बची न।

चलिए श्रोताओं, मुंजो यानी कि सचिन कपूर जो दया तो है इजाज़त, हंस दे रहे मुस्कुरन दे रहे और रेडी गुंजन जो यहीं हूँ दे रहा खास अपडेट वास्ते बने रहे जुड़ी रहा मुलदेन चाहिए था आठ फिर गुड इवनिंग धर्मशाला मन श्रोताओं तीन तक कर एंजॉय इस गीता जो हंस दे रहे मुस्कुरन दे रहे माँ बाप जो खुश रखा श्रोताओं प्रकृति का ख्याल किया सो जरूर रखा श्रोताओं इन शब्द था सचिन कपूर लेने तो सोता हूँ इजाज़त नमस्ते धर्मशाला।

दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा शस्त्रधारिणी हिरण्यवर्णा केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशा इन्हीं से आलोक

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: कूर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: है नीला, हरा है गीला, सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके,
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी, बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे होगी हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन धर्मशाला सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम लेकर मैं सचिन कपूर हाजिर हुआ हूँ, गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत के साथ।

91.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आपका अपना वेडी गुंजन धर्मशाला, और आप सभी हमारे साथ इस सुर की ट्रेन में जो है वो बैठे हुए हैं, और ये सुरों की ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हम सफर की तरह इसमें यूं ही आनंद लेते रहिए गीतों का।

इस समय आप सभी ने ट्यून किया है वेणुगुंजन धर्मशाला और मैं नाचीज सचिन कपूर हूँ। कार्यक्रम गीत सुहाने नए पुराने को होस्ट कर रहा हूँ और ये प्यारे प्यारे से नगमे आपके बीच आपकी उस ट्रेन में रख रहा हूँ। आइए इसी के साथ लेके चलते हैं एक और प्यारे से गीत की ओर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन की इसी गूंज के साथ। यूं ही बने रहिएगा और हम इसी तरह से आपके दिल को खुश करने की गीतों की ये डोर यूं ही चलती चलेगी श्रोताओं, जब तक आप हमारे साथ हैं और हम आपके साथ हैं। अगीत सुहाने नए पुराने कार्यक्रम का आनंद आप सभी ले रहे हैं 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर।

रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम 91.2 एफएम पर सुन रहे हैं। बिल्कुल, नाम है कार्यक्रम का गीत सुहाने नए पुराने। तो आइए इसी तरह से आनंद लेते चलते हैं नए पुराने गीतों का और सुनाते हैं आपको ये प्यारा सा एक और गीत। ये नगमे यूं ही चलते रहेंगे, ये ट्रेन यूं ही चलती रहेगी। आप सभी हमारे साथ यूं ही बने रहिएगा रेडियो गुंजन की गूंज के साथ।

FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर।

आप सभी बने हुए हैं इस समय आपके अपने रेडियो गुंजन के साथ, कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं अपने अपने रेडियो सेट पर। ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहेगा, ये कार्यक्रम यूं ही महकता रहेगा आपके घर पर, आपकी गाड़ियों में, आपके खेतों में और जहां जहां भी आप सभी ने इस समय 91.2 FM ट्यून किया है, वहां वहां ये कार्यक्रम की गूंज यूं ही गूंजती रहेगी।

का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशा इन्हीं से आलोक

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: अरे लाइक तुझे इतना सब नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणिया करती है। शादी मतलब अजी सुनते हो, भैरे होगी हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है। हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

नमस्कार श्रोताओं, FM बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना RJ रेडियो जो कि सचिन कपूर। बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। गुड इवनिंग धर्मशाला कार्यक्रम का अब आनंद लेंगे मेरे यानी सचिन कपूर के साथ पूरे 8 बजे तक। श्रोताओं, कोशिश की जाएगी कि आप सभी श्रोताओं को रूबरू करवाएं।

जानकारियों के साथ, कुछ एक स्टोरी के साथ और कुछ एक लोकल जानकारियों के साथ, और साथ ही साथ कोशिश की जाएगी श्रोताओं की, बिल्कुल कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश की जाएगी कि कुछ एक गीत जो है उनसे भी आपको हम रूबरू करवाएं। तो सबसे पहले धर्मशाला का मौसम जो है वो आप तक हम साझा कर लेते हैं श्रोताओं। इस समय 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो मौसम बना हुआ है, तापमान जो है वो धर्मशाला का बना हुआ है। नमी की बात की जाए तो नमी जो है श्रोताओं वो लगभग 55% के आसपास बनी हुई है, और विजिबिलिटी जो है वो 16 किलोमीटर तक की बताई जा रही है। तो ये है पूरी अपडेट धर्मशाला के मौसम की। तो आइए जी आगाज करते हैं कार्यक्रम का, आगाज बहुत ज़रूरी है श्रोताओं। आगाज करते हैं कि या कहीं दूर चले जाएं हम, इस गीत के साथ बने रहेगा, जुड़े रहेगा वेडी गुंजन की गूंज के साथ।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला। तो बहुत बहुत स्वागत है पुनः आप सभी श्रोताओं का, सभी सुनने वालों का। तो आइए लेके चलते हैं आप सभी को आज के विचार की ओर। कहते हैं परिस्थितियाँ नहीं बल्कि हमारी मन स्थिति ही हमारे सुख और दुख का कारण बनती है। यानी कि जो मन जिस तरह से सोच लेता है, जिस तरह से विचार कर लेता है श्रोताओं, वही जो है वही हम सोचने लगते हैं, वही हम करने लगते हैं और उसी प्रकार से जो है वो हमारा सुख और दुख भी बटने लगता है। अच्छे विचार हमारे जीवन को सुंदर अवश्य बनाते हैं लेकिन हमारे अच्छे कर्म ही उसे महान बनाते हैं श्रोताओं, है ना। सफलता केवल भाग्य के भरोसे नहीं मिलती, इसके लिए दृढ़ विश्वास, कड़ी मेहनत और अटूट धैर्य की आवश्यकता होती है श्रोताओं। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी को इस प्यारे से गीत की ओर।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 MHz पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस ओर। हिमाचल प्रदेश में अगले 3 दिन मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। मौसम विभाग ने 15 अक्टूबर तक प्रदेश के कई जिलों में आंधी चलने, बिजली कड़कने और बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया है। 16 और 17 अक्टूबर को भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। इस दौरान ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना है। 18 और 19 अक्टूबर को प्रदेश में मौसम साफ रहने का अनुमान है। श्रोतों, राज्य के अधिकांश हिस्सों में धूप खिल रही है श्रोतों, और बीते 24 घंटों में किन्नौर के निचार में 6.5 mm और शिमला जिला के सराहन में जो है वो 3.3 mm बारिश दर्ज की गई है। शिमला और मनाली सहित प्रदेश के कई हिस्सों में सुबह से धूप खिली है श्रोतों, हालांकि रात और सुबह के तापमान में गिरावट के कारण ऊंचे इलाकों में ठंड बढ़ने लगी है। इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा, आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस संगीत की ओर।

Shoto FM band 91.2 MHz पर विड़ी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और एक कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो उस सेट पर विड़ी गुंजन धर्मशाला में। आइए श्रोतों कार्यक्रम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल आप सभी श्रोतों को रूबरू करवाएंगे कुछ एक और खास जानकारियों के साथ। तो श्रोतों यूँ ही बने रहिएगा कुछ एक खास जानकारियों के साथ, यानी कि अब से ठीक पूरे 7 बजे यानी कि पूरी 35 मिनट बाद जो है वो श्रोताओं आप देखेंगे कि कौन सी टीम जो है वो आज का मैच अपने नाम करती है, यानी कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ की जो है वो आज मुकाबला है पूरे 7 बजे श्रोताओं, ये मुकाबला जो है वो शुरू हो जाएगा और जहां टीम इंडिया देख रही है कि सीरीज़ को अपने कब्जे में करे वहीं पर श्रोताओं वेस्ट इंडीज़ भी जो है वो अपने बचाव के लिए अपने खिलाड़ियों के साथ जो है वो भरपूर मैदान में जो है वो जोश लगाएगी, भरपूर दम जो है वो दिखाएगी और आज वेस्ट इंडीज़ को जो है वो दम दिखाना ही पड़ेगा तभी जो है वो 5वें मैच का रोमांच बना रहेगा, यानी कि दोनों टीमें जो हैं वो दो दो मैच जीत लेंगी और 5वें का रोमांच जो है वो बना रहेगा। वहीं टीम इंडिया ये चाह रही होगी कि हम जो है वो आज ही मैच जीत कर जो है वो ट्रॉफी अपने नाम कर लें और आज टीम इंडिया भी जो है वो पूरी जद्दोजहद करेगी और पूरी जी जान लगाएगी कि आज ही जो है वो ट्रॉफी उनके नाम हो जाए। तो चलिए फिलहाल हम कार्यक्रम को करते हैं आपके नाम और लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

श्रोत एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आप सभी ने ट्यून किया है वेड़ी गुंजन धर्मशाला और मैं हूं आपके साथ आरजे सचिन कपूर। पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं कार्यक्रम में, गुड इवनिंग धर्मशाला में। तो आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं श्रोताओं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। 16 तारीख को यानी कि परसों जो है श्रोताओं, वो सुबह 9:30 से शाम कार्य समाप्ति तक जो है वो लाइट नहीं रहेगी। सुबह 9:30 बजे जो है वो लाइट चली जाएगी और कार्य समाप्ति तक जो है वो लाइट नहीं आएगी। किन किन जगह में, गौतम गली योल बाज़ार की मैं बात कर रहा हूँ, गौतम गली, पुरानी चुंगी, लहसर, बंदरोड़ू आदि क्षेत्रों में जो है वो विद्युत आपूर्ति जो है वो बाधित रहेगी। श्रोताओं, मौसम खराब होने या अन्य आकस्मिक आपदा में ये कार्य जो है वो स्थगित किया जाएगा श्रोताओं, और ये कार्य जनहित में करना बहुत आवश्यक है। तो आप सभी से, जनता से सहयोग की अपील की है डिपार्टमेंट ने, कृपया सभी लोग जो हैं वो बिजली विभाग का सहयोग करें। बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा आरजे सचिन कपूर के साथ। इसी तरह चलती रहेंगी जानकारियां और इसी तरह चलते रहेंगे गीत संगीत का ये दौर भी। लेके चलते हैं आप सभी को इस गीत की ओर।

आरजू झूठ है, कहानी है आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

क्यों बनाती हो तुम रेत के ये महल जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी तुम।

एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का बोझ होता है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।

श्रोतो एफ एम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी गुड इवनिंग धर्मशाला सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ। आइए श्रोतो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आप सभी बिल्कुल बने हुए हैं, जुड़े हुए हैं वेडी गुंजन धर्मशाला के साथ और अगली जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। श्रोतों, हिमाचल प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए अवैध भांग की खेती के खिलाफ जो है वो नार्कोटेक्स कंट्रोल ब्यूरो ने अभियान तेज कर दिया है। श्रोतों, नार्कोटेक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमों ने जो है वो विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के संयुक्त अभियान में कुल्लू ज़िला में विशेष अभियान के तहत अब तक करीब 590 एकड़ भूमि पर उगाई गई अवैध भांग की खेती को नष्ट किया जा चुका है। श्रोतों, ये कार्रवाई पर्वती घाटी में जो है वो नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नेतृत्व में विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के संयुक्त अभियान के तहत की जा रही है। इस अभियान में एनसीबी के साथ आईटीबीपी, हिमाचल प्रदेश पुलिस और राज्य वन विभाग की टीमें शामिल हैं। पार्वती घाटी में अभियान के दौरान टीमों को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। श्रोतों, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने करीब 2100 से 3050 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दुर्गम क्षेत्र में खड़ी पहाड़ियों, घने जंगलों, बारिश और कोहरे के बीच पहुंचकर जो है वो कार्रवाई की जा रही है और कार्रवाई कर रही हैं ये टीमें। कुल्लू ज़िला में कार्रवाई के अगले चरण के तहत नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम अब कसोल की ओर बढ़ रही है। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एक अन्य टीम चंबा ज़िला में भी अवैध भांग की खेती को नष्ट करने के अभियान की शुरुआत करने के लिए पहुंच चुकी है। श्रोतों, अवैध भांग की खेती के खिलाफ ये कार्रवाई मादक पदार्थों नियंत्रण से संबंधित विजन डॉक्यूमेंट 2026 से 29 के उद्देश्य के अनुरूप है। इस दस्तावेज का लक्ष्य नशा मुक्त भारत के संकल्प को आगे बढ़ाना है। चलिए श्रोतों, कार्यक्रम को आप सभी सुन रहे हैं वेडी गुंजन धर्मशाला में और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। इसी तरह से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा और गीत संगीत का सिलसिला भी यूं ही बरकरार रहेगा।

शोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और मैं हूं आपके साथ आपका अपना आरजे वेडी जो कि सचिन कपूर। आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और अगली जानकारी के साथ आपको रूबरू करवाते हैं। चिकित्सा शिक्षा विभाग में जो है वो सहायक स्टाफ नर्स के 650 और आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 117 पदों पर नियुक्ति प्रदान जो है वो सहायक स्टाफ नर्सों के 1300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। चिकित्सा शिक्षा विभाग में ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट के लगभग 85 और स्वास्थ्य विभाग के लगभग 40 पदों पर नियुक्ति पत्र जारी। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत अटल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल सुपर स्पेशलिस्ट चमियाना सहित मेडिकल कॉलेज में सहायक स्टाफ नर्सों के 650 पदों पर नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है श्रोतों, जबकि 1300 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है श्रोतों। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में सहायक स्टाफ नर्सों के 117 पदों पर नियुक्ति प्रदान की गई है श्रोतों। हाल ही में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में स्वास्थ्य विभाग में सहायक स्टाफ नर्सों के 500 और पदों पर भर्ती करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राज्य चयन आयोग के माध्यम से चयनित ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट अभ्यर्थियों को चिकित्सा शिक्षा विभाग में 85 और स्वास्थ्य विभाग में लगभग 40 पदों पर आज ही नियुक्ति पत्र जारी किया गया है श्रोतों। तो इसी प्रकार से जानकारियों का सिलसिला चलता रहेगा, जानकारियों का पिटारा यूं ही खुलता रहेगा। ये लेके चलते हैं आप सभी को इस

श्रोतो FM बैंड 91.2 MHz पर वेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम में आप सभी सुन रहे हैं आरजे सचिन कपूर के साथ बिल्कुल लाइव अपने अपने वीडियो सेट पर। तो आइए जी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं आप सभी श्रोताओं को। अब से ठीक एक मिनट बाद श्रोताओं पूरे 7 बजे आप सुनेंगे समाचार रेडियो गुंजन धर्मशाला में। और यादगार यादें बहुत होती हैं ना श्रोताओं लाइफ में। यादगार यादें भी क्या यादें होती हैं वाकई में ही। तो चलिए फिलहाल तो हम श्रोताओं आपको लेके चलेंगे कार्यक्रम के इस पड़ाव की ओर, यानी कि अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार रेडियो गुंजन धर्मशाला में।

0: मजदूर जो दिन रात मेहनत करते हैं, करीब 2009
1: श्रम ने कहा कि रेलवे में बड़े पैमाने पर भर्ती अभियान चल रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को 5 वर्षों की अवधि के लिए जारी रखा
0: को वरीयता, जो हमारे वीक सेक्शंस है सोसाइटी के, वल्नरेबल सेक्शंस है, उनके लिए सोशल सिक्योरिटी नेट का एक्सपेंशन, इसे 2031 तक बढ़ाया गया है और टोटल 53,428 करोड़ रुपीस का प्रावधान सोशल सिक्योरिटी नेट के एक्सपेंडेड फॉर्म में किया गया है।
1: श्री वैष्णव ने कहा कि दिव्यांगजन पेंशन योजना के अंतर्गत अब 79 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए सहायता राशि 375 रूपए और 80 वर्ष तथा उससे अधिक आयु वर्ग के लिए 625 रूपए होगी। श्री वैष्णव ने यह भी बताया कि मंत्रिमंडल ने IDBI बैंक के पुनर्गठन को भी मंजूरी दी है।
0: भारत जो तेजी से ग्रो कर रहा है, इसमें ग्रोथ कैपिटल की बहुत रिक्वायरमेंट है, ताकि हमारे पास कई जो कि ग्रोथ कैपिटल को ला सके, एमएसएमई को सपोर्ट कर सके, इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक में एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर सेलेक्ट किया गया है और स्ट्रैटेजिक पार्टनर की मदद से नया कैपिटल इंक्लूड किया जाएगा और भारत में फाइनेंशियल सर्विसेज में लार्जेस्ट FDI आने का माध्यम इस निर्णय से बना है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की सभ्यतागत यात्रा सदियों से सांस्कृतिक आदान प्रदान और ज्ञान के साझा प्रयासों से समृद्ध हुई है। भारत के वैश्विक सांस्कृतिक संबंधों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने एक संदेश में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भिक्षुकों, विद्वानों, व्यापारियों और यात्रियों ने भूमि और समुद्री मार्गों के जरिए भारतीय विचारों को दुनिया भर में पहुंचाया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद ने व्यापार और निवेश, शिक्षा, ऊर्जा, रक्षा और जनसमुदाय आदान प्रदान क्षेत्रों में संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। दोनों मंत्रियों ने आज नई दिल्ली में मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने बताया कि उन्होंने प्रमुख क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचार विमर्श किया। भारत ने आज सऊदी अरब के साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए पश्चिम एशिया के देशों में हुए हमलों की कड़ी निंदा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत नागरिक बुनियादी ढांचे पर सभी हमलों की निंदा करता है। उन्होंने बताया कि ये हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत बंद किया जाना चाहिए। महाराष्ट्र के 358 तालुकों में से 305 को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिवाली से पहले किसानों को 5,000 रुपए की प्रारंभिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। बॉम्बे शेयर बाजार का सेंसेक्स आज 252 अंक गिरकर 72,782 तक पहुंच गया। वहीं निफ्टी 99 अंक कम होकर 22,600 हुआ। आनंद कुमार दलकुमार ने परागवे में आयोजित विश्व स्केटिंग खेलों में पुरुषों की 1000 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में रजत पदक जीता। 4 मिलीसेकंड से स्वर्ण पदक जीतने से चूक गए। प्रतियोगिता में उन्होंने 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। हैदराबाद में चौथे T20 क्रिकेट मैच में भारत ने वेस्टइंडीज के साथ खेलते हुए टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 2-1 से आगे है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में शुक्रवार तक ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 दिन में आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, विदर्भ, हिमाचल प्रदेश, केरलम, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में गरज के साथ बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशाएं इन्हीं से आलोकित।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहते।

0: आंटी ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है?
1: अपने हेयर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
1: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिंस, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों?
5: सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
12: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
13: मोहित मेरा इस्तीफा।
14: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
13: सॉरी यार,
14: काम कीजिए आप लोग।
12: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
15: शोधो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो गुंजन। तो है आप सभी ने ट्यून किया है, बड़ी खास बात आप सभी के साथ। एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सभी बने हुए इस समय रेडियो गुंजन धर्मशाला के साथ, और मैं हूं आपका अपना आरजे रेडियो जॉकी सचिन कपूर। तो स्वागत है जनाब आप सभी का पुनः एक बार फिर से। आइए तो आज हम बात कर रहे हैं श्रोतों मानसिक स्वास्थ्य की, मेंटल हेल्थ की, जो कि बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल श्रोतों, आज मैं आपसे ना एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो हम रोज़ हम जो है वो रोज़ ही एक दूसरे से शायद ये सवाल पूछते हैं, लेकिन कभी उसका सच नहीं जानना चाहते। जब हम किसी से पूछते हैं और भाई और बहन सब ठीक है, और सामने वाला कहता है हाँ सब बढ़िया है, सब ठीक है, क्या वाकई में ही सब ठीक है? हम अपने शरीर का बहुत ध्यान रखते हैं श्रोताओं, जरा सा बुखार हो तो हम डॉक्टर के पास भागते हैं, जिम जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, शाम को खाना कम खाते हैं, पानी ज़्यादा पीते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, हेल्दी फूड खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, लेकिन हमारे शरीर में जो अंदर इंटरनली चल रहा है उसके बारे में शायद हम नहीं जानते क्या चल रहा है क्या नहीं, जब तक हम चेकअप नहीं करवाते। और हमारा दिमाग जब थक जाता है श्रोतों, जब उसे चोट लगती है तो हम उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। आज हम यही बात आपसे करने वाले हैं श्रोतों, यही दर्द आपसे बयां करने वाले हैं, मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। सबसे पहले एक गलत फहमी को दूर करते हैं आप सभी की, कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होना मतलब ये नहीं है कि पागल होना है, ये बिल्कुल भी नहीं है कि मानसिक रूप से अगर आप कहा जाए आपको कि आपका मानसिक रूप जो है वो ठीक नहीं है, आप अस्वस्थ हैं, तो आप ये समझिए कि आप पागल हैं। जैसे शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ बीमारियों से मुक्त होना नहीं बल्कि फिट होना है, वैसे ही मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि आप भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक रूप से कैसे और कैसा महसूस कर रहे हैं। ये तय करते हैं कि आप रोज के स्ट्रेस को कैसे हैंडल करते हैं, ये तय करते हैं कि आप दूसरों से रिश्ते कैसे निभाते हैं, और ये तय करते हैं कि आप मुश्किल वक्त में आपके फैसले क्या होते हैं, गुस्से में आपके फैसले कैसे होते हैं, आपकी टोन जो है वो कैसी होती है, आपका बातचीत करने का ढंग जो है वो कैसा होता है। अगर गुस्से में ये सब कुछ ठीक है तो आप मानसिक तरीके से ठीक है, आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चाहे वो पढ़ाई का प्रेशर हो, कैरियर की चिंता हो, या सोशल मीडिया का दिखावा हो, या घरेलू जो हिंसा है वो हो, या घर के मैटर्स हो, हमारा दिमाग जो है वो लगातार ओवरलोड रहता है। डिप्रेशन या एंजाइटी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये सिर्फ़ एक संकेत है कि आपका दिमाग बहुत लंबे समय से बहुत भारी बोझ जो है वो उठा रहा है। अक्सर रात में नींद चले जाना भी ये एक संकेत है कि आपका दिमाग बहुत बोझ जो है, भारी बोझ जो है वो उठा रहा है। अब सवाल उठता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पास या हमारे आसपास कोई या हम खुद मानसिक रूप से परेशान हैं। दिमाग कभी चिल्ला कर नहीं बोलता, वह छोटे छोटे संकेत देता है। इंसान तो चिल्ला कर अपना गुस्सा बयां कर लेता है, किसी को कुछ बोल कर अपना गुस्सा बयां कर लेता है, लेकिन श्रोताओं दिमाग हमेशा हमेशा शांति से और छोटे छोटे रूप में जो है, छोटे छोटे हिस्सों में जो है वो बोलता है। जी बिल्कुल, छोटे छोटे संकेत देता है। व्यवहार में अचानक बदलाव आना, जो इंसान बहुत हंसता बोलता था वह अचानक खुद को कमरे में बंद करने या अकेला रहने में अच्छा महसूस करता है, ये एक कारण है। नींद और भूख का बिगड़ना, ये भी एक कारण है। या तो बहुत ज़्यादा नींद आना, या रात भर करवटें बदलते रहना, भूख का बिल्कुल मर जाना, या स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा खाना, ये भी एक संकेत है। चिड़चिड़ापन और गुस्सा, ये सबसे बड़ा संकेत है। छोटी छोटी बातों पर बिना वजह गुस्सा करना, बिना वजह गुस्सा आना, या रोने का मन करना, या मन भारी हो जाना, ये सबसे बड़ा संकेत है श्रोताओं। इसका मतलब कि आपका दिमाग जो है वो अब थक चुका है। आप अपने दिमाग को जितना प्रेशर दे रहे हैं, जितना सोच रहे हैं, जितना चीज़ों के बारे में आप खोज कर रहे हैं, वो करना बंद कर दीजिए। अपने दिमाग को जो है वो स्थिर रखिए, उसे शांत रखिए, उसे ज़रूरत है अब शांति की, उसे ज़रूरत है अब थोड़ा सा रिलैक्स करने की। ऊर्जा की कमी होना, हर वक्त थका हुआ महसूस करना, उन चीज़ों में भी मन ना लगना जो आपकी अपनी पसंदीदा हुआ करती थी, तो ये भी एक कारण है श्रोतों। ये कुछ कारण हमने आपको बताए हैं। तो आप भी अपना मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बेहतरीन बनाना चाहते हैं, अच्छा बनाना चाहते हैं, तो ये कुछ एक कारण हमने बताए हैं, जिसमें से चिड़चिड़ापन और गुस्सा आना है ना, नींद ना आना, भूख ना लगना, व्यवहार में अचानक बदलाव आना, ये सब चीज़ें हैं। तो आप कृपया करके अपने दिमाग को जो है वो ठंडा ठंडा कूल कूल जो है वो ज़रूर रखें, और अपने मानसिक स्वास्थ्य को ज़रूर अच्छा रखें, क्योंकि बुखार आने पर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, चोट लगने पर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, पेट में दर्द लगने पर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, बाजू में दर्द लगने पर हम डॉक्टर के पास भागते हैं, लेकिन हमारा दिमाग जो इतने सालों से दब रहा है, इतने सालों से चोट खा रहा है, इतने सालों से थका है, इसे हम और थकाते हैं, इसे हम और परेशान करते हैं। तो कृपा करके अपने दिमाग को जो है वो ज़रूर शांत रखें, और जो ज़िंदगी में होना है वो होकर ही रहना है, ये तय है, तो क्यों ना हंसते हंसते होने दिया जाए, है ना। और जो चीज़ें हाथ में होती हैं ना शो, तो उनके बारे में सोचना भी बनता है, लेकिन जो चीज़ें हाथ में नहीं हैं उनके बारे में सोचना जो है वो बेमतलब का अपने दिमाग को स्ट्रेस देना है। तो आप सभी सुन रहे हैं कार्यक्रम आरजे सचिन कपूर के साथ गुड इवनिंग धर्मशाला। लेके चलेंगे आप सभी श्रोताओं को अब श्रोताओं ये प्यारे प्यारे से गीतों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, लेकिन चलते हैं आप सभी श्रोताओं को इस प्यारे से गीत की ओर।

ये वाकई में ही ना टूट तो जाता है शो, तो शीशा हो या दिल हो आखिरकार टूट जाता है, और ये अक्सर टूटता है, बार बार टूटता है, हर बार टूटता है। इसीलिए तो ये गीत के दो लाइनें जो हैं वो मैंने आपको सुनाने की कोशिश की श्रोताओं की, शीशा हो या दिल हो आखिरकार टूट जाता है, लेकिन दिल ज़्यादा तब टूटता है श्रोताओं जब आप अपना मानसिक स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं रखते हैं, अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल जो है वो भरपूर तरीके से नहीं रखते हैं, तब दिल जो है वो ज़्यादा टूटता है। इसलिए अपनी मानसिक स्वास्थ्य का ख्याल ज़रूर रखें, मेंटल पीस ज़रूर रखें श्रोताओं।

दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशा इन्हीं से आ

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: उर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटियों की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला, हरा है गीला। सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने हेयर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों
5: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित, मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
14: सॉरी यार,
15: काम कीजिए आप लोग अपना।
13: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मी एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: अरे इतना मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे भालू शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे हैं, तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप रहने ही दीजिए, तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे, तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले, तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी आरजे सचिन कपूर के साथ सुन रहे हैं। गुड इवनिंग धर्मशाला, ये लेके चलते हैं इस अंतराल के बाद आप सभी को इस गीत की ओर।

0: श्रोतो एफएम बैंड 91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडी गुंजन धर्मशाला आप सभी ने ट्यून किया है और कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं समय गुड इवनिंग धर्मशाला। तो आइए जी, अब समय हो चुका है श्रोतो 7:46 यानी कि अब वक्त हो चुका है प्रादेशिक समाचारों का रेडी गुंजन धर्मशाला में।
1: योजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इनमें स्पीति घाटी के रोंगटोंग में बैटरी स्टोरेज से संचालित प्रदेश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण भी शामिल है। इस दौरान काजा में जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आने वाले समय में स्पीति के विकास पर 500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। उन्होंने कुंजम पास के नीचे टनल निर्माण के लिए सर्वे करवाने और इसकी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस टनल के निर्माण से क्षेत्र के लोगों और पर्यटकों को वर्ष भर बेहतर सड़क संपर्क सुविधा उपलब्ध होगी।
2: कुंजम से नीचे जो टनल बनने की बात कह रहा हूँ, स्पीति के लोगों के लिए मैं उसका सर्वे करवाऊंगा और जहाँ तक उचित होगा कुंजम में हम टनल बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, ताकि 24 घंटे यहाँ टूरिस्ट आए और हमारे जो लोग हैं उनकी आय दोगुनी हो।
1: मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अपना परिवार सुखी परिवार योजना शुरू करने जा रही है। इसके तहत प्रदेश की सभी पात्र महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और प्रति वर्ष 10 लाख रुपए का बीमा उपलब्ध करवाने का प्रावधान होगा। इस अवसर पर विधायक अनुराधा राणा सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने पहाड़ों पर बढ़ रहे कचरे को लेकर चिंता जताई है। शिमला में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में आज राज्यपाल ने कहा कि प्रदेश के पर्यटन स्थलों की कचरे के कारण प्राकृतिक सुंदरता प्रभावित होती है और इससे बाहर से आने वाले लोगों के बीच भी गलत संदेश जाता है। उन्होंने प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक भागीदारी पर बल देते हुए कहा कि स्वच्छता से ही प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
3: हम अपने घर को कैसे साफ करते हैं, वो भी हिमाचल में किसी प्रकार का कचरा हमारी जो प्राकृतिक सुंदरता है उसको खराब करता है। बाहर से जो लोग आते हैं उनमें गर्व महसूस करता है। पैटर्न तभी बढ़ेगा जब यहाँ उनको साफ सुथरा वातावरण मिलेगा। ये लगता है करके कंधे से कंधा मिला करके इससे अपना हिमाचल का मैं नारा देता हूँ।
1: राज्य सरकार ने जन सुविधा व प्रशासनिक दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए एक आयोग का गठन किया है। इस पुनर्गठन में प्रशासनिक इकाइयों का गठन, मौजूदा इकाइयों का विलय और उनका विभाजन शामिल है। आयोग की अध्यक्षता प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति धर्मचंद चौधरी करेंगे और इसका मुख्यालय शिमला में होगा। आयोग द्वारा प्रदेश में जिलों, उपमंडलों, तहसीलों, उप तहसीलों, विकासखंडों और अन्य विभागीय मंडलों की मौजूदा संरचना की समीक्षा की जाएगी। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किसानों को आधुनिक तकनीक, बेहतर सिंचाई सुविधाओं, प्राकृतिक

0: महिलाओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने के साथ साथ आकर्षक पैकेज, उचित लेबलिंग और बाजार की मांग के अनुरूप उत्पाद विकसित करने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। बाकी समाचार अंतराल के बाद।
1: यार, दो दिन से तेज बुखार है, बदन भी टूट रहा है और ये त्वचा पे काला निशान, इसे हल्के में मत ले रमेश।
2: सावधान, ये स्क्रब टाइफस हो सकता है। बरसात में घास झाड़ियों में पाए जाने वाले चिगर माइट के काटने से इसका खतरा बढ़ता है।
1: चलो अभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र चलते हैं।
2: खेतों में पूरी बाजू के कपड़े और जूते पहने, आसपास की झाड़ियाँ साफ रखें। लक्षण दिखे तो तुरंत जाँच और इलाज कराएं। सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। बाकी समाचारों में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उनकी ये यात्रा जनसेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर जारी रहने वाली अथक वचनबद्धता से परिभाषित है। सेवा और सुशासन के इस दृष्टिकोण से प्रेरित सरकार ने 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर कार्य किया है। समेकित विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहा है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में बात कर रहे हैं स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स 2020 के बारे में। अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जन कल्याण के उद्देश्य से किए गए सुधारों का एक प्रमुख हिस्सा है और भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक बड़ा केंद्र बनकर उभरा है।
3: रास्ता रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का रास्ता, इसलिए देश ने स्पेस सेक्टर में एक के बाद एक लगातार बड़े रिफॉर्म किए। एक समय था जब स्पेस जैसे फ्यूचरिस्टिक सेक्टर देश में अनेक पाबंदियों को बांध दिया है। हमने इन देरियों को, हमने प्राइवेट सेक्टर को स्पेस सेक्टर परमिशन बढ़ा दी। देश में 350 से ज्यादा
0: सांसद सुरेश कश्यप ने अधिकारियों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को तय समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वे आज नाहन में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। सुरेश कश्यप ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश में विकास कार्यों पर करोड़ों रुपए की राशि खर्च की जा रही है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण के अंतर्गत शिमला संसदीय क्षेत्र की 294 सड़कों को मंजूरी दी गई है। सुरेश कश्यप ने जल जीवन मिशन के तहत लंबित कार्यों को वर्ष 2027 तक पूरा करने के भी निर्देश दिए।
4: हिमाचल प्रदेश को बहुत भारी राशि PMJSY 3 में, PMJSY 4 में मिली है और मेरे संसदीय क्षेत्र की 294 रोड PMJSY 4 के बैच 1 में आई है। जिला सिरमौर की 11 सड़कें उसमें है, PMJSY 3 में 9 सड़कें आई थी। इसके अलावा PMJSY 1 से लेकर और PMJSY 4 तक सभी जितने भी परियोजनाएं सबकी की हैं, हमने उनका रिव्यू किया है। 25 मार्च 2027 तक हम सभी स्कीमों को पूर्ण कर लेंगे और सुचारू रूप से हमारी स्कीमें चलने लगेंगे।
0: भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता व पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने कहा है कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और प्रदेश में विकास कार्य ठप हैं। उन्होंने आज सुजानपुर में भाजपा मंडल द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ आयोजित विरोध प्रदर्शन के दौरान ये बात कही। राजेंद्र राणा ने कहा कि सबसे बड़ी वोट चोरी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश की जनता को ठग कर की है। SIR पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि SIR को कांग्रेस ही लाई थी, जबकि भाजपा राज में इससे वोट चोरी रुकी है। राजेंद्र राणा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस वोट चोरी ही नहीं बल्कि हिमाचल की खजाना चोर भी है, जिसने प्रदेश के खजाने को लूटा है। राजेंद्र राणा ने कहा कि पंचायत चुनावों में जनता ने कांग्रेस का सफाया कर दिया है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भी इनका खाता भी नहीं खुलेगा। चंबा जिला के जनजातीय क्षेत्र पांगी घाटी में कल 15 अक्टूबर से पारंपरिक लोक पर्व फूल यात्रा का आयोजन किया जाएगा। चंबा जिला कांग्रेस

0: अध्यक्ष व हिमाचल पथ परिवहन निगम के निदेशक एडवोकेट सुरजीत शर्मा भरमौरी ने समस्त पंगवाल समुदाय को इस तीन दिवसीय उत्सव की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि फूल यात्रा पांगी घाटी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पारंपरिक रीति रिवाजों और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। सुरजीत शर्मा भरमौरी ने कहा कि इस तरह के पारंपरिक त्यौहार लोक संस्कृति को जीवंत बनाए रखने के साथ साथ समाज में प्रेम, सद्भाव और एकता की भावना को भी मजबूत करते हैं। राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत चंबा जिला में 65 सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। चंबा में आज एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। हर्ष महाजन ने बताया कि चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग के सुदृढ़ीकरण के लिए भी इस वर्ष 500 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लाहौल स्पीति जिले में 116 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं के किए उद्घाटन व शिलान्यास। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक प्रयासों पर दिया बल। राज्य सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों के पुनर्गठन के लिए आयोग का किया गठन। सांसद सुरेश कश्यप ने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के अधिकारियों को दिए निर्देश। और भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने कांग्रेस पर प्रदेश की जनता को ठगने का लगाया आरोप, कहा सरकार हर मोर्चे पर विफल। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:50 पर।
1: कुछ हो गया, कुछ मिल गया, कुछ खो गया।

तो श्रोताओं, इसी के साथ वक्त का आप सभी जानते हैं कि पता नहीं लगता है, इस समय वक्त हो चुका है आप सभी से अलविदा लेने का। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो गुंजन को यही सुनते भी रहिए और सुनाते भी रहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सचिन कपूर लेता हूँ आपसे अलविदा। नमस्ते धर्मशाला।

दुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारणवश इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा शस्त्रधारिणी हिरण्यवर्णा केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती है। दसों दिशा इन्हीं से आलोकित।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: और क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: है नीला, हरा है गीला, सूखा है नीला, हरा है गीला।
1: बंटी, ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
3: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिंस, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
4: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
5: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
6: एक्सक्यूज मी सर, ये मेरा इस्तीफा।
7: क्यों
6: सर? यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके
8: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
9: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
10: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
11: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
12: मजाक है क्या? एक से एक घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
13: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
14: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
15: मोहित, मेरा इस्तीफा।
16: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
15: सॉरी यार,
16: काम कीजिए आप लोग।
14: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
17: मम्मा एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
18: अरे बेटा,
17: अरे ललक, तुझे इतना काम नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणिया करती है। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आपको रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ के मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

नवदुर्गा का चौथा रूप। इनकी मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा, शस्त्रधारिणी, हिरण्यवर्णा, केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती। दसों दिशाएं इन्हीं से आलोकित।

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: कूर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आई है, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं, आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं, सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: सूखा है नीला हरा है गीला, सूखा है नीला हरा है गीला।
1: बंटी ये कौन सा फॉर्मूला रख रहा है?
0: अपने शहर को क्लीन रखने का फॉर्मूला।
2: पर तुम्हारा फॉर्मूला थोड़ा पुराना है।
0: तो फिर नया फॉर्मूला क्या है दीदी?
2: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिंस, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
3: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर मेरी जिम्मेदारी।
4: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
5: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
6: क्यों?
5: सर यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके okay.
7: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
8: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
9: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
10: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला है सर।
11: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
12: आपने मोहित को HIV के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
13: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो HIV पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
14: मोहित मेरा इस्तीफा।
15: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार।
14: सॉरी यार।
15: काम कीजिए आप लोग अपना।
13: HIV/AIDS अपनेपन को नहीं मार सकता।
16: मम्मा एक बात बताओ, शादी क्या होती है?
17: अरे बेटा,
16: अरे इतना नहीं पता। मैं तुझे बताता हूँ, शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है। हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

सभी इस वक्त कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने अपने होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो श्रोताओं, करते हैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत इस प्यारी से गीत के साथ। आप सभी यूं ही सुनते रहिए रेडियो गुंजन धर्मशाला।

91.2 MHz पर ये है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

ये है आप सभी का अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला। और श्रोताओं, आप सभी ने ट्यून किया है अपना रेडियो गुंजन धर्मशाला और इस वक्त आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं अपनी होस्ट एंड दोस्त शशि के साथ। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 MHz पर। यह है आप सभी का रेडियो गुंजन धर्मशाला और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने। तो बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

तो श्रोताओं, आप सभी ने सुना ये प्यारा सा गीत अपनी रेडियो शशि के साथ। तो श्रोताओं, कार्यक्रम का नाम है गीत सुहाने नए पुराने। तो फिर से बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे और सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

91.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आप सभी का अपना मनपसंद रेडियो गुंजन धर्मशाला, और आप सभी कार्यक्रम सुन रहे हैं गीत सुहाने नए पुराने।

नवदुर्गा का चौथा रूप। इनके मंद मंद हंसी से संसार का जन्म संभव होता है और इसी कारण वर्ष इसे कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। अष्टभुजा शस्त्रधारिणी हिरण्यवर्णा केवल यही है जो सूर्य के भीतर लोक में वास करती। दसों दिशा इन्हीं से आलोक

0: ये है हुकुम सिंह। इनकी दुश्मनी पड़ोसियों से नहीं, बिजली के मीटर से थी।
1: अरे रबुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा?
0: मीटर जरा सा घूमा नहीं कि हुकुम सिंह का सिर घूम जाता था। पर आज देखिए, चारा मशीन भी चल रही है और ठंडा कूलर भी।
1: उर क्या रहे हो, अब मीटर की सुई भी सो रही है और हम भी सो रहे हैं, और बिजली का बिल तो जैसे गायब ही हो गया है।
0: भारत के 30 लाख से अधिक परिवारों ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अपनाया और अपना बिल कम पाया। अब हुकुम सिंह भी है उन्हीं में से एक। अब बिल की चिंता छोड़ो, अपनी छत से नाता जोड़ो। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें pmsuryaghar.gov.in।
2: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत एक सोसाइटी में क्यों आए हैं, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप?
3: हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते तो बेटों की पढ़ाई के लिए
2: और बेटियों की विदाई के लिए।
3: हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टाइटल है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि उसे सिर्फ और सिर्फ एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसके लिए उसे किसी आदमी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। उस दिन जेंडर इक्वालिटी होगी। मेरी पहचान मैं हूँ।
4: लड़कों जैसे लड़कियां भी माँ की कोख में पलती हैं। आंखें उनकी लड़कों जैसे पैदा होते खुलती हैं। सांस उनकी बेदर्दी से कोख में रोकी जाती है। उनको हक है जीने का, वो भी जीना चाहती है।

0: बड़ा इजी है। अब नीले हरे डब्बे के साथ काला डब्बा भी ऐड करना है। घरेलू हानिकारक कचरा जैसे एक्सपायर्ड मेडिसिन, यूज्ड बैटरीज, रेजर, फ्यूज बल्ब जैसी चीजों को अलग करना है।
1: जब आपको तीन डस्टबिन का कॉन्सेप्ट समझ आएगा, तभी तो वेस्ट सेग्रीगेशन से घरेलू हानिकारक कचरा अलग होगा और आपका शहर स्वस्थ और स्वच्छ बन पाएगा। मेरा शहर, मेरी जिम्मेदारी।
2: कभी नोटिस किया है, मर्द जब किसी को पसंद करता है तो उससे इम्प्रेस करना चाहता है, लेकिन जब सच में प्यार करता है तो उससे इम्प्रेस नहीं, प्रोटेक्ट करना चाहता है। क्योंकि अट्रैक्शन में मैं क्या पा सकता हूँ होता है, और मोहब्बत में मैं क्या दे सकता हूँ।
3: Excuse me, sir. ये मेरा इस्तीफा।
4: क्यों?
3: सर, यहाँ के ट्यूबलाइट से मेरे को एलर्जी होता है सर। ओके.
5: मुझे यहाँ का वास्तु पसंद नहीं है।
6: माँ कहती है मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, यहाँ की कैंटीन ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ।
7: हमारा हिसाब कर दीजिए, रॉकेट साइंस सीखना है।
8: मुझे बॉलीवुड में जूनियर आर्टिस्ट का रोल मिला सर।
9: मजाक है क्या? एक से घटिया रीजन देके रिजाइन कर।
10: आपने मोहित को एचआईवी के कारण जॉब से निकाला था, वो नहीं था घटिया रीजन।
11: भेदभाव उनके साथ कीजिए जो एचआईवी पॉजिटिव लोगों के साथ भेदभाव करते हैं।
12: मोहित, मेरा इस्तीफा।
13: क्या यहाँ का बॉस ठीक नहीं है यार?
12: सॉरी यार,
13: काम कीजिए आप लोग अपना।
11: एचआईवी एड्स अपनेपन को नहीं मार सकता।
14: मम्मा एक बात बताओ,
15: शादी क्या होती है?
14: अरे बेटा,
15: अरे तुझे इतना बार नहीं पता, मैं तुझे बताता हूँ। शादी एक वो खूबसूरत जंगल है जहाँ पे बहादुर शेरों का शिकार हिरणियाँ करती हैं। शादी मतलब अजी सुनते हो, भरे हो गए हो क्या? तक का सफर। शादी मतलब तेरे जैसा कोई नहीं से लेकर तेरे जैसे बहुत देखे तक का सफर। शादी मतलब अब रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके आप तो रहने ही दीजिए तक का सफर। शादी मतलब कहाँ गए थे जानू से लेकर कहाँ मरे पड़े थे तक का सफर। शादी मतलब आप मुझे नसीब से मिले हो से लेकर नसीब फोड़ गए मेरे जो तुम मुझे मिले तक का सफर। शादी शुदा जिंदगी कश्मीर जैसी खूबसूरत है, लेकिन आतंक का हर दिन खतरा है, हमला हो जाए कोई पता नहीं है।

डॉक्टर हेमंत कुमार के संगीत में राजेंद्र कृष्ण को लिखा हुआ ये गीत आपने फिल्म मिस मेरी से सुना, मोहम्मद रफी की आवाज में। पुरानी फिल्मों के गीतों का ये कार्यक्रम आप श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के विदेश विभाग से सुन रहे हैं।

0: अभी आदिल का बहाना हो गया, दोनों ने प्यार किए हमको जमाना हो गया।
1: ना होगी होश में की शरण, अरे जा रे सैया तेरा दिल तो दीवाना।

बदला बदलाए, अब दिल में कोई बल खाए, अब दिल में कोई बल खाए कि

बने जुटे टूट रहे मिले हाथ में, मिले हाथ में मेरे अरमान जल बने जुटे टूट रहे आंसू जल बने जुटे टूट रहे आंसू जल।

चोरी चोरी चुपके चुपके कौन आया था यूं छुप छुप के, चोरी चोरी चुपके चुपके कौन आया था यूं छुप छुप के।

0: गुआ गुगाना
1: कर डाला।

अरे तेरी कसम मेरी जान, तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं, तेरे तीरों में छुपे प्यार के खजाने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी तराने हैं। डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर।

0: दिल में एक मिलने का अरमान है ये भी ना सही।
1: अरे तेरी कसम मेरी जान, जीने वालों के लिए लाख बहाने हैं, जीने वालों के लिए लाख बहाने हैं। मेरे लबों पे देखो आज भी दवाने हैं, मेरे लबों पे देखो आज भी दवाने हैं। डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर डंडर

अरे तेरी कसम मेरी जान, नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं, नैया पुरानी है तूफान भी पुराने हैं मेरे।

पैसा ही अल्लाह, पैसा ही दाता, पैसा ही भगवान, पैसा ही बाबा, पैसा ही भैया, पैसा ही अम्मा जान, तू है तो सब रिश्ता नाता, नहीं तो बम बग्गू। एक से

जी तेरा ये माल लाया जी दिल्ली से आया जी बम्बई से लाया जी फैशन का माल।

0: होगा सत्या नाच।
1: लकड़ी जल कोयला बने, कोयला जल बने राख।
0: एक तुम ऐसे बगैर तो हो, ना कोयला बनोगे

0: जी मेरा ये माल
1: लाया जी दिल्ली से आया जी बम्बई से लाया जी फैशन का माल।

फिल्म विलस से आपने अभी लता मंगेशकर को सुना। बड़ी मां फिल्म से अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं नूरजहां की आवाज में अगला गीत। संगीतकार हैं दत्ता कोरगांवकर और गीतकार हैं जिया सरहदी।

हमारे सभी श्रोताओं को हमारी प्यार भरी नमस्कार। श्रोताओं, ज्योति पठानिया हाजिर है कार्यक्रम लेकर के आराधना। जय माता दी। नवरात्रि के पांचवें दिन माँ दुर्गा के पांचवें स्वरूप माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। इन्हें स्कंद यानी भगवान कार्तिकेय की माता होने के कारण ये नाम मिला है। माँ स्कंद माता वात्सल्य, करुणा और मातृत्व का प्रतीक है। तो आराधना कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं माँ स्कंद माता की आरती।

श्रोताओ 91.2 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो गुंजन धर्मशाला से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आराधना और माता की आरती के बाद अब हम माँ स्कंदमाता की कथा को भी संक्षेप रूप में आपको बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक भयानक राक्षस था। उसने अपनी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, उनसे अमर होने का वरदान मांगा। जब ब्रह्मा जी ने कहा कि मृत्यु तो तुम्हारी निश्चित है, तब चतुर तारकासुर ने वरदान मांगा कि उसकी मृत्यु केवल शिव पुत्र के हाथों ही हो, क्योंकि वो जानता था कि सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव वैराग्य में लीन थे और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी थी। उसे लगा कि शिव तो विवाह करेंगे नहीं और ना ही उनका कोई पुत्र होगा जिससे वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। वरदान मिलते ही तारकासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया, देवताओं को उनके स्थानों से निकाल दिया और मनुष्यों को प्रताड़ित करने लगा। तब सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उनसे विवाह करने का आग्रह किया। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ और उनके तेज से कार्तिकेय यानी स्कंद का जन्म हुआ। माता पार्वती ने अपने पुत्र स्कंद को युद्ध के लिए तैयार किया और उन्हें प्रशिक्षित भी किया। जब माता अपने पुत्र को युद्ध के लिए तैयार कर रही थी, तब वे अपने ममतामयी और वात्सल्य स्वरूप स्कंद माता के रूप में प्रकट हुई और आगे चल करके बाल्यकाल में ही भगवान स्कंद ने अपनी माता के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से अत्याचारी तारकासुर का वध किया और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति दिलाई। श्रोताओं, ये कथा हमें सिखाती है कि जब ज्ञान यानी शिव और शक्ति यानी पार्वती का मिलन होता है तो स्कंद यानी कि शक्तिशाली चेतना का जन्म होता है जो बुराई का नाश करती है।